FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर गवन केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार इस समय 5:57 हो रहे हैं।

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और सख्त सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद भवन परिसर में मंत्रिमंडल की बैठक में इस मसौदे को स्वीकृति दी गई। ये विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हटकंडे अपनाना, अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। NTA ने महाप्रबंधक प्रतिभा सेतु पोर्टल द्वारा 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। NTA ने बताया कि ये उपाय एजेंसी के संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा में पहला ठोस कदम है, जिसे प्रोफेसर के राधाकृष्णन किया जा रहा है। NTA ने संविदा आधार पर महाप्रबंधक के 4 पदों के लिए अधिसूचना जारी की है। इनमें से प्रत्येक की प्रारंभिक अवधि 3 वर्ष की होगी। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल CJP के प्रवक्ता आशुतोष राका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है। दिल्ली पुलिस ने परीक्षा संबंधी पेपर लीक और अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल STF का गठन किया है। ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के अपार समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामले की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी कलखंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रोमानिया की बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। ये सम्मान उन्हें विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए दिया गया। स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि ये सम्मान दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलो भार उठाकर

0: तीसरा स्थान हासिल किया। और भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम 4:30। भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। टीम ने पहले मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

हे मानव, इस पृथ्वी पर तू ही एक ऐसा प्राणी है जिसे बोलने सामर्थ्य प्राप्त है। इसीलिए अपनी इस जिह्वा से उस परमपिता परमेश्वर के नाम का स्मरण कर, उसका नाम ले, क्योंकि ये जिह्वा, ये वाणी तभी सार्थक है जब तू उस ईश्वर को स्मरण करता रहे।

0: संवेत स्वरों में मातृभूमि के इसी वंदन के साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यही होता है संपन्न। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपने जिन कलाकारों को सुना वो थे उस्ताद राशिद खान, लता मंगेशकर, अनुराधा पौडवाल और हरिओम शरण। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है चिंतन बिंदु के अंतर्गत आज का विचार सत्यम शिवम सुंदरम। आलेख महेंद्र मुक्त जैन का है, वाचन कर रही हैं लिली खन्ना।
1: संसार के सभी प्राणी सुख शांति की कामना करते हैं। वैदिक ऋषियों ने सर्वे भवन्तु सुखिनः श्लोकों से जगत की मंगल कामना की है। वैदिक मंत्रों के उच्चारण के उपरांत ओम शांति शांति शांति रूप शांति कामना की जाती है। संसार में सुख शांति की कामना से अनेकों शांति विधान किए जाते हैं, फिर भी विश्व में सर्वत्र अशांति का ज्वार उमड़ता रहता है। भगवान महावीर, गौतम बुद्ध, गांधी और विनोबा ने शांति के लिए क्या क्या नहीं किया। हिंदी के महाकवि प्रसाद ने तो स्पष्ट कह दिया था, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की। जब व्यक्ति से लेकर राष्ट्र तक लक्षानुरूप साधन शुद्धि व्यवहार में लाई गई हो, व्यक्तियों और समाजों की शांति की चाह जब किन्हीं के स्वार्थों से टकराती है, तो वैसी परिस्थिति के लिए चार कारण समझ पड़ते हैं। लक्ष्य के अनुरूप साधन का अभाव, हृदय और मस्तिष्क का मेल न होना, वर्तमान जन विरोधी समाज व्यवस्था और नैतिक मूल्यों का अभाव। मनुष्य की वैज्ञानिक प्रगति पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था, मनुष्य ने आकाश में चिड़ियों की भांति उड़ना और मछलियों की तरह पानी में तैरना तो सीख लिया है, किंतु संसार में मनुष्य के समान कैसे रहना है वह नहीं सीख पाया। आज के हित विरोधी समाज में एक की विपत्ति दूसरे की संपत्ति बन जाती है। बुद्धिमान माने जाने वाले लोग भी शमशान में लकड़ी देने वाले की तरह समाज में रोगों और अपराधों द्वारा आजीविका कमाते हैं। सारे समाज में छा जाने के कारण आज की सामाजिक स्थिति भ्रष्टाचार की जननी बनी हुई है। इसके विपरीत मनुष्य का मूल घटता जा रहा है। वर्तमान में 7 प्रकार की अनीतियां समाज, राष्ट्र और विश्व भर में व्याप्त हो रही हैं। सिद्धांत विहीन राजनीति, श्रम विहीन संपदा, साधुता विहीन व्यापार, शिष्टाचार विहीन शिक्षा, विवेकहीन विज्ञान, चरित्रहीन ज्ञान और त्याग विहीन उपासना। शासन सेनाओं के बल पर सक्रिय होते हैं और हिंसा के उपादान बनते हैं। अतः गांधी जी ने मानव समाज या विशुद्ध गणतांत्रिक समाज में सेना की निष्प्रयोजनीयता के विकल्प में शांति सेना के अस्तित्व का अनुमोदन किया था। विनोबा जी ने उन्हें शांति सेना के सेनापति रूप में माना था। विनोबा जी ने विज्ञान और अध्यात्म के मेल की सलाह दी है, जिससे मुक्त मानव समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा। विज्ञान गति लाएगा और अध्यात्म दिशा देगा। इससे यही फलितार्थ मिलता है कि नैतिक मूल्यों में शक्तिशाली लोगों के हाथों में ही देश और समाज की बागडोर सौंपी जानी चाहिए। विनोबा जी ने हमें निर्देश दिया है कि हृदय की भक्ति, मस्तिष्क की युक्ति और देह की शक्ति, इन तीनों के सहयोग से कार्य करने के लिए उग्र, उग्रतर, उग्रतम प्रक्रिया से क्रमागत सौम्य, सौम्यतर और सौम्यतम प्रक्रिया तक, असत्य से सत्य तक, भेद से अभेद तक, विवाद से संवाद तक, प्रतियोगिता से सहयोगिता तक और हिंसा से अहिंसा तक पहुंचने से हित साधन होगा। आज के जनतांत्रिक युग में हर धर्म की अपनी अपनी विशिष्टता को कायम रखते हुए भी राष्ट्रीय अखंडता, आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए लक्ष्य के अनुरूप शुद्ध साधन होने चाहिए। जनसाधारण अपनी सुरक्षा व अस्तित्व को बचाने के लिए जितनी शीघ्रता से प्रयत्नशील होंगे उतना ही अच्छा होगा। सावधानी से अपने अपने कार्यों को भली प्रकार संपादित करें, इसी में आपको अपने मन की शांति और विश्व को सुख शांति समृद्धि का अनुभव होगा।
0: अभी आप सुन रहे थे चिंतन बिंदु के अंतर्गत आज का विचार सत्यम शिवम सुंदरम। आलेख महेंद्र मुक्त जैन का था, वाचन कर रही थी डॉक्टर लिली खन्ना। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान से आज का संगीतबद्ध प्रसंग।

राजा जनक की यज्ञशाला में शिव के जिस धनुष को रावण तथा बाणासुर जैसे जगत विजयी वीर हिला तक नहीं सके, उसे खंडित करने के लिए गुरु विश्वामित्र का आदेश पाकर श्री राम उठ खड़े हुए। इधर लक्ष्मण ने अग्रज को धनुष की ओर ताकते देखकर अपने चरणों से ब्रह्मांड को दबाकर दिक्पालों, कच्छप तथा शेषनाग और वराह को सावधान होकर पृथ्वी को दबाए रहने का आदेश दिया ताकि वो हिलने ना पाए। श्री राम धनुष के निकट पहुंचे। सबका संदेह और अज्ञान, अभिमानी तथा दुष्ट राजाओं का अभिमान, परशुराम के गर्व की क्रूरता, देवताओं की कातरता, सीता जी की सोच, राजा जनक का संशय,

भी मानो शिव जी के धनुष रूपी जलयान पर आकर सवार हो गए। लगा वो राम की भुजाओं के बल का सहारा पाकर भव सागर पार कर जाना चाहते हैं। श्री राम ने गुरु को मन ही मन प्रणाम किया और बड़ी सहजता से धनुष को उठा लिया। उसे उठाते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा कि एक भयंकर नाद के साथ वो दो खंडों में टूटकर पृथ्वी पर आ गिरा।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस कान से आज का संगीत पद प्रसंग। स्वर भूपेंद्र सिंह का था, संगीतकार थे सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

लीजिए प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। रात्रि 9:30 का समय रहेगा राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती का। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

प्रातः 6:50 पर होंगी खेती की बातें। विषय होगा बरसाती सब्जियों में कीट प्रबंध। प्रातः 7:00 हम आपके लिए लेकर आएंगे भूले बिसरे गीत। 7:31 पर ब्रज माधुरी कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा ब्रज की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का पाक्षिक विवरण परिक्रमा के अंतर्गत। साथ ही आनंद लेंगे लोकगीतों का। प्रातः 8:30 का समय रहेगा चित्रपट संगीत के कार्यक्रम गीतांजलि का। प्रातः 9:00 छत्र छाया कार्यक्रम में आप सुनेंगे भेंट वार्ता मानव के सामाजिक सरोकार। युधिष्ठिर गौड़ से भेंट करेंगे ओपी सिंह। प्रातः 9:30 का समय रहेगा कार्यक्रम ब्रज दर्पण का। प्रातः 10:00 का समय रहेगा शास्त्रीय संगीत का। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आज आप सुनेंगे पंडित भीमसेन जोशी का ख्याल गायन। लीजिए फिर सुनिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे रूपक ओ बरखा के पहले बादल। आलेख डॉक्टर प्रतिभा चतुर्वेदी का रहेगा। प्रस्तुति रहेगी यतीन्द्र चतुर्वेदी की। समय होगा प्रातः 10:30। श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम गीत बात और SMS हम आपके लिए लिप कर आएंगे दोपहर 12:00। दोपहर 12:30 पर हम आनंद लेंगे ब्रज लोकगीतों का। आज कलाकार होंगे हरि किशन ब्रजवासी। 1:15 का समय रहेगा बहनों के कार्यक्रम घर अंगना का। कार्यक्रम में आज चर्चा होगी बालकन के काजे उत्तम शिक्षा को चयन, एक जागरूकता गृहिणी की आवश्यकता और बरसात में स्वास्थ्य रक्षा, विश्व डूबने की रोकथाम दिवस के संदर्भ में। साथ ही होगी भेंट वार्ता बरसात के मौसम में स्वास्थ्य रक्षा। डॉक्टर मनीष बंसल से भेंट करेंगे ओपी सिंह। 2:30 का समय रहेगा सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का। 3:00 होगा हमारी प्रथम सभा का समापन। 5:30 से होगा दूसरी सभा का आरंभ कार्यक्रम युववाणी के साथ। कार्यक्रम में आज की बात होगी ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी और जलाशयों के पास सुरक्षा नियमों का पालन। साथ ही आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। 6:15 का समय रहेगा कार्यक्रम किसान वाणी का। कार्यक्रम में आज चर्चा होगी सिंचाई और जल संरक्षण का महत्व और मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार खाद का प्रयोग। साथ ही होगी वार्ता प्रगतिशील कृषक से मछली पालन के अनुभव। 6:45 पर होगा कार्यक्रम संध्या वंदन। ब्रज साहित्य कार्यक्रम के अंतर्गत श्रीमद भागवत कथा में ब्रह्म मोह लीला का प्रसंग आज आप सुनेंगे। कथाकार होंगे

0: राजपुरोहित शिवराज कृष्ण जी महाराज। समय रहेगा संध्या 7:05। श्रोताओं के संदेशों पर आधारित कार्यक्रम शाम सुहानी हम आपके लिए लेकर आएंगे संध्या 7:31 से। रात्रि 11:10 पर होगा हमारी दूसरी सभा का समापन। अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है खेती की बातें, बरसाती सब्जियों में कीट प्रबंध। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत।
1: किसान भाइयों, बरसात के मौसम में कद्दू कुल की सब्जियों में कुछ कीड़े ज्यादा ही लगते हैं। आज हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। बेल वाली सब्जियों का सबसे हानिकारक कीट है लाल भ्रंक। इसके प्रौढ़ चमकीले लाल रंग के होते हैं। जाड़ों में मिट्टी के दरारों में पड़े रहते हैं। ये जैसे ही तापमान में वृद्धि होती है यह कीट क्रियाशील हो जाता है। यह कीट छोटे पौधों पर आक्रमण करता है, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र कर देता है जिससे पौधों की मृत्यु भी हो सकती है। यह कीट फूलों को भी हानि पहुंचाता है। इसके नियंत्रण के लिए कार्वारिल धूल 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का बुरकाव छोटे पौधों पर करें या डेल्टा मेथालिन 7 मिलीलीटर दवा को 10 लीटर पानी में घोल बनाकर के छिड़काव करें। अगर ये दवाएं न मिलें तब आप इंडोसल्फान 35 ईसी की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति 1 लीटर पानी में घोल बनाकर के छिड़काव करें। आवश्यकता पड़ने पर इस छिड़काव को 15 दिन बाद पुनः दोहरा दें। किसान भाइयों, देखा होगा आपने कि कभी कभी बेल वाली पत्तियों का हरा भाग कीड़ा खा जाता है, सिर्फ जालीदार नसें दिखाई पड़ती हैं। ऐसा मुख्य रूप से एप्पल कैना बीटल के कारण होता है। यह कीड़ा पत्तियों की निचली सतह पर पीले रंग के अंडा देता है। अंडों से ग्रब यानी कि सूंड़ी निकल करके पत्तियों को खाते हैं। जब सूंड़ी बड़ी हो जाती है तो पत्तियों को खुरचना शुरू कर देती है। ये कीट करेला में सबसे अधिक लगता है। इसका प्रौढ़ भी नुकसान पहुंचाता है। जब पत्तियों की निचली सतह पर पीले अंडे दिखाई पड़े तो पत्तियों को तोड़ करके नष्ट कर देना चाहिए। कार्वारिल 50% धूल की 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना करके छिड़काव करना चाहिए या इंडोसल्फान की 1.5-2 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करें। सरसों का माहू कीट भी लौकी, ककड़ी और तोरई जैसी सब्जियों पर अक्सर देखा जाता है। यह माहू सीधे शिशु को ही पैदा करता है जो पत्तियों की निचली सतह पर झुंड में पाए जाते हैं। यह शिशु पत्तियों से रस चूसते हैं जिससे लट जो है पीली पड़ जाती है, अंततः सूख करके नष्ट हो जाती है। यह कीट मधुस्रावी छोड़ता है जो कि कवक को आमंत्रित करता है।
0: खेती की बातों के अंतर्गत अभी आप ले रहे थे जानकारी बरसाती सब्जियों में कीट प्रबंध। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 6:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन प्रश्नपत्रस्य गोप्यताभङ्ग प्रकरणेषु परीक्षासु अनुचित साधन प्रयोगस्य च प्रकरणेषु च द्रुत न्यायालयानां स्थापनाय सहैव दोषेभ्यः कठोरदण्डविधानं सुनिश्चेतुं प्रारूप विधेयकम् अनुमोदितम्। संसद्भवन परिसरे प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अध्यक्षतायां सम्पन्ने मन्त्रिमण्डलीयोपवेशने एतत् प्रारूप विधेयकम् अनुमोदितम्। सूत्राणामनुसारेण प्रस्तावितं विधेयकम् आगामि सप्ताहे संसदि प्रस्तुतं भविष्यति। अस्मिन् मध्ये परीक्षा परिष्काराणां दिशि महत्वपूर्ण पदक्षेपेण राष्ट्रिय परीक्षाभिकरणेन 47 अधिकारिणः सेवातः निष्कासिताः। अभिकरणेन महाप्रबन्धकस्तरस्य वरिष्ठ व्यावसायिक पदानां तथा संघलोक सेवायोगस्य प्रतिभासेतु इति पटलमाध्यमेन 16 युव व्यावसायिकानां नियुक्त्यै आवेदनानि आमन्त्रितानि, विज्ञापनानि अपि प्रकाशितानि। अभिकरणेन विज्ञप्तौ उक्तं यत् एतानि सर्वाणि उपायानि प्रोफेसर के राधाकृष्णन् इत्येतस्य अध्यक्षतायां निर्मितोच्चस्तरीय विशेषज्ञ समितेः अनुशंसानुसारं क्रियमाणानि सन्ति। केन्द्रीय मन्त्रिणो जेपी नड्डा, डॉ जितेन्द्र सिंहः च नवदिल्ल्यां सीजेपी इत्येतस्य प्रतिनिधिमण्डलेन सह अमिलताम्। उपवेशनानन्तरं वार्ताहरान् सम्बोधयन् श्रीनड्डा अवदत् यत् परीक्षा व्यवस्था परिष्कार सम्बद्धाः प्रतिनिधिमण्डलस्य याचनाः प्रशासनेन धैर्येण गम्भीरतया च श्रुताः। तेनोक्तं यत् प्रतिनिधिमण्डलेन त्रयः प्रमुखाः प्रस्तावाः प्रस्तुताः प्रश्नपत्रस्य गोप्यताभङ्गस्य निवारणाय कतिपयाः परिष्कारोपायाश्च प्रतिपादिताः। श्रीनड्डा अवदत् यत् प्रशासनं प्रतिनिधिमण्डलेन सह अद्य पुनरेकवारं विचारविमर्शं करिष्यति। नीट प्रश्नपत्रस्य गोप्यताभङ्गप्रकरणमाधृत्य छात्राणां विरोधप्रदर्शनानि च अधिकृत्य पञ्चमदिवसे अपि निरन्तरं जातेन कोलाहलेन संसदः उभयोः सदनयोः लोकसभा राज्यसभयोः कार्याचरणं सोमवासरपर्यन्तं स्थगितम्। प्रशासनेन पुनः पुनः आश्वासनं प्रदत्तं यत् तत् नीट प्रकरणे सार्थकचर्चायै सज्जमस्ति। तथापि विपक्षेण केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रिणः त्यागपत्रस्य आग्रहं कुर्वन् स्वविरोधं निरन्तरं प्रदर्शितम्। आर्थिक प्रकरणानां मन्त्रिमण्डलीय समित्या कर्णाटकान्ध्रप्रदेशयोः बल्लारी गुण्टकल रेलखण्डस्य तृतीय चतुर्थ रेलमार्गयोः निर्माणाय आहत्य 64.12 लाख कोटि रूप्यकाणाम् अनुमोदनं प्रदत्तम्। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् अनया परियोजनया आन्ध्रप्रदेश कर्णाटकयोः मध्ये रेलसम्पर्कः अधिकः सुदृढः भविष्यति।
1: आज अप्रूवल हुआ है गुंतकल से बिल्लारी थर्ड एंड फोर्थ लाइन और उसके आगे फिर होसपेट से हुबली थर्ड एंड फोर्थ लाइन का ऑलरेडी डीपीआर अंडर प्रिपरेशन है। ये करने से नॉर्थ कर्नाटका का एक कंप्लीट इकोनॉमिक कॉरिडोर बनता है। कर्नाटक आंध्र प्रदेश दोनों को जोड़ेगा। ये एक बड़ा मेजर ब्रिज है वेदावती रिवर पे और उसके अलावा 7 मेजर ब्रिजेस है, 52 माइनर ब्रिजेस है और 3 साल का ये प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है।
0: तेन एतदपि सूचितं यत् देशे त्रयाणां रसायनोद्योगिक संकुलानां स्थापनाय भव्य इति भारतोद्योगिक विकास योजना रसायन इत्येषा योजना मन्त्रिमण्डलेन अनुमोदिता। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः रूमानिया देशस्य बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज इत्यनेन विश्वविद्यालयेन डॉ ऑनरीस कौसा इति मानद विद्या वाचस्पति उपाधिना सम्मानिता। अयं सम्मानः तस्याः लोकसेवायां शिक्षाक्षेत्रे सामाजिक समावेशे च विशिष्ट योगदानस्य भारत रोमानिया देशयोः सम्बन्ध सुदृढीकरणे च मान्यता स्वरूपः प्रदत्तः। सम्मानम् अंगीकुर्वती राष्ट्रपतिः एतत् सम्माननं भारतस्य 1.4 अर्बुदजनेभ्यः समर्पितवती इति वार्ताः।
2: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है भोले बिसरे गीत।

दर्द फिल्म में उमा देवी को अभी आपने सुना। शब्द शकील बदायूनी के थे, संगीत दिया था नौशाद ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है पगड़ी।

सितारा देवी और मुकेश के युगल स्वरों में अभी आपने सुना ये गीत फिल्म पगड़ी से। और अब कार्यक्रम में समय हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत। आइए सुनते हैं शमशाद बेगम और साथियों के स्वर में ये गीत फिल्म परदेश से।

लता मंगेशकर के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये गीत। फिल्म का नाम था पतंग। शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की थी, संगीत से सजाया था चित्रगुप्त ने। इसी गीत के साथ भूले बिसरे गीतों का सफर यही होता है संपन्न। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सब।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को दी मंजूरी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति की मांगी जानकारी। केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के दिए निर्देश। आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। कहा, अफवाह फैलाने और सौहार्द बिगाड़ने वालों के विरुद्ध की जाए कठोर कार्रवाई। और प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी, बाराबंकी में घाघरा का जलस्तर खतरे के निशान के पार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक न्यायालय बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। वहीं इस मामले पर संसद के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि विधेयक के पारित होने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए। इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हटकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा।
2: अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इससे पहले गुरुवार रात प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा था कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। इस बीच सरकार ने कड़े कदम उठाते हुए परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में अहम कदम है। सर्वोच्च न्यायालय ने कल केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट यूजी पेपर लीक मामले के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रगति पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने कहा कि वह इस मामले पर कड़ी निगरानी रखेगी और नियमित रूप से इसकी समीक्षा करती रहेगी। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से यह भी पूछा कि वह परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम में बदलने के लिए क्या कदम उठा रही है। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि मुलाकात सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
3: लगभग 2 घंटे बातचीत चली सरकार की ओर से। मैं और मेरे साथ मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
0: श्री नड्डा ने बताया कि कॉकरोच जनता पार्टी ने 3 मुख्य मांगें रखी और परीक्षाओं के पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए कुछ सुधारों का सुझाव भी दिया। दोनों केंद्रीय मंत्री कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक बार फिर चर्चा करेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा युवाओं के हितों को ध्यान में रखा है। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में समय रहते कार्रवाई के साथ दोबारा परीक्षा भी करवाई गई है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को इस मुद्दे पर सड़कों पर उतरने के बजाय सदन में चर्चा करनी चाहिए।
4: युवा हमारा देश का भविष्य और युवा किसी राजनीतिक दल का नहीं है बल्कि देश का एसेट और प्रधानमंत्री जी हमेशा उस युवाओं पे फोकस किया है और हमने देखे होंगे कि नीट परीक्षा के लीक होने के बाद सरकार उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की। हम विपक्ष से भी कह रहे हैं कि आप आओ सदन में बात करो कि युवाओं के लिए आगे कोई दिक्कत रहा है वैसा जो आपके पास सुझाव हो दें ताकि हम उसका कानून बनावे नया ताकि आगे से पेपर लीक आओ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी कांवड़ यात्रा और अन्य पर्वों को लेकर कल देर शाम उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कांवड़ यात्रा में प्रत्येक श्रद्धालु की सुरक्षा, सुविधा और सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सौहार्द बिगाड़ने, अफवाह फैलाने, मिलावट, ओवररेटिंग, अव्यवस्था या अराजकता करने का प्रयास करने वाले तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर मांस और मदिरा की दुकानें बंद रखी जाएं। इसके साथ ही प्रत्येक दुकान पर संचालक का नाम स्पष्ट रूप से प्रदर्शित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ यात्रा अब प्रदेश के किसी एक हिस्से तक सीमित आयोजन नहीं रह गई है। ऐसे में हर जनपद में व्यवस्थाओं पर ध्यान देना होगा। मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा से पहले यात्रा मार्गों पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था

0: स्वच्छता, पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित कर लेने के भी निर्देश दिए। इस बीच प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आगामी सावन माह में कांवड़ यात्रा को लेकर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रयागराज के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए कई विभागों और जनता के बीच समन्वय बनाया जा रहा है।
1: कांवड़ यात्रा को लेकर जो भी से जुड़े हुए, चाहे वो सरकारी विभाग हों या फिर आम जन हों या जो भी समितियां, उनके साथ एक संवाद स्थापित किया गया है। मुख्य जो घाट हैं जहां से गंगा जल लेके लोग शिवालयों में जाते हैं, वहां का निरीक्षण किया गया, रूट का निरीक्षण किया गया। घाटों पर जहां जहां पे जल पुलिस की सहयोग लेनी है, जल पुलिस ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इस तरह से श्रद्धालुओं को कहीं कठिनाई न हो, इसके लिए हमारे पूरे अधिकारी पूरे अलर्ट मोड में हैं।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा के दौरे पर रहेंगे। वह फतेहाबाद रोड स्थित टाटा मैदान में आयोजित जनसभा के दौरान 342 करोड़ रुपए की 53 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जनसभा के बाद मुख्यमंत्री कमिश्नरी सभागार में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। नगर विकास और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कल झांसी में 83 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से निर्मित गुरसराय नगर पालिका परिषद और गरौठा नगर पंचायत संयुक्त पुनर्गठन पेयजल योजना का लोकार्पण किया। इस मौके पर श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार बुंदेलखंड के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में पेयजल, बिजली और आधारभूत ढांचे के विकास पर अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं। सहारनपुर के गंगोह थाना अंतर्गत ग्राम नयाकुंडा में एक पटाखा फैक्ट्री में कल शाम विस्फोट हो जाने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कराया। विस्फोट के कारणों की जांच की जा रही है। प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। वर्षा और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण बाराबंकी में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं अयोध्या और बलिया में घाघरा, लखीमपुर खीरी में शारदा और बदायूं में गंगा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। बाढ़ की आशंका के दृष्टिगत सभी संवेदनशील जिलों में वहां का प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। मौसम विभाग ने आगामी 5 दिनों तक प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से के कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को दी मंजूरी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति की मांगी जानकारी। केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के दिए निर्देश। आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। कहा, अफवाह फैलाने और सौहार्द बिगाड़ने वालों के विरुद्ध की जाए कठोर कार्रवाई। और प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। बाराबंकी में घाघरा का जलस्तर खतरे के निशान के पार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान। सड़क पार करवाएं, करें बुजुर्गों की मदद। अंदर से अच्छा लगेगा, भले ही लगे थोड़ा वक्त। यातायात नियमों का करें पालन, कभी ना करें उनका उल्लंघन। यातायात सुरक्षा है अति आवश्यक, यही बने आपकी रक्षक। जब भी आप चलाएं कोई वाहन, ध्यान रखें, करें नियमों का पालन।
2: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

0: ब्रज माधुरी कार्यक्रम सुनवे बारे हमारे सभी श्रोता साथियों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। भैया आज के कार्यक्रम को आरंभ करें हैं ब्रज की साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के पाक्षिक विवरण पर कम्माते। यह हमारे ताई लेके आए रहे हैं सुभाष सैनी।
1: जब पखवाड़े के पहले दिन हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन पर प्रदेश के गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने राष्ट्र निर्माता शिक्षकन को डैम्पियर नगर मथुरा के पांच जन प्रेक्षाघर में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस योजना को मुख्यमंत्री जी के लाइव प्रसारण के दौरान अपने कर कमलन से शुभारम्भ करो तो जा कार्यक्रम में उपस्थित विधायक पूरन प्रकाश ने योगी जी के जा कदम को ऐतिहासिक कदम बताते हुए भूरी भूरी प्रशंसा करी। तो मथुरा के जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि जा योजना से शिक्षकन के अलावा शिक्षा मित्र, अनुदेशक और शिक्षा विभाग के रसोईया और बिन के आश्रितन को भी लाभ होगो। जा पखवारे में ही मानसून की जो वर्षा चल रही है आँख मिचौली है रही है। जाको ब्रज तीर्थ विकास परिषद और वन विभाग के संयुक्त प्रयास से विकसित पक्षी विहार जोधपुर झाल में रंग बिरंगे पक्षियों के आयवेते अलग ही छटा बिखर रही है। मौसम में पक्षियों के प्रजनन को जोधपुर झाल बहुत ही मुख्य केंद्र बन गए हुए। तो गिरिराज तलहटी गोवर्धन में जाई पखवाड़े में दान घाटी मंदिर में ठाकुर जी के मंगला अभिषेक को भक्तन की भारी भीड़ उमर पड़ी। जा दौरान मंदिर परिसर में गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण ऐसे जयकारे ते सौर वायुमंडल गूंज रहे। तो कस्बा छाता के चौमुआ के ब्रजेश्वरी मंदिर पे आयोजित भई भजन संध्या में श्रद्धालु भक्ति रस्ते सराबोर रह गए। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस पे सबरे ब्रजमंडल में जगह जगह विचार गोष्ठीन में बुद्धिजीवन ने मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं पे विचार करे हतो। तो वृंदावन के सुप्रसिद्ध संत देवरा बाबा को 36वां पुण्यतिथि समारोह समाधि स्थल माट में भयो। जमे ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजाकांत मिश्रा सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। तो वृंदावन के ठाकुर श्री राधा दामोदर मंदिर में जहाँ भीषण गर्मी थे ठाकुर जी को छुटकारो दिवाई को यानी ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करवे को दिल्ली कलकत्ता बंगलोर ते मंगवाई वे फूलन ते बंगला सब आये गयो। जाकु देख के श्रद्धालु भाव विभोर है गए। जा पखवारे में पिछले कई महापूर्व वृंदावन में वही नाव दुर्घटना को ध्यान में रख के मथुरा के जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में यूपी अंतरदेशीय जलयान नियमावली 2026 के क्रियान्वयन पर गहन मंथन करो हतो। तो 24वीं स्टेट यूथ बास्केटबॉल प्रतियोगिता के काजे खिलाड़ी को चयन जाई पखवाड़े में भयो। तो जाय पखवाड़े में केंद्रीय बकरी अनुसंधान मखदूम फरे को 47वां स्थापना दिवस धूमधाम से मने होते हो। जा पखवाड़े में गोवर्धन में हैवी बारो मेला मुड़िया पूनम महोत्सव की तैयारी को लेके प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने अलग अलग विभागन के अधिकारियों के संग बैठक करी। जा में मुड़िया पूर्णिमा मेला को बढ़िया तरीका से कैसे हो जा में खूब विचार और मंथन करो और अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश दे और बतायो कि अब की बार मानसी गंगा और राधा कुंड की सजावट करवाए के श्रद्धालुओं को अलग ही आनंद देवांगे। जा पखवारे में कस्बा कोसी कला में ब्रज से लेके मेवात तक प्रसिद्ध संत स्वर्गीय लालदास के भक्तन ने 108 कलश और जल दूत बाबा को अभिषेक करो हतो। तो छठीकरा रोड वृंदावन में हूँ

श्री कृष्ण जन्माष्टमी आश्रम में चल रही श्रीमद भागवत कथा को सुनके भक्ति ते खूबई भक्त सराबोर है गए थे। तो चौमुआ क्षेत्र के गांव दलौता में अभय चरण फांडो से ने श्री कृष्ण इंटर कॉलेज में बच्चन को स्वच्छ पानी पीवे के काजे आरओ प्लांट लगवायो और बच्चन के काजे टाट पट्टी बिछवाई। तो पहल फाउंडेशन ने राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रीन वैली कॉलोनी में स्वास्थ्य शिविर लगायो जाको सैकड़न मरीजन ने लाभ लियो। तो बीएसए कॉलेज मथुरा में कीड़ा भारती संस्था द्वारा एक खिताबी कुश्ती प्रतियोगिता भई जामे देव गुजर ने करीब 200 पहलवान बारी जा प्रतियोगिता में बहुत अच्छा प्रदर्शन करके पहला स्थान प्राप्त करो। तो मार क्षेत्र के भद्रवन में विधायक राजेश चौधरी के नेतृत्व में बृहद वृक्षारोपण को शुभारंभ भयो जा पखवाड़े को जो मुख्य आकर्षण हतो वो ब्रज तीर्थ विकास परिषद जिला प्रशासन और हार्टफुल ने संस्था के संयुक्त तत्वावधान में भयो। तो स्वच्छता अभियान ऐसा अद्भुत कार्यक्रम हो जहाँ में गोकुल के महावन स्थित चिंतान घाट नंद भवन 84 खंबा परिसर और वृंदावन में तो आगरा मंडल के पुलिस उप महानिरीक्षक शैलेश पांडे सहित जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह नगर आयुक्त ओजस्वी राय ने आम जनमानस को प्रेरित करवे को झाड़ू हाथ में लेके खुद कई घंटन तक सफाई कार्य की कमान संभाल ली। तो नगर पंचायत गोकुल के अध्यक्ष संजय दीक्षित ने प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा शुरू करे गए अभियान एक पेड़ माँ के नाम से आम जन को जोड़वे को अपने संग महावन के उप जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह सहित गोकुल की आधा दर्जन बस्ती में वृक्षारोपण कर रहे तो जा अभियान में सब लोगों को एक ही ना रहो तो हम सब ने ठानो है ब्रज को स्वच्छ बनानो है। कुल मिलाए के जा पखवारे में ब्रज की संस्थान में आश्रमन में वृक्षारोपण करवे की होड़ मच गई जाते पर्यावरण प्रेमी में बहुत ही खुशी की लहर है। यानी वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की पहल पे एक ही दिन में पूरे मथुरा जनपद में 33,61,000 पौधा लगाए गए जो कि एक बहुत बड़ा नया कीर्तिमान है। जा पखवारे में भूतेश्वर रोड पे SDTT वोकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा लगाए गए रोजगार मेला में युवान की भीड़ उमड़ पड़ी। तो सामाजिक संस्था नीमा द्वारा अग्रवाल सेवा सदन में आहार विहार विषय पर बृहद गोष्ठी को आयोजन भयो। तो कस्बा बलदेव के हरदम सिंह वैदिक अस्पताल में भाई रक्तदान शिविर में जा पखवाड़े में गांव बारे ने बढ़ चढ़ के भाग लियो। तो जाय पखवाड़े में पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी नवजोत सिद्धू वृंदावन के कात्यायनी मंदिर में आराधना करवे पहुंचे तो इनके प्रशंसकन की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जा पखवाड़े में विश्व कौशल युवा दिवस पर NCC कैडेटन ने हरित क्रांति को बढ़ावे को 200 से अधिक पौधा लगाए थे। तो GLA विश्वविद्यालय ने नवाचार और स्टार्टअप के नवाचार सत्र आयोजित करके युवान को उद्यमिता के नए नए अवसर कैसे प्राप्त हुए जाकी जानकारी दी। जा पखवाड़े में राजीव भवन के सिंचाई विभाग के भवन में मथुरा की कई वर्ष बाद बैठक भई जहाँ में किसानन की अपनी समस्या पे विचार भयो। जा पखवाड़े के मध्य में ठाकुर श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा ते समूचे ब्रजमंडल में स्थान स्थान पे रथ यात्रा निकाली गई थी। सबरे ब्रजमंडल में भगवान जगन्नाथ की खूबई धूम मच रही। हर जगह जय जगन्नाथ के नारे लग रहे। गोवर्धन में संतन ने वृंदावन में अच्छे पात्र इस्कान इंटरनेशनल तो मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान ने श्री ठाकुर द्वारकाधीश मंदिर और गौड़िया मठ के द्वारा शहर के विभिन्न बाजारन में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई जहाँ में लाखन भक्तन ने अपने हाथ से ठाकुर जी के रथ को खींच के अपने आप को धन करो। जाई पखवारे में ठाकुर श्री बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन में फूल बंगला की अद्भुत छवि को देख के रोज ही भक्तन की भारी भीड़ उमड़ पड़ रही थी। भीषण गर्मी में ठाकुर जी की भक्ति के काजे ब्रज के मंदिर में खूब भक्तन की भीड़ उमड़ रही है। जा पखवाड़े के अंतिम चरण में आश्रमन में गुरु पूर्णिमा पर्व को लेकर बृहद तैयारी चल रही है। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार पुलिस और प्रशासन की तैयारी को लेकर गोवर्धन में पैदल भ्रमण करके दिशा निर्देश देते हुए नजर आए। समूचे गोवर्धन में 5,000 पुलिसकर्मी व्यवस्था को तैनात होंगे ऐसी जानकारी बनने दी। जाके अलावा रेलवे द्वारा मुड़िया पूर्णिमा मेला के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई की जानकारी दी गई है। जाई पखवारे में हमारे ब्रजमंडल में गुरु भक्ति पूजन की तैयारी से पहले ही केशवदेव मंदिर गोपाल जी मंदिर राधा कृष्ण मंदिर ब्रज के सभी मंदिरों में खूब भजन संध्या है रही है। जाई मारे देश के जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी विराट

0: कूली अपने परिवार के संग वृंदावन पधारे हैं। वो प्रेमानंद महाराज के पक्के शिष्य हैं, जिनके आश्रम में रह रहे हैं और जाई पखवाड़े में मथुरा रिफाइनरी ने स्वच्छता अभियान और प्लास्टर मुक्त ब्रजमंडल के कार्य प्रतियोगिता को आयोजन करो, जाके समापन अवसर पर पुरस्कार उमाटे हते। जब पखवाड़े के अंत में बरसाना के प्रेम सरोवर पर सुदामा कुटी के प्राकट्योत्सव को बहुत बड़ा उत्सव भयो, ठाकुर जी भक्ति में भक्त चूर है के बड़े मस्त है गए। श्रद्धालु ने खूब आनंद उठायो। जा पखवारे में जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिलोक कुमार ने गोवर्धन तहसील के सभागार में अधिकारियों को, कर्मचारियों को, आम जनमानस को भूगर्भ जल संरक्षण की शपथ दिलवाई। जा पखवाड़े के अंत में सबरे ब्रज मंडल में गौ सम्मान आह्वान अभियान यानी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराए को ब्रज के संत आम जनमानस के संग 27 जुलाई को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे, ऐसी जानकारी हुई है।
1: तो भैया आपने सुनो ब्रज की साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को पाक्षिक विवरण परकम्मा के अंतर्गत सुभाष सैनीपति। और आओ भैया अब आनंद लें या लोकगीत को, जय स्वर दियो है हरिकिशन ने।

तो भैया शालिनी शर्मा के स्वर में सुनो आपने ये लोकगीत, और याई के संग में घड़ी अब हमें कर रही है संकेत के समय है चलो है आपते अनुमति देवी को, तो स्वीकार करो हमारी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 8 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, तत्पश्चात मॉर्निंग न्यूज होगी। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद में अगले सप्ताह विधेयक पेश किए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए प्रस्तावित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं से मिले सुझावों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। कहा, आपसी संबंध और अधिक घनिष्ठता के साथ आगे बढ़ेंगे। सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता होगी। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक जहाज एमवी ओमर्फी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। हमले में एक भारतीय नाविक की मौत। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा और ओडिशा के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक मिला। झंडू कुमार वेट पैरा भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
6: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हटकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा।
7: अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
8: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
5: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक

0: अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी, जिसके बाद श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर सीजेपी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया है। उन्होंने बताया कि सीजेपी ने तीन प्रमुख मांगे रखी हैं और पेपर लीक रोकने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं।
1: बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः तीन डिमांड थी और पांच सुझाव हुए।
0: दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक और परीक्षा संबंधी अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल एसटीएफ का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है।
2: दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अलग अलग प्राधिकारियों की ओर से आयोजित होने वाली पब्लिक परीक्षाओं से जुड़े अपराधों की जांच तेजी से और पेशेवर तरीके से विशेष कार्यबल द्वारा की जाएगी। इनमें संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के साथ साथ केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग और स्टाफ के भर्ती के लिए उनसे जुड़े हुए और अधीनस्थ कार्यालय शामिल है। जांच के अलावा विशेष कार्यबल मुकदमा चलाने वाली एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल भी बनाए रखेगी ताकि तेजी से मुकदमा चलाया जा सके और ये पक्का किया जा सके कि ऐसे मामलों में सुनवाई रोजाना हो। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। एनटीए ने महाप्रबंधक स्तर के वरिष्ठ पेशेवर पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल द्वारा 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 18 स्टेशन बंद हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता तथा भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी परिवर्तन के इस युग में विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी है कि वे ये सुनिश्चित करें कि ज्ञान का मार्गदर्शन विवेक, नैतिकता और करुणा द्वारा किया जाए।
2: टुडे एज द वर्ल्ड इज बीइंग रिशेप्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड अदर रैपिड साइंटिफिक एडवांसेस, यूनिवर्सिटीज लाइक दिस हैज इवन ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट नॉलेज इज गाइडेड बाय विजडम, ethics and compassion. India's national education policy reflects this vision by promoting innovation, research, creativity and international academic collaboration.
1: भारत सरकार ने कहा है कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के उन मीडिया दावों को खारिज किया जिनमें भारत पर जानबूझकर बाढ़ लाने का आरोप लगाया गया था।
3: The recent increase in flows,
4: चिनाब नदी में जल प्रवाह में हालिया वृद्धि 20 से 23 जुलाई के दौरान जम्मू और आसपास के जलग्रहण क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का परिणाम है। नदी के जल प्रवाह में वृद्धि एक प्राकृतिक जल वैज्ञानिक प्रतिक्रिया है और ये भारत द्वारा जानबूझकर किए गए किसी भी प्रयास का परिणाम नहीं है।
3: Not the result of any deliberate action by India.
1: भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोफ्री पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 18 जुलाई को काला सागर से गुजरते समय पोत पर हमला हुआ। हमले में एक भारतीय नाविक की मृत्यु हो गई। पोत पर 3 भारतीय नागरिकों सहित चालक दल के 10 सदस्य सवार थे, अन्य 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने आज पुष्टि की कि मोजाम्बिक ध्वज वाले एलपीजी टैंकर दिशा पर ईरानी जल क्षेत्र में हुए हमले के बाद जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी 28 सदस्य सुरक्षित हैं। दूतावास ने आधिकारिक बयान में एलपीजी टैंकर से जुड़ी घटना की पुष्टि की और कहा कि चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वो स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। लद्दाख के द्रास में स्थित करगिल युद्ध स्मारक ऑपरेशन विजय में भारत की जीत की स्मृति में मनाए जाने वाले 27वें करगिल विजय दिवस के भव्य समारोहों की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: द्रास का कारगिल वॉर मेमोरियल 27वें कारगिल विजय दिवस समारोह के लिए पूरी तरह से तैयार है। शहीदों की याद में बनाए गए इस स्मारक को विशेष रूप से सजाया गया है। 2 दिवसीय समारोह का आगाज आज युद्ध संस्मरण, गौरव में संस्कृति और शौर्य संध्या जैसे कार्यक्रमों के साथ हो रहा है। कल 26 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होंगे। द्रास कारगिल से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं इनायत अली।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंध्र कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में 1,15,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या 61 हो गई है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। भारत के स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। सेमीफाइनल में अनाहत ने मिस्र के बाब सामे को 3-1 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
6: धन्यवाद कनक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के 47 अधिकारियों को बर्खास्त किए जाने की खबर आज के अखबारों की पहली सुर्खी है। हिंदुस्तान ने इसे नीट को लेकर सरकार की बड़ी कार्रवाई बताया है। अमर उजाला लिखता है आक्रोश का असर, NTA से 47 अफसर बर्खास्त। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है पेपर लीक पर होगा 10 करोड़ रुपए जुर्माना, 10 साल की सजा। संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी, कड़ी सजा का प्रस्ताव। दैनिक जागरण कहता है कानून बदला कार्रवाई हुई फिर भी CJP टस से मस नहीं, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अटकी बात। दैनिक भास्कर ने लिखा है कानून में संशोधन को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी, NTA में बदलाव की तैयारी। राजस्थान पत्रिका ने इसे बवाल थामने का प्रयास बताया है। नवभारत टाइम्स ने NTA पेपर लीक बिल में संशोधन पर अपने संपादकीय में लिखा है सरकार तेजी से निर्णय लेकर छात्रों को यकीन दिलाने का प्रयास कर रही है कि उनकी आवाज अनसुनी नहीं रह गई है। पत्र लिखता है केंद्र द्वारा नीट में किए जा रहे सुधारों की सर्वोच्च न्यायालय लगातार निगरानी करेगा। छात्र अब मूलभूत बदलाव चाहते हैं और शीर्ष अदालत की निगरानी से इसमें मदद मिलेगी। सोशल मीडिया प्रसारण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जनसत्ता में सबसे ऊपर है। अनुमति के बिना कार्यवाही को पोस्ट करने पर रोक। लोकसत्य लिखता है सोशल मीडिया पर नहीं डाल पाएंगे कोर्ट की वीडियो। कक्षा 6 से 8 में कौशल शिक्षा अनिवार्य करने के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्देश को भी पत्र ने स्थान दिया है। अमेरिका द्वारा भारत से आयातित वस्तुओं पर 10% शुल्क लगाए जाने को राजस्थान पत्रिका ने ट्रंप का नया दांव बताया है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद में अगले सप्ताह विधेयक पेश किए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए प्रस्तावित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं से मिले सुझावों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। सरकार और CJP के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता होगी। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक मिला। झंडू कुमार ने पुरुषों के हैवीवेट पैरा भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Government approves NTA paper leaks draft bill for stricter punishment. Legislation likely to be introduced in Parliament next week. Prime Minister Narendra Modi thanks youngsters for the suggestions to his video on proposed reforms against paper leaks issue. Says relations will continue with more bonding. Government and CJP to hold third round of talks today. President Draupadi Murmu conferred Dr. Honoris Causa in Romania for a distinguished public service. New Delhi strongly condemns attack on commercial vessel in the Black Sea, claiming life of an Indian seafarer. Heavy rainfall expected in parts of Gujarat, Konkan, Goa and Odisha. And in Commonwealth Games, Jhandu Kumar clinches bronze medal for India in the men's heavyweight para powerlifting. President Draupadi Murmu was conferred the honorary title of Doctor Honoris Causa by the Bucharest University of Economic Studies in Romania in recognition of a distinguished public service, commitment to education and social inclusion, and contribution to strengthening India-Romania relations. The Union Cabinet has approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashvani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. The National Testing Agency NTA has issued advertisements for a set of senior professional appointments at the level of general manager. It has also opened the engagement of 16 young professionals through the Prathibha Setu portal of the Union Public Service Commission. The NTA in a statement said that these measures represent the first concrete step in the institutional rebuild of the agency that has been implemented in line with the recommendations of the higher level committee of experts chaired by Professor K. Radhakrishnan. NTA has notified four positions for general manager on contract, each for an initial term of 3 years. It said that the engagement of young professionals has been undertaken for the first time. Prime Minister Narendra Modi thanked everyone for the responses and positive suggestions received to his video, where he announced the government's decision to bring a strict law to punish those involved in paper leaks. In the video message, Modi said that the new bill incorporating provisions for strong action against paper leaks will be introduced in the ongoing session of Parliament next week. The draft bill, as announced by the Prime Minister in the Instagram video shared by him, was approved by the Union Cabinet yesterday. In a fresh video message released through his Instagram handle yesterday, Mr. Modi said the relations will continue with more bonding.
8: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा।
7: Mr. Modi created a new world record with the most views on a reel in 24 hours, garnering 303 million views as of now. The earlier record was 300 million views.

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म पाकीज़ा में। शब्द रचना कमाल अमरोही की थी, संगीत से सजाया था गुलाम मोहम्मद ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, शमशाद बेगम, लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में। फिल्म है मुगले आजम, स्वर शमशाद बेगम लता मंगेशकर के हैं, शब्द रचना शकील बदायूनी की है, संगीत से सजाया है नौशाद ने।

0: ये वो भी ऐप से, वाह।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
4: अधिक जानकारी के लिए टोल

0: नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अन उपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर को फिल्म लैला मजनू में। बोल साहिर के हैं, संगीत से सजाया है मदन मोहन और जयदेव ने।

किशोर कुमार, महेंद्र कपूर, आशा भोसले और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म जानी दुश्मन में। बोल वर्मा मलिक के थे, संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है आसपास, स्वर लता मंगेशकर और किशोर कुमार का है, शब्द रचना आनंद बख्शी की है, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि यही होता है संपन्न। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। श्रोताओं, एक आवश्यक सूचना सुन लीजिए। वनिता लोक कार्यक्रम के अंतर्गत हेलो सहेली कार्यक्रम में इस सोमवार यानी 27 जुलाई 2026 को अपराह्न 1:15 से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है मस्तिष्क एवं नसों के रोग, कारण एवं निवारण। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर नीलेश गुप्ता, वरिष्ठ न्यूरो फिजिशियन। आप हमारे टेलीफोन नंबर 25 30 135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 94 12 22 55 75। मोबाइल नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 94 12 22 55 75 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में मस्तिष्क एवं नसों के रोग, कारण एवं निवारण से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है मस्तिष्क एवं नसों के रोग, कारण एवं निवारण। यदि आप मस्तिष्क एवं नसों के रोग जैसे मिर्गी, सिरदर्द, लकवा, माइग्रेन, सुनपन, झंझनाहट, कंपन, साइटिका, याददाश्त का कम होना, पार्किंसन डिजीज आदि समस्याओं के समाधान के लिए पूछते हैं तो आप डॉक्टर नीलेश गुप्ता से परामर्श प्राप्त कर सकेंगे। श्रोताओं, कार्यक्रम का दिन रहेगा सोमवार 27 जुलाई और समय रहेगा अपराह्न 1:15। सूचना समाप्त हुई।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
2: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
3: आराम से मैडम।
2: क्या
3: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है, नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
4: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: लीजिए प्रस्तुत है छत्र छाया क्रम में भेंट वार्ता। मानव के सामाजिक सरोकार युधिष्ठिर गौड़ से भेंट कर रहे हैं ओपी सिंह।
5: श्रोताओं, आज के हमारे मेहमान श्री युधिष्ठिर गौड़ साहब जो छाता क्षेत्र के रहने वाले हैं, आप सामाजिक सरोकारों से बंधे हुए हैं या कहें कि समाज के लिए ही वो कार्य कर रहे हैं, शिक्षा के

0: क्षेत्र में उनका बड़ा काम है या उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि एक शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति को आगे ले जाती है, उसकी व्यक्तित्व का विकास करती है, और सही मानव होने में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। तो ऐसे गौड़ साहब, आपका हमारा इस कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार।
1: शुक्रिया।
0: आदमी के, जब मानव के सामाजिक सरोकारों की बात हम करते हैं, तो निश्चित तौर पे आदमी समाज का हिस्सा है, सामाजिक प्राणी उसको कहा भी जाता है, समाज से सीखता है, समाज को देखता है, तो ये लेन देन तो हमेशा से चलता रहा है। लेकिन एक सरोकार की जब हम बात करते हैं, इसकी व्यापकता की बात करते हैं, तो थोड़ा सा, चूंकि आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो हमारे श्रोताओं को बताइए कि एक व्यक्ति के और एक मानव के जो सामाजिक सरोकार हैं, वो कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, इसकी व्यापकता पे थोड़ा सा रोशनी डालने की कोशिश
1: देखिए जी,
0: करिए।
1: मैं जहाँ तक सरोकार की जो भूमिका है, सरोकार शब्द की जो भूमिका है समाज में, वो इस तरह से है कि साधारण तौर पे हम देखते हैं कि जैसे फूल बिखरे हुए हैं और एक धागा उनको प्रो करके एक माला बना देता है, तो जस्ट वो सरोकार से ही हम बंधे हुए हैं। व्यक्ति से व्यक्ति जो बंधा हुआ है वो किसी सरोकार से बंधा हुआ है, इसी तरह समाज की संरचना होती है। तो सरोकार शब्द एक ऐसी चीज़ है जहाँ से एक आदमी से समाज बनता है। अब वो अपने संबंधों के लिए किसी के पास जाता है तो उसका वो सरोकार ही कहलाता है। वो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो समाज के पास जाता है, उठ करके किसी के पास जाता है, तो वहाँ से सरोकार शब्द शुरू होता है। और बिना सरोकार के, अगर सरोकार न होता तो ये समाज समाज से बंधा नहीं होता। हम जो व्यक्ति व्यक्ति से बंधा हुआ है, व्यक्ति समाज से बंधा हुआ है, समाज गांव से बंधा हुआ है, इस तरह से जो समाज बना है
0: एक एक इकाई
1: इकाई करके,
0: करके
1: तो
0: आगे
1: ये
0: बढ़ती है जो।
1: सरोकार ही एकमात्र शब्द है जो हम लोगों को बांधता है और ये दुनिया को चलाए रखता है।
0: जी, तो समाज के लिए भी कहा जाता है कि एक संबंधों का एक
1: हाँ,
0: दर्पण है, एक जाल
1: दर्पण
0: है,
1: है।
0: जहां व्यक्ति अपना जीवन
1: इसीलिए
0: यापन।
1: कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो उसका समाज से सरोकार है मनुष्य का।
0: तो ये संबंध, अगर हम इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें, तो संबंध सामान्यतः तो अपने लाभ के लिए होते हैं।
1: हाँ
0: हाँ, सबसे पहले आदमी अपने लाभ के लिए जुड़ता जाता है, चाहे वो जीविका का लाभ हो, चाहे किसी कार्य का हो, चाहे किसी उद्देश्य का हो। लेकिन जब ये आगे बात चलती है, तो फिर संवेदनशीलता में आती है। तो इसको हम अगर आगे ले जाने चाहें, क्योंकि कुछ लोग समाज में हम देखते हैं कि अपने लिए ही काम कर रहे हैं, हमेशा अपने लिए ही करते रहते हैं, और कुछ लोगों के जीवन का उद्देश्य ही ऐसा होता है कि वो अपने से पहले दूसरे को देखते हैं। तो ये सरोकार की जो भावना है, कब आगे बढ़ जाती है, इस पर थोड़ा, चूंकि आप तो
1: नहीं,
0: व्यावहारिक क्षेत्र में काम कर रहे
1: नहीं,
0: हैं।
1: मैंने देखा जहाँ तक है कि मैं जब किसी चीज़ को, या कोई भी व्यक्ति, एक इकाई, किसी भी चीज़ को अपने हित में लेता है और उस हित में नितांत अपने हित में लेने की कोशिश करता है, तो वो सरोकार, वहाँ से एक सरोकार के लिए वो विष का काम करता है। सरोकार का संबंध यह है कि हम जनता या समाज के लिए जो काम करें वो समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए, ना कि मेरे लिए उपयोगी होना चाहिए। समाज के उपयोग में हमारा उपयोग है, ये सर्वजन हिताय वाली बात है कि मैं अगर दूसरों के लिए अच्छा करूंगा तो मेरे लिए स्वयमेव अच्छा होगा।
0: उसमें मेरी सुरक्षा पहले निहित है।
1: नियत है।
0: समाज को अगर मैं
1: हाँ
0: सुरक्षित कर लेता हूँ, अपने आसपास के दायरे को संबंधों में सुरक्षित कर लेता हूँ, तो मेरा अपने आप सद जाता है।
1: हाँ
0: तो ये देखने का परसेप्शन है कि हम अगर ऐसे देखते हैं तो फिर स्वार्थी हो जाते हैं, और उधर दूर जाके देखते हैं, ऊपर से देखते हैं, तो फिर उस अपना स्वार्थ तो सद ही जाता है, लेकिन सामने वाले के भी कुछ साधन पूरे हो जाते हैं
1: हम
0: इसमें।
1: देखते हैं ना समाज में, जो जहाँ तक सरोकारों का संबंध है, जब भी हम समाज की का अध्ययन करते हैं, समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं, समाज में किसी भी एक संदर्भ का अध्ययन करते हैं, तो उसमें हम देखा करते हैं कि हम इतिहास में केवल उन लोगों को पढ़ते हैं जिन्होंने लोगों को कुछ दिया है। उनका सरोकार कुछ इस तरह का था कि संबंधों में कुछ देना लिखा है। तो ये दुनिया दो तरह से चल रही है, एक तरह हाथ यूं करके लेता है लेने वाले,
0: लेने
1: एक
0: वाले
1: यूं करके देता है। तो
0: जी।
1: देने वालों से ये दुनिया चल रही है। तो
0: मतलब
1: जो
0: जो देने की भावना है समाज में,
1: हाँ
0: वो उसको साधे
1: हाँ
0: हुए है
1: वो
0: उसमें।
1: ईश्वरीय सूत्र है। ईश्वर केवल देने के लिए बना है, वो कभी लेता नहीं है। ऐसे ही मनुष्य जो देने के लिए बने हैं, वो ईश्वरीय ईश्वर के प्रतिनिधि हैं और ईश्वर की आशीर्वाद
0: जी
1: का
0: जी
1: फल लेते हैं।
0: एक समय था जब, अगर थोड़ा सा हम पीछे देखें, कि चाहे साधन कितने भी सीमित हो, उसमें भी आदमी देने की भावना रखता था। लेकिन आज साधन बढ़ गए, संसाधन बढ़ गए, सुविधाएं भी बढ़ गई हैं, लेकिन देने की भावना कहीं कम हुई है, ऐसा आपको लगता
1: हाँ,
0: है?
1: नहीं, देने की भावना जहाँ हम अर्थ हमारे ऊपर हावी होता है और जहाँ हम अपने से अपने लाभ के लिए सोचने लगते हैं किसी भी चीज़ को, तो वहाँ हम संकुचित संकीर्णता के शिकार हो जाते हैं। और उसका यही एक कारण

0: रहने के वहाँ हमारी वो लालसा और ये सब बढ़ जाती है, लोभ लालच। तो लोभ संतोष तो अलग अलग चीजें हैं। संतोष पहले था और संतोष इसलिए था कि वो ये सोचता था कि मैं दूसरों के लिए बनाऊं, अब सोचते हैं कि मैं अपने लिए बनाऊं, और जब मैं अपने लिए बनाऊं और मैं अपने लिए सोचूंगा तो मैं संकीर्ण होता चला जाता हूं
1: फिर
0: और वहां पर
1: हम
0: शांति।
1: लेने वाले में आ
0: हाँ,
1: गए
0: लेने वाले में आ गए।
1: फिर हम समाज
0: और
1: से ले तो रहे लेकिन
0: हाँ,
1: दे नहीं रहे
0: लेने वाला आदमी ऑटोमेटिकली, कभी देखा उन्होंने, लेने वाला आदमी कभी भी संतोषी नहीं होता।
1: जी। तो अब यहां थोड़ा सा अपन उसको, मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे अब बहुत कुछ साधन लोगों के पास है, सुविधाएं हैं, बहुत कुछ अर्जित भी कर लिया है। हम देखते हैं कि जिसको हम उन्नत जीवन कहते हैं, हम विकसित होने की भावना जिसको कहते हैं, लेकिन जो खुशी होने का भाव है, सुखी रहने का भाव है, वो कहीं उसके आनुपातिक रूप में कम होता जा रहा है
0: हाँ
1: उसमें। तो
0: बिल्कुल।
1: इसका कुछ कारण आप समझ पाते हैं?
0: नहीं, इसका एकमात्र कारण ये है कि जहाँ भी आदमी ये सोचता है कि ये मुझे चाहिए, ये मेरे लिए है, तो वो उसकी एक सीमा इस तरह बांध देता है, वो दूसरों के लिए उपयोगी नहीं हो पाता। कोई भी चीज जब हम
1: जी
0: किसी से लेंगे और अपने लिए प्रिजर्व करके रखते हैं, देखो दो प्राणी हैं इस में हम देखते हैं, तो चींटी है और एक हाथी है। हाथी का पेट सबसे ज्यादा बड़ा है दुनिया में, चींटी का सबसे छोटा है, मगर चींटी का लालच क्या होता है कि वो रात में भी आपको ढूंढ घूमते हुए मिल जाएगी। वो क्या करती है कि जो भी मिलता है ना उसे लेकर के घर में रख के आती है, फिर दोबारा आ जाती है। मतलब संग्रह की जो आदत है ना उसको मतलब विश्राम नहीं लेने देती।
1: हाँ
0: और
1: हाँ
0: हाथी देखा है आपने, कभी धूल उड़ाता हुआ मस्तक पे और ये सब मस्ती से झूमता हुआ मिलेगा या आराम करता हुआ मिलेगा। तो इसका संबंध सीधा इससे होता है कि हम जो संग्रह की भावना आ गई है कि ये सिर्फ मेरे लिए हो या मेरा ही हो, वहां हम इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि हमारी लालसा ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। और जब लालसा बढ़ती है तो हमें संतोष खत्म हो जाता है। संतोष सुख का आधार है, लालसा
1: जी
0: सुख का आधार नहीं है।
1: जी जी
0: लालसा बढ़ती
1: जी
0: जाती है तो हमारा
1: हाँ,
0: सुख उस अनुपात में कम होता चला जाता है और हम बेचैन होते चले।
1: इसीलिए यम नियम में जब
0: हाँ
1: संतोष भी है, अपरिग्रह भी है, अस्तेय भी है,
0: हाँ
1: ये जो हमारी पुरानी जो संज्ञाएं थी, पुराने जो वो थे, वो आज भी
0: हाँ
1: प्रासंगिक है, लेकिन व्यक्ति उस पर ध्यान नहीं दे रहा है उसमें। तो उस उनकी तरफ फिर क्या हमें आना पड़ेगा,
0: नहीं,
1: लौटना
0: आप
1: पड़े?
0: जब तक हम नहीं आएंगे ना, जब तक हम नहीं आएंगे, आज भी चाहे 2% हैं या 3% आदमी हैं जो इस तरह के हैं, वो आज हम पे हावी हैं और हम उनके पीछे उनका अनुकरण करते हैं, उनका उदाहरण भी देते हैं।
1: जी
0: तो ये हमें खुद आना पड़ेगा और जब तक नहीं आएंगे तो सुख का आधार नहीं है, हम संतोष जब
1: नहीं
0: तक
1: तो,
0: नहीं
1: लेकिन जैसे एक कहावत थी कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, कि
0: है
1: आदमी ये तो मानता है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो अपने आप को उस संज्ञा में नहीं लाता, अपने
0: इसको
1: आप को
0: भी
1: उस परिधि में नहीं
0: इसको
1: लाता।
0: भी ये ठीक उसी तरीके से है कि जैसे हम कहने के लिए कहते हैं कि हमें क्रांतिकारी होना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, मगर हमारे बच्चे न बने
1: हाँ
0: उसका हम खास तौर से ध्यान रखते हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी ये सब विप्लवी बने,
1: हाँ
0: क्रांतिकारी बने, मगर हमारे बच्चे न बने। कारण क्या है कि उसका जो कुछ देना होता है ना, उस देने के लिए हम तैयार नहीं है। जिस किसी भी चीज के लिए जो देना है, देना से आदमी आगे जाता है, तो उसके लिए हम देने को तैयार नहीं है, इसलिए हम ये सब सामने
1: जी।
0: चीजें आती हैं।
1: अब जैसे आप शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो शिक्षा जो वर्तमान संदर्भों में शिक्षा के मायने भी बदले हैं, शिक्षा का रोजगारोन्मुखी जो है उसका स्वरूप आया है वो भी है, लेकिन शिक्षा वो जो व्यक्ति को देने वाले की भावना विकसित करती है। तो अंबेडकर ने जी ने भी कहा है कि भाई शिक्षित व्यक्ति का एक बहुत बड़ा दुर्गुण है कि वो स्वार्थी हो जाता है, वो
0: हाँ
1: लालची हो जाता है, वो अपने तक सीमित हो जाता है, वो अधिकारों की बात तो करता है
0: हाँ जो
1: लेकिन
0: उसे
1: कर्तव्यों
0: जानकारी
1: की
0: मिलती है
1: बात।
0: ना, शिक्षा से जो
1: हाँ
0: जानकारी मिलती है उसे वो अपने लिए हथियार बनाता है, अपने अपने स्व
1: जी
0: के लिए।
1: जी
0: तो ये प्रॉब्लम आती है।
1: जी तो अब आप तो शिक्षा में काम कर रहे हैं, तो वो जो शिक्षा का मूल स्वरूप होना चाहिए उसमें कुछ आप
0: हाँ नहीं,
1: बदलाव?
0: मैं बताऊँ आपको, मैंने जहाँ तक अपने शास्त्रों में पढ़ा है या मैं जहाँ तक सोचता हूँ, किसी भी कार्य का एक उद्देश्य होता है। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है, क्या हो वो अलग है, और क्या है ये हम अपने उसमें ले लेते हैं। तो उसका उद्देश्य साप विद्या या विमुक्त, ये लिखा हुआ मिलता है हमें। तो जो भी विद्या वही है, केवल शिक्षा एकमात्र शिक्षा वो है जो विमुक्ति का साधन बनती है। विमुक्ति का मतलब ये है कि हमारे कष्टों से विमुक्त कराए हमें, हमारे जो दैनिक क्रियाकलाप हैं उनमें शांति दे, बेचैनी न
1: जी
0: रहे,
1: जी जी जी
0: हमें वो सब चीज़ सिखाए कि जिससे हमारी एक तरह से जो हम मोक्ष भावना को लेकर के चलते हैं या कहाँ ऐसी कुछ भावना को लेकर चलते हैं, उसकी तरफ हमें दखल, मतलब हमें आध्यात्मिक बनाए।
1: जी जी जी हमारे हमारे
0: मगर
1: मूल जो होने
0: हाँ
1: का औचित्य है, हमारे
0: हाँ
1: अपने होने का औचित्य
0: मनुष्य मन मनुष्य बनने का

0: मनोर्भवों में कहा गया है वो विद्या के मनुष्य बनो, तो हम किस तरह से मनुष्य बने? ईश्वर ने हमको इसलिए नहीं भेजा कि हमारा 100%, मैं इस चीज को मानता हूँ स्वयं, कि मनुष्य किसी भी प्राणी को एक उद्देश्य दे करके भेजता है और वो उसका उद्देश्य, जब उद्देश्य भटकता है ना तो वो बिखर जाता है। तो मनुष्य होने का उद्देश्य ये है कि हम दूसरों के लिए कुछ करें। और ये कहा भी जाए मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे।
1: जी जी जी, तो मतलब अपने से पहले दूसरे के लिए हम सोचो।
0: तो शिक्षा, हम शिक्षा भी हम वही दे रहे हैं। हम जहां तक शिक्षा को जब हथियार बना लेते हैं
1: इसमें, जैसे चलो शिक्षित भी हो गए, साधन भी हमने कमा लिए, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा जो सुखी होने का भाव है, मैं फिर से आपसे वो पूछना चाह रहा हूँ कि सब कुछ होते हुए भी आदमी प्रसन्न नहीं है, तो क्या लगता है कि आदमी प्रसन्नता कहीं गलत जगह ढूंढ रहा है, खुशी कहीं गलत जगह ढूंढ रहा है, या साधनों में या संसार में सुखी और खुशी नहीं है? इस पर चूंकि काम का आपका एक लंबा जीवन हो गया और आपने बहुत सारी चीज़ों को, समाज की को देखा है, कुछ को छोड़ा है, कुछ को अपनाया है, एक जीवन के निष्कर्ष में आप क्या देखते हैं कि हम खुश कब हो सकते हैं?
0: देखिए, जब जब हम सुकून में आने की कोशिश करते हैं तो उस समय हम देखते हैं हमने कुछ त्याग किया है। त्यागने के बाद में कुछ चीज़ें हमें त्यागनी चाहिए, जैसे ये जो चीज़ दुर्गुण है, लाभ है लाभ लोलुपता है या लालच है, इनसे जब हम बाहर जाएंगे तभी हमको शांति मिलती है।
1: जी जी,
0: और हम ये करते हैं तब हमें, जब जब ये हमने किया है तब तक हमें शांति मिलती है।
1: जी,
0: सेवा
1: जी।
0: में जब हम जाते हैं तो मनुष्य का एक एक एक उदाहरण मेरी माँ मुझे दिया करती थी।
1: जी जी जी जी,
0: कि भगवान ने मुझे, उसने प्रश्न पूछा कि भगवान ने मनुष्य को सबसे पहले बनाया, सबके बाद में बनाया, मनुष्य को कब बनाया और मनुष्य को क्यों बनाया? तो मनुष्य को बनाने का उन्होंने एक कहानी सुनाई थी कि जैसे बुजुर्ग पहले खाना बनाती थी रोटी, तो उस हर रोटी के हर लोई में से कुछ तोड़ करके अलग रख देती थी।
1: जी जी जी,
0: तो ऐसे ही भगवान ने जब प्राणियों को बनाया, उनकी अपनी एक कहानी थी, इसका साइंटिफिक कोई आधार नहीं है
1: जी जी,
0: मगर
1: उसके समझाने के
0: भावात्मक एक वो है कि वो क्या करते थे, भगवान ने एक चींटी को बनाया, फिर किसी और को बनाया, तो उसकी जो फिनिशिंग में से जो मिट्टी बची उसमें से उन्होंने सोचा कि अब इसका क्या करूं, तो उन्होंने कहा इससे अगर मैं कुछ बनाऊंगा तो ऐसा बनाऊंगा कि जो प्राणी मात्र के लिए ये सोचेगा, क्योंकि उसका उसमें हिस्सा है।
1: जी जी जी, तो विषय बहुत बड़ा है, सामाजिक सरोकारों पे और भी चर्चाएं हो सकती हैं, और भी दृष्टिकोण हो सकते हैं, लेकिन आपकी बातचीत से जो निकल करके आ रहा है।
2: छत्रछाया क्रम में भी आप सुन रहे थे मानव के सामाजिक सरोकार विषय पर भेंट वार्ता, युधिष्ठिर गौड़ से भेंट कर रहे थे ओपी सिंह। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 9:15 होने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जिले की हलचल।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए मेरठ और गाजीपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं मेरठ जिले की हलचल, आलेख और स्वर है संगीता श्रीवास्तव का।
2: उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने मेरठ मंडल के पर्यटन और सांस्कृतिक विकास से जुड़े प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों को पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित करने की कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में पर्यटन विभाग की कुल 27 परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिनकी अनुमानित लागत लगभग 50 करोड़ रुपए से अधिक है। इनमें मेरठ के 2, गाजियाबाद के 4, गौतम बुद्ध नगर के 3, बुलंदशहर के 7 और हापुड़ के 8 प्रस्ताव शामिल हैं। ब्रजघाट क्षेत्र के पर्यटन विकास और गंगा तट से जुड़े स्थलों को भी विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। बैठक में विरासत स्थलों को पर्यटन परिपथ से जोड़ने की रणनीति पर भी चर्चा की गई। पर्यटन मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यटन को स्थानीय आस्था, सांस्कृतिक विरासत और जन भागीदारी से जोड़ते हुए नए आयाम देने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में 199 मेधावियों को पदक प्रदान किए। राज्यपाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि चौधरी चरण सिंह जी का व्यक्तित्व भारतीय लोकतंत्र में सादगी, ईमानदारी, संघर्ष और जनसेवा के अद्भुत उदाहरण था। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गाँव, गरीब और किसान के उत्थान के लिए समर्पित किया। राज्यपाल ने कहा कि आज समाज में बिना विचार किए किसी भी विचारधारा या झंडे के पीछे चल पड़ने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। युवाओं को पहले यह समझना चाहिए कि वे जो कार्य कर रहे हैं वह देश हित में है या नहीं। विश्वविद्यालय का दायित्व केवल शिक्षा देना नहीं बल्कि विद्यार्थियों से सही सोच और राष्ट्रहित की भावना को विकसित करना भी है। अमर यात्रा को सकुशल एवं शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने हेतु शासन द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन SP गोयल एवं DGP राजीव कृष्ण की संयुक्त अध्यक्षता में कांवड़ यात्रा को लेकर मंडलायुक्त सभागार में मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद मंडल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा व राजस्थान राज्यों के वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। वर्चुअल माध्यम से संबंधित समस्त अधिकारी भी जुड़े। पश्चिम उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों के अधिकारियों ने कांवड़ यात्रा कार्यवाही से अवगत कराया गया। बैठक कांवड़ यात्रा के संबंध में आने वाली चुनौतियां एवं उनसे निमटने के लिए की गई तैयारियों की जानकारी दी गई। मुख्य सचिव SP गोयल ने कहा कि कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसे सफलता पूर्वक संपन्न कराना हम सभी का साझा दायित्व है। इसके लिए सभी विभाग अपने अपने दायित्व एवं दिए गए निर्देशों का 100% सुनिश्चित पालन करें। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान संपूर्ण कांवड़ मार्ग एवं उससे जुड़े सभी प्रमुख स्थलों पर नियमित साफ सफाई, स्वच्छता एवं सैनिटेशन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कांवड़ शिविरों का संचालन निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाए। शिविर के लिए आवश्यक अनुमति, विद्युत कनेक्शन, अग्नि सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा एवं अन्य सभी सुरक्षा मानकों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
3: कांवड़ यात्रा सकुशल बिना किसी विघ्न बाधा के पूरी हो सके, किसी भी कांवड़िया को कहीं कोई कष्ट न हो, सुचारू रूप से ये कार्यक्रम संपन्न हो, उनका सम्मान के साथ सारे लोग योगदान करें।
2: केंद्र में NDA सरकार के 12 वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाएं आत्मनिर्भर और सशक्त हुई हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्टैंड अप इंडिया में हुनरमंद महिलाओं ने रोजगार शुरू किया और कामयाबी के कदम चूमे। मेरठ की ममता गर्ग ने घर से ही हैंडीक्राफ्ट का कार्य शुरू किया। उन्हें स्टैंड अप इंडिया योजना में 10 लाख का लोन मिला, जिससे ममता गर्ग ने काम को आगे बढ़ाया। आज वह भगवान की पोशाक लड्डू गोपाल के सिंहासन पालने बंदर विभिन्न प्रकार के हैंडीक्राफ्ट की वस्तुएं बना रही हैं। खुद सशक्त बनने के साथ ही उन्होंने अन्य महिलाओं को भी रोजगार दिया। आज उनका हैंडीक्राफ्ट भारत ही नहीं अन्य देशों में भी पसंद किया जा रहा है।
4: मेरी काफी सारे हैंडीक्राफ्ट आइटम की मैन्युफैक्चरिंग है, जिसमें कि मैं भगवान के पालने, सिंहासन ये सब बनाते हैं, बंधनवार बनाते हैं और पूजा के लक्ष्मी गणेश और होली से रिलेटेड सामान सभी कुछ हमारे यहाँ बनता है।
2: मेरठ में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस योजना के शुभारंभ अवसर पर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में एक महत्वपूर्ण आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, सांसद अरुण गोविल मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लाइव संबोधन भी सुना गया। कार्यक्रम में शिक्षकों को मुख्यमंत्री कौशल कैशलेस योजना का कार्ड देकर सम्मानित किया गया। साथ ही स्कूली छात्र छात्राओं को DBT के माध्यम से योजनाओं से लाभान्वित किया गया। इस अवसर पर राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में लगातार विकास कार्य प्राथमिकता से कराए जा रहे हैं, जिससे छात्र छात्राओं और शिक्षकों को अच्छा शिक्षा का माहौल और शिक्षा का स्तर मिल रहा है।
1: मेरठ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गाजीपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है श्रीराम राय का।
5: पिछले दिनों गाजीपुर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने स्वामी विवेकानंद के गुरु पौहारी बाबा के आश्रम में दर्शन पूजन के बाद केंद्र में NDA सरकार के 12 साल पूरे होने पर लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया एवं उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि देश में बड़ी संख्या में लोग सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने गाजीपुर के वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व जिला अध्यक्ष कृष्ण बिहारी राय को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है। पद मिलने के बाद गाजीपुर में प्रथम आगमन पर कृष्ण बिहारी राय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं, महिलाओं, गरीबों एवं जन कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने पर आयोजित प्रदर्शनी

0: एवं कार्यक्रमों में जितना जनता उत्साह से भाग ले रही है, उससे यह सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी लोक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के नगर विकास राज्य मंत्री उमेश राय का भी आगमन गाजीपुर के मोहम्मदाबाद तहसील क्षेत्र के पैतृक गांव पलिया में हुआ। पलिया पहुंचने पर उमेश राय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की विजय से पूरे भारत में उत्साह का माहौल है। गाजीपुर में किसान कल्याण के लिए जगह जगह कैंप लगाकर किसानों को वैज्ञानिक खेती तथा केसीसी के संबंध में जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कृषि निदेशक विजय कुमार ने कहा कि धान के मौसम में किसान नर्सरी के बजाय सीधे खेतों में नमी के बीच बीज बोकर खेती कर सकते हैं, इससे उपज अच्छी होती है। उन्होंने सूखे को ध्यान में रखते हुए किसानों से बाजरा, ज्वार, मक्का आदि की खेती करने की भी अपील की। वहीं अग्रणी जिला प्रबंधक यूनियन बैंक राजदेव ने कहा कि मात्र 4% ब्याज दर पर सभी किसानों का केसीसी कार्ड बनाया जा रहा है एवं केसीसी बन जाने पर सभी किसान फसल बीमा का लाभ ले सकेंगे। उन्होंने गाजीपुर के सभी किसानों से अपने निकटतम बैंक से केसीसी बनवाने की अपील की। आगामी कांवड़ यात्रा एवं श्रावण माह में भगवान शिव के जलाभिषेक के मद्देनजर जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरज राजा ने गाजीपुर के विभिन्न घाटों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने कहा कि कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा, स्नान, जल लेने या जलाभिषेक के समय न हो, इसके लिए पूरे जनपद में प्रसिद्ध देवालयों का निरीक्षण किया जा रहा है तथा गंगा घाटों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं।
1: श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, ये हम लोग की व्यवस्था है कि आवागमन में कोई दिक्कत ना हो, कि उनके रहने के लिए, बैठने के लिए, स्नान करने के लिए प्लस जल लेने के लिए कोई दिक्कत ना हो, भीड़ का नियंत्रण ठीक से हो, प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो, यही सब देखा जा रहा है।
0: गाजीपुर के विकास भवन में मुख्य विकास अधिकारी आलोक प्रसाद की अध्यक्षता में निपुण भारत मिशन की कार्यशाला का आयोजन किया गया। ज्ञातव्य है कि अभी प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने वाले निपुण भारत मिशन के तहत जनपद के 30% स्कूल ही आच्छादित हो पाए हैं। ऐसे में जिले के सभी विद्यालयों को निपुण बनाने पर जोर दिया जा रहा है। निपुण भारत मिशन के तहत विद्यालयों में कक्षा 3 तक के बच्चों को पढ़ने, लिखने और बुनियादी गणित की जानकारी देने का लक्ष्य निर्धारित है।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आबोहवा। कार्यक्रम में आज वार्ता का विषय है जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां। वाचन कर रहे हैं अनिल कुमार गुप्ता।
4: वैश्विक तापमान वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग विश्व की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है, जिसके प्रभावों से केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि धरती पर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ तक कि वनस्पति भी त्रस्त है। आखिर है क्या ग्लोबल वार्मिंग? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ग्लोबल वार्मिंग धरती एवं उसके चारों ओर के वातावरण में लगातार हो रही बढ़ोतरी है। हमारी धरती प्राकृतिक तौर पर सूर्य की किरणों से ऊष्मा प्राप्त करती है। ये किरणें वायुमंडल से गुजरते हुए धरती की सतह से टकराती हैं और फिर वहीं से परावर्तित होकर पुनः लौट जाती हैं। धरती का वायुमंडल कई गैसों से मिलकर बना होता है, जिससे कुछ ग्रीन हाउस गैस भी शामिल होती हैं, जो धरती के ऊपर एक प्रकार की प्राकृतिक आवरण बना लेती है। ये आवरण लौटती किरणों के एक हिस्से को रोक लेता है और धरती का वातावरण गर्म बना रहता है, जो कि प्राणियों एवं वनस्पति के जीवन हेतु आवश्यक है। किंतु वर्तमान में ग्रीन हाउस गैसों में बढ़ोतरी होने से ये आवरण और भी सघन होता जा रहा है। ऐसे में आवरण सूर्य की आवश्यकता से अधिक किरणों को रोकने लगता है। नतीजा ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव के रूप में सामने आता है। वास्तव में ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार तो मनुष्य और उसकी गतिविधियां ही है। स्वयं को धरती का सबसे बुद्धिमान प्राणी समझने वाला मनुष्य जाने अनजाने में अपने ही पर्यावरण आवास को नष्ट करने में तुला हुआ है। मनुष्य जनित गतिविधियां औद्योगिकरण, शहरीकरण, पावर प्लांट, जनसंख्या विस्फोट, अनाधुन कटाई से अत्यधिक मात्रा में ग्रीन हाउस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड मुक्त हो रही हैं, जो पृथ्वी के चारों ओर कंबल की तरह सघन आवरण बना रही है। फलस्वरूप सूर्य की परावर्तित किरणों को रोककर पृथ्वी के तापमान में वृद्धि कर रही है। एक अन्य वजह है क्लोरोफ्लोरोसिस, जो रेफ्रिजरेटर्स आदि में इस्तेमाल की जाती है। ये धरती के प्राकृतिक सुरक्षा आवरण ओजोन परत को नष्ट कर देती है, जिससे सूर्य की घातक पर्यावरण किरणें धरती पर सीधे पहुंच जाती हैं और उसे लगातार गर्म बना रहती है। बढ़ता हुआ तापमान विश्व में एक चुनौती की तरह सामने आ रहा है। बढ़ते

तापमान का नतीजा है लोकल, रीजनल और ग्लोबल स्तर पर पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन। सीजनल चेंजेस, मौसम परिवर्तन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सूखा आदि, साथ ही विकिरण बजट डगमगाने से वनस्पतियों की प्रकाश संश्लेषण की दर परिवर्तित हो गई है, जिसका परिणाम स्पष्ट रूप से उत्पादकता पर पड़ा है। वेजिटेशन पैटर्न बदल गया है, शीतकालीन वनस्पतियों का स्थान अधिक तापमान वाली वनस्पतियों ने ले लिया है। कृषक भी अधिक ताप सहने वाली फसल एवं वैरायटीज को उगा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन से मनुष्य सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। गर्मी बढ़ने से मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर, कैंसर तथा अन्य अनेक संक्रामक रोग फैल रहे हैं। पशु पक्षियां व सूक्ष्म जीवों पर गहरा असर पड़ा है। सेंसिटिव जीव या तो लुप्त हो रहे हैं, जैव विविधता में कमी आती है, ठंडे प्रदेशों में पलायन कर रहे हैं, जबकि हानिकारक जीव गर्मी से अत्यधिक वृद्धि कर अनुकूलित होकर घातक होते जा रहे हैं। बढ़ते तापमान का सीधा असर पोलर क्षेत्रों पर जमी बर्फ पर पड़ा है। ग्लेशियर या ध्रुवीय बर्फ के पिघलने से समुद्र की सतह में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे प्राकृतिक तटों का कटाव शुरू हो जाता है। तटों का बड़ा हिस्सा टूट जाता है, तटीय इलाके जगमग हो जाते हैं, वहाँ रहने वाले लोग बेघर हो जाते हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी का 70% भाग पानी है, अतः ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणामों के प्रति दुनिया भर में चिंता बढ़ रही है। क्योटो संधि इस दिशा में एक कदम है। ये संधि हानिकारक गैसों के एमिशन को कम करने के संबंध में है। वैश्विक स्तर के इस प्रयासों के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास जारी हैं। ये जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं बल्कि हम सभी को इस क्षेत्र में योगदान देना होगा। जंगलों की कटाई को रोककर अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। पेट्रोल, डीजल, बिजली, जैव ईंधन का उपयोग कम कर वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग पर ध्यान देना चाहिए, जिससे गैसों के एमिशन को कम किया जा सके।

0: आबोहवा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे वार्ता जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां। वाचन कर रहे थे अनिल कुमार गुप्ता। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान।
0: लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज दर्पण। प्रस्तुति दे रही हैं सुरभि शर्मा।

सुप्रभात, करते हैं एक नई शुरुआत नए उमंग और नए उत्साह के साथ। आजकल का जो मौसम चल रहा है श्रोताओं, गर्मी के बाद बारिश, बारिश के बाद गर्मी और उमस का मौसम, ऐसे में मन करता है कहीं ऐसी जगह जाएं जहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हों, झरझर झरझर झरना बह रहा हो या ठंडे समुद्र का किनारा हो। सब लोग यही करते भी हैं, जाएंगे झरने के किनारे बैठ जाएंगे, बहते हुए झरने को देखेंगे, समंदर के किनारे चले जाएंगे, आराम से रेत पर बैठे हुए समंदर की लहरों को आते जाते देखते रहते हैं। लेकिन अगर समंदर में लहरें ऊंची उठने लग जाएं, अचानक बारिश का मौसम बिगड़ जाए, अचानक झरने में पानी तेज गति से आ जाए, और अगर आप कहीं ऐसी जगह बैठे हों वहाँ पर अचानक पानी का बहाव तेज हो जाए, तो आप क्या करेंगे? निसंदेह ये तो आपके लिए जानलेवा स्थिति बन सकती है। ऐसे में आपको ये सोचकर चलना है कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपको जान माल की हानि हो। थोड़ा दूर बैठें और

0: किसी सुरक्षित जगह पर आप अपने जीवन का आनंद लें जहां पे किसी भी तरह की मुसीबत का सामना ना करना पड़े। वेदर फोरकास्ट को भी ध्यान में रखें, क्या कहता है मौसम और क्या कहता है मौसम की भविष्यवाणी। कई बार ऐसा होता है कि भविष्यवाणी मौसम की साबित दी जाती है कि यहाँ पर बारिश आने वाली है, जल का प्रवाह तेज होने वाला है, लेकिन हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। अरे नहीं, हम अपने आनंद के आगे कुछ भी ना सोचते हैं ना समझते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप इन बातों को ध्यान नहीं रखें तो अचानक आपके ऊपर जो आपदा आती है उससे बचना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाता है। अक्सर हम ऐसी घटनाएं देखते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं कि परिवार अचानक गया, वहाँ पर हंसी खुशी का माहौल था, आनंद ले रहा था, अपने पल को एंजॉय कर रहा था, अचानक पानी का बहाव तेज हो गया, समंदर में लहरें ऊंची उठने लगीं, उससे क्या हुआ, जान और माल की हानि हो गई। वो ऐसी हानि होती है जो वापस नहीं जा सकती। आज का दिन है विश्व डूबने से बचाव दिवस, यानी कि आप किस प्रकार अपने को डूबने से बचा सकते हैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी जागरूकता जरूरी है। अगर आप जागरूक हैं, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो निसंदेह आप इन मुसीबत से बच जाएंगे।
1: मैं तुझे प्यार कर

0: श्रोताओं, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे ब्रज में राजकीय मेला यानी मुड़िया पूर्णिमा का मेला का आरंभ हो चुका है। इसी विषय को लेकर शासन प्रशासन अति गंभीर है और पूरी तैयारियों के साथ श्रद्धालुओं के आगमन के लिए तैयार है। स्वास्थ्य विभाग ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाई है, हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर मेले में आए उसे किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इन सारे विषयों को लेकर हमने बातचीत करी हमारे साथ है।
1: मैं डॉक्टर राधा वल्लभ, मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद मथुरा।
0: श्रोता, जैसे कि आप जानते ही हैं कि मेले का आरंभ हो चुका है और मेले को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी मुस्तैदी से हर संभव प्रयास किए जा रहा है। क्या है यह प्रयास, सुनिए सर से।
1: मेले में इस बार भीड़ बहुत आने की उम्मीद है, गोवर्धन में। खास करके गोवर्धन में हम लोगों ने करीब करीब अपने इस बार 22 बूथ लगाए हैं। इन बूथों पे चिकित्सा के स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, वार्ड बॉय, पीएचओ और अन्य स्टाफ हमारा रहेगा। इसमें की दवाई पट्टी का काम और भी कोई काम है वो वहां रहेगा। ऑक्सीजन की उपलब्धता रहेगी, सबसे बेड भी उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा जो हमारा बेस हॉस्पिटल है सीएचसी पर है, गोवर्धन सीएचसी पे है, वहां पे हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर तैनात रहेंगे, जिसमें बेहोशी का डॉक्टर, एक हड्डी का डॉक्टर, एक जच्चा बच्चा रोग विशेषज्ञ का डॉक्टर, इतने हमारे डॉक्टर रहेंगे। इसके अलावा हमारे इमरजेंसी डॉक्टर्स भी तैनात रहेंगे। मेले के इर्द गिर्द जो हमारी और सब सीएचसी पड़ती है, उस पार है, छाता है, कोसी है, परसाना है, कोसी खुर्द है और जितने भी अन्य हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सबसे हम लोगों ने चिकित्सकों की व्यवस्था कर ली। इस बार मेले में करीब करीब हमारी 25,108 एम्बुलेंस रहेंगी। इसके अतिरिक्त हमारे पास 5 ALS एम्बुलेंस एम्बुलेंस विशेष तौर पे रहेंगी। कोई भी ऐसा रोगग्रस्त व्यक्ति आता है या भीड़ भाड़ में दब जाता है या और उसे कोई चोट वोट लग जाती है, तो ऐसे स्थिति में हम उन लोगों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या हमने अपने गोवर्धन के इर्द गिर्द 9 कंटीजेंसी हॉस्पिटल रखे हैं। मेडिकल कॉलेज उसमें 2 हैं, टिम्स हैं उसमें, और भी कई अन्य हॉस्पिटल हैं जिनको हम लोगों ने एम्पैनल कर रखा है। मेले में ये भी दिक्कत आती है कि कई बार लंबा क्षेत्र होता है, सांप काटने के लिए हमारे पास पीएचवी की दवाई रहेगी, वैक्सीन रहेगी, वो भी हमारी सीएचसी पे और 2-3 जगह और उपलब्ध रहेगी। डॉग बाइट के इंजेक्शन, कुत्ता काटे के इंजेक्शन भी हमारे यहाँ पूरे उपलब्ध रहेंगे। और इस बार भीड़ के मध्य को देखते हुए हम लोगों ने ये व्यवस्था की है कि कभी कभी हमारे 4 पहिया वाहन अंदर तक नहीं जा पाते हैं, तो हमने बाइक एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की है और इस बार 7 बाइक एम्बुलेंस रहेंगी, जिससे कि हम लोग शीघ्र अति शीघ्र भीड़ के अंदर पहुंच जाए और कहीं भी कोई दिक्कत हो तो उसे हम लोग दूर कर सकते।
0: आपने जिक्र किया कि 22 बूथों का निर्माण किया गया, क्या ये बूथ परिक्रमा मार्ग के अंदर स्थित है या शहर के बाहर स्थापित किए गए हैं?

0: परिक्रमा मार्ग के ये सारे बूथ इर्द गिर्द हैं, लगभग लगभग एक बूथ से दूसरे बूथ के में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, लगभग एक किलोमीटर का अंतर रहेगा, है ना, ताकि यदि किसी को भी भीड़ भाड़ में दिक्कत ना हो, हर जगह हमारी दवाइयां उपलब्ध रहें, लोग उपलब्ध रहें।
1: क्या ये सारी व्यवस्थाएं निशुल्क हैं या फिर कुछ शुल्क देना पड़ेगा?
0: निशुल्क है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं सारे हम लोग, दवाइयां भी हमें गवर्नमेंट से ही मिलती हैं और इसलिए सारी व्यवस्था हमारी निशुल्क रहती।
1: क्या इसके लिए कुछ प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, अपना आधार कार्ड पैन कार्ड की कॉपी, कोई भी व्यक्ति कभी भी जा सकता है?
0: नहीं नहीं कोई भी व्यक्ति कभी भी आ जा सकता है, इमरजेंसी में कोई प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है ना।

0: प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है ना, बगैर उसके भी वो अपना पर्चा ले सकता है, बगैर उसके भी उसकी दवाई हो
1: जी। अगर कोई परिक्रमार्थी परिक्रमा लगा रहा, अचानक बीच में उसकी तबीयत खराब हो जाए, तो कोई ऐसा नंबर वो कैसे कांटेक्ट करे अपने आसपास के नियरेस्ट प्राथमिक चिकित्सालय को या चिकित्सा सेवाओं को?
0: कंट्रोल रूम जो हमारा है वो बेस हॉस्पिटल पर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी है, और वहाँ तहसील में भी एक कंट्रोल रूम है, और इसके अलावा भी हमारे जो बूथ हैं जगह जगह रहेंगे, वहाँ पर सारे लोग उपलब्ध रहेंगे, तो इसलिए कोई दिक्कत आने की उम्मीद नहीं।
1: परिक्रमार्थी कभी कभी शिकायत करते हैं कि हम कभी जाते हैं तो कभी ऐसा हमारे पर जो शिकायतें आती हैं, कभी हम जाते हैं हमें कुछ व्यक्ति बैठे हुए नहीं मिलते हैं, क्या ऐसा अगर हो तो व्यक्ति क्या करे?
0: ज्यादातर समय तो लोग मिलते ही हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि भीड़ में किसी को देखने के लिए या दवाई पट्टी करने के लिए या कोई और, कई बार ऐसा होता है कि अपनी जगह से हट के दूसरी जगह भी भीड़ में जाना पड़ सकता है।
1: जी बिल्कुल,
0: तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि उस समय वो लोग उपलब्ध ना रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई वो लोग वहां नहीं है, थोड़ी देर बाद वो अपने स्थान पे फिर से आ जाते।
1: अगर कोई व्यक्ति की स्थिति ज्यादा गंभीर हो जाए, किसी व्यक्ति के साथ ऐसी बीमारी हो जो गंभीर बीमारी, फिर भी वो परिक्रमा लगा रहा, अचानक उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाए, क्या उसकी परिस्थितियों के लिए भी स्वास्थ्य विभाग तैयार?
0: गंभीर यदि रोग है तो हम लोग की जो राय है कि ऐसी स्थिति में वो चक्कर ना लगाए, है ना
1: जी।
0: लेकिन फिर भी यदि किसी को रास्ते में दिक्कत आती है और अन्य समस्या होती तो हमारे जितने भी 22 बूथ हैं सब पर ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध है
1: जी।
0: और क्रिटिकल केयर के लिए हमारे पास डॉक्टर्स भी एससी पे उपलब्ध
1: जी।
0: और विशेष स्थिति में यदि कोई ऐसा केस होता है तो हमारे पास एम्बुलेंस भी ALS वाली है, हम उनको शीघ्र अतिशीघ्र उनको हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज सकते हैं
1: जी। जब परिक्रमार्थी सड़क मार्ग से परिक्रमा लगाते हैं तो वहाँ भीड़ भाड़ होती है, शहर भी है, वहाँ पे दुकानें भी, लेकिन जब वो तलहटी के अंदर से परिक्रमा लगाते हैं तो वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा होता है, वहाँ पर भीड़ भाड़ इतनी, ना कोई दुकानें है। अगर वहाँ किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाए, क्या कोई ऐसा नंबर आप बताना चाहेंगे जिस पे कॉन्टेक्ट करके वो अपने पास स्वास्थ्य सेवाएं बुला सके?
0: तलहटी के इर्द गिर्द प्रशासन ने इस बार अच्छी व्यवस्था कर रखी है, किसी को स्नान करने नहीं दिया जाएगा वहाँ, क्योंकि पहले भी लगभग कई बार घटनाएं हो चुकी है, प्रशासन की और प्रकाश की वहाँ पे अच्छी व्यवस्था रहेगी और हमारी टीमें भी रहेंगी, है ना, तो इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं
1: जी। क्योंकि बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में जहरीले कीड़े मकोड़े के निकलने की पूरी अंदेशा रहता है। श्रद्धालु ये पूछना चाहते हैं कि क्या जहरीले कीड़े, सर्प, दंश वगैरह जो है उनसे निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह तैयार है?
0: सर्प दंश के लिए जैसा मैंने बताया है कि ASV का इंजेक्शन है, वो हमारे PSC पे उपलब्ध रहेगा और दो जगह और उपलब्ध रहेगा, और इसके साथ डॉग बाइट, कुत्ता काटी की वैक्सीन भी वो पूर्णतः सारी जगह उपलब्ध रहेगी
1: जी,
0: तो इसलिए कोई दिक्कत आने की उम्मीद नहीं
1: जी। श्रद्धा के आगे व्यक्ति नतमस्तक हो जाता है, ऐसे में कुछ गर्भवती महिलाएं भी हैं, बहुत छोटे बच्चों को लेकर भी लोग परिक्रमा लगाने आ जाते हैं, उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: गर्भवती महिलाएं हैं तो उनके संबंध में तो यही है कि वो अपना भीड़ भाड़ वाले स्थान पे ना जाएं, है ना, लेकिन यदि इसकी बात भी कोई नहीं मानता है और कोई होती है तो प्रशासनिक, तो हमारे यहाँ पे स्त्री रोग विशेषज्ञ तैनात है और बाल रोग विशेषज्ञ भी रहेंगे, कोई आती है दिक्कत तो उनको हम लोग देख लेंगे।
1: क्या कहना चाहेंगे सभी श्रोताओं?
0: सभी श्रोताओं से कहना चाहेंगे कि आस्था का पर्व है, आपस में मिलजुल कर रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, दर्शन करना है और अपना वो ठीक से करके जाएं, बगैर भेदभाव को, और इसको अच्छे से करें, है ना, फिर भीड़ से दूर रहें, सामान्य बर्ताव का व्यवहार सही रखें।
2: सबसे पहले गिरिराज महाराज की जय। ये मुड़िया मेला जो दिनांक 23 तारीख से शुरू होकर 30 तारीख तक रहेगा, जिसका के गुरु पूर्णिमा पर्व 29 जुलाई को है, इसके लिए करोड़

0: यात्री यहाँ पे परिक्रमा देने गोवर्धन में आते हैं। परिवहन निगम के लिए एक जिम्मेदारी होती है कि उनको सकुशल मथुरा से गोवर्धन पहुंचाना और गोवर्धन से मथुरा या जहां गंतव्य है उन स्थानों पर पहुंचाना, जिसके लिए परिवहन निगम उनको सुरक्षित यात्रा कराने के लिए कटिबद्ध है। इस गुरु पूर्णिमा पर्व पर मुड़िया मेला में आगरा क्षेत्र रोडवेज ने 1000 बसें आवंटित की हैं। 100 बसें इसके अलावा रिजर्व भी की हैं। इस प्रकार 1100 बसें आवंटित रहेंगी, जो दिनांक 23 से शुरुआत हो जाएगी। जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी बसों की संख्या बढ़ती जाएगी। बसें जो होंगी वो नीट एंड क्लीन सुरक्षित होंगी, नई बसें होंगी। हमारे मेले को परिवहन निगम ने 7 सेक्टर में बांटा है। प्रत्येक सेक्टर पर 2 अधिकारी तैनात किए गए हैं। जाम की व्यवस्था को मुक्त करने के लिए QRT टीम लगाई गई है, जो कि इंटरसेप्टर से उपलब्ध रहेंगी, और 6 पॉइंट पर हमारी इंटरसेप्टर उपलब्ध रहेंगी। जो यहाँ की व्यवस्था के तहत जो धौली प्याऊ का रेलवे ग्राउंड है उसको पार्किंग स्थल रखा गया है। रेलवे के गेट नंबर 2 से बसों की शुरुआत होगी और गोवर्धन वाया अडिंग जाएंगी। लौटने का रास्ता वाया सोंख होकर होगा। आने जाने का किराया 50 रुपया रखा गया है। जाने का रास्ता वाया अडिंग होके है और आने का रास्ता वाया सोंख होकर है। तो इस प्रकार परिवहन निगम ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। यदि कोई बस किसी प्रकार की कहीं ब्रेक डाउन हो जाती है या कोई खराब हो जाती है या कोई इंसिडेंट हो जाती है तो उसको तत्काल अटेंड कराने के लिए हमारी QRT टीम और जो हमारे क्रेन्स अवेलेबल रहेंगी, किसी को कोई कठिनाई नहीं होने देंगे और सुरक्षित यात्रा कराने के लिए सभी श्रद्धालुओं को हम कटिबद्ध हैं। हम पूरी तरीके से निष्ठा के साथ उनको सुरक्षित यात्रा करवाएं।
1: श्रोता, मुड़िया पूर्णिमा का मेला शुरू हो चुका है और अभी आपने सुनी उससे संबंधित उपयोगी जानकारी। पहले आपने सुना CMO मथुरा राधा वल्लभ जी को किस प्रकार स्वास्थ्य सेवाओं की पूरी तैयारी है। फिर आपने सुना भ्रमर प्रकाश अग्रवाल जी को किस प्रकार परिवहन विभाग भी पूरी मुस्तैदी से श्रद्धालुओं के आगमन के लिए तैयार है।

अब डालते एक नजर आज के समाचारों पर। शहर को जल भराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर निगम ने कवायद तेज कर दी है। अर्बन फ्लड नियंत्रण एवं स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज योजना के तहत चंदनवन से शक्ति नगर स्थित एसटीपी तक जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करने की योजना बनाई गई है। इसी क्रम में प्रस्तावित आरसीसी नाले के अलाइनमेंट संरक्षण को लेकर नगर आयुक्त ओजस्वी राज ने स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त ने प्रस्तावित नाले के मार्ग और जल निकासी व्यवस्था से जुड़े विभिन्न तकनीकी बिंदुओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी तकनीकी पहलुओं का गहन परीक्षण कर ऐसी प्रभावी योजना तैयार की जाए जिससे क्षेत्र में जल निकासी सुचारू हो सके, भविष्य में जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान किया जा सके। नगर आयुक्त ने कहा कि स्वच्छ, सुरक्षित और जल भराव मुक्त मथुरा नगर निगम की प्राथमिकता है। जल निकासी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रस्तावित कार्यों में तकनीकी मानकों और भविष्य की आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा जाए ताकि बारिश के दौरान नागरिकों को किसी प्रकार की सुविधा का सामना न करना पड़े। रक्षाबंधन को लेकर डाक विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बहनों की राखियां समय पर सुरक्षित तरीके से भाइयों तक पहुंचाने के लिए मथुरा डाक मंडल ने 12,500 वाटरप्रूफ राखी के लिफाफे उपलब्ध कराए हैं। बारिश के मौसम को देखते हुए विशेष रूप से तैयार किए गए इन लिफाफों में राखी के साथ रोली, अक्षत और शुभकामना संदेश भी सुरक्षित भेजे जा सके हैं। पानी से सुरक्षित होने के कारण डाक के भीगने की आशंका नहीं रहेगी। प्रधान डाकघर समेत प्रमुख डाकघरों में विशेष राखी काउंटर संचालित किए जाएंगे जहां राखी के लिफाफों की बिक्री या बुकिंग की अलग व्यवस्था होगी। प्रवर अधीक्षक डॉक्टर विजेंद्र ने बताया कि विभाग का प्रयास है कि राखियां निर्धारित समय तक गंतव्य तक पहुंचे। वाटरप्रूफ राखी के लिफाफे में 10 रुपये प्रति लिफाफा की दर से उपलब्ध है। अब डालते एक नजर आज के इतिहास पर, क्योंकि हर दिन अपने आप में कुछ ना कुछ ऐतिहासिक घटने समेटे रहता है। आज ही के दिन 1978 में इंग्लैंड के ओल्डहैम जनरल अस्पताल में दुनिया के पहले टेस्ट ट्यूब शिशु आईवीएफ तकनीक लुई ब्राउन का जन्म हुआ। इस सफलता की याद में आज का दिन वर्ल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट डे के रूप में भी मनाया जाता है। 1977 में नीलम संजीव रेड्डी ने भारत के छठे राष्ट्रपति के रूप में पद की शपथ ली। संयोग वर्ष इसके बाद से भारत में अधिकांश राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की परंपरा 25 जुलाई से होने ही जा रही है। 1813 में इटली के तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी ने सत्ता से बेदखल कर दिया गया। ये थे आज का इतिहास।

श्रोता, आकाशवाणी के 90 वर्षों के सफर में आकाशवाणी ने नित नए आयाम स्थापित किए हैं। जो महत्वपूर्ण जानकारियां आकाशवाणी के प्रसारण के माध्यम से दी जाती हैं, उससे लोगों में जागरूकता ही आती है। जैसे आज ही के प्रसारण में हमने, आज के कार्यक्रम में हमने आपको जानकारी दिलवाई कि मुड़िया पूर्णिमा मेले की जो तैयारी है वो कितने अच्छे स्तर पर की जा रही है और क्या करें क्या ना करें के अंतर्गत आपसे बातचीत करते हैं। आप एक पौधा जरूर लगाएं और उसकी देखभाल कीजिए। हजारों लाखों करोड़ों वृक्ष लगाए जाते हैं, पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन उनमें से कितने पनपते हैं। एक फॉर्मेलिटी पूरी करना अलग बात है, लेकिन इस पौधे को लगाकर उसको जिम्मेदारी लेकर पुष्पित पल्लवित कीजिए, क्योंकि आज आपका यह कदम आने वाली पीढ़ियों के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा। क्योंकि आज के समय में जो समस्याएं हम देख रहे हैं, चाहे सूखे की समस्या हो, बाढ़ की समस्या हो, प्राकृतिक आपदाएं जो हम पे दिन पर दिन चली आती हैं, उसके पीछे वजह सिर्फ यही है कि हमने वृक्षों को काटना शुरू कर दिया लेकिन उनको लगाना शुरू नहीं किया। जहाँ हजार वृक्ष काटे जाते हैं तो मुश्किल से दो वृक्ष लगाए जाते हैं, इसकी भरपाई कैसे होगी? क्योंकि जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है तो मानव बेबस हो जाता है, उसके आगे किसी की नहीं चलती। इसलिए अपनी जिम्मेदारी समझें, एक पौधा जरूर लगाएं। सदा प्रसन्न रहें और खुश रहें और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज दर्पण, प्रस्तुति दे रहे थे सुरभि शर्मा, संयोजन ओपी सिंह का था। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत पंडित भीमसेन जोशी का ख्याल गायन।

शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पंडित भीमसेन जोशी का ख्याल गायन। तबले पर संगत शशिकांत मूले की थी। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है, लीजिए फिर सुनिए क्रम के अंतर्गत रूपक ओ बरखा के पहले बादल। आलेख डॉक्टर प्रतिभा चतुर्वेदी का है। प्रस्तुति है यतीन्द्र चतुर्वेदी की।

ओ बरखा के पहले बादल, तुम सुन रहे हो? तुम सुन रहे हो ना मेरा व्यथित स्वर? हे मेघ, मैं धरा हूं। चर अचर समस्त प्राणियों का भार वहन करने वाली धरा, अपने आंचल की हरितिमा में प्राणी मात्र के सुखों और दुखों को समा लेने वाली वसुंधरा, उनका सुख मेरा सुख और उनका दुख मेरा दुख है। किंतु हे मेघ, हे मेरे प्राणाधार, मुझे विश्वास था कि तुम मेरी पुकार सुन के अवश्य आओगी, लेकिन अब आए हो तो मात्र गरज के ना रह जाना। हे घन, ऐसे बरसना कि मेरा रोम रोम तृप्त हो जाए। बरसना तो ऐसे बरसना कि मेरे आंचल में प्रवाहित होने वाली प्यासी नदियां झूम उठें, पेड़ पौधे पशु पक्षी नर नारी आबाल वृद्ध सभी के मन पुलकित हो उठे।

वैशाख और ज्येष्ठ माह के तपते सूरज ने इस रज को कितना तपाया है तुम्हें क्या मालूम मेघ। तुम्हें क्या मालूम कि उसने अपनी सहस्रों किरणों के साथ चमक चमक कर मानो ज्वालाओं की जाल बरसाए हैं।

बादल, तुम्हारे आगमन से समस्त प्राणी जगत हर्षित होगा और मेरा तो जैसे अंग प्रत्यंग ही जल चुका है। तुम आए हो तो शीघ्र ही मेरे कष्टों का निवारण करो। मेरी इस गोद में समाये सभी जीव तुम्हारी प्रतीक्षा बेसब्री से करते आए हैं। तुम आकर सबकी प्यास बुझा दो। हे प्रिय घनश्याम, सबकी पुकार सुनो घनश्याम, सबकी पुकार सुनो।

0: नदी नाले सभी तो सूख चुके हैं, बेचारे जीव जंतु कहाँ जाएं, कैसे अपनी प्यास बुझाएं? सुनो मेघ, तुम सुन तो रहे हो ना? देखो, त्रसित नेत्रों से सब तुम्हारी ओर ही निहार रहे हैं, सभी तुम्हारे आगमन के लिए कब से पलक पावड़े बिछाए हैं। हे आनंदघन, तुम सहृदय होकर आज आओ, क्योंकि ना कहीं हवा चली है, ना कहीं किसी को एक पल के लिए भी चैन मिला है। यहाँ तो ऐसा प्रतीत होता रहा है कि जैसे हवा भी स्वयं गर्मी से त्रस्त हो, ठंडे स्थान को पाकर एक घड़ी सुस्ताने बैठ गई हो।
1: मेरी जान पोनो सीरी ठोर को पकरी कोनो, घरी एक बैठ कहूं घामे विद्वत है।
0: हे मेघराज, तुम्हारा आना नितांत आवश्यक है। तुम कवियों की पुकार सुनो, विरहिणियों की गुहार सुनो, सब व्याकुल हो, तुम्हें ही पुकार रही है मेघ।
1: मुस्काओ हे भीम कृष्ण घन, गहन भयावह अंधकार को ज्योति मुक्त कर चमको कुछ क्षण, दिग्विदीर्ण कर भर गुरु गर्जन, चीर तड़ित से अंध आवरण, उमड़ घुमड़ घिर रूम झूम हे बरसाओ नव जीवन के कण, घूम घूम छा निर्झर वंबर, झूल झूल झंझा झोंकों पर, हे दुर्दम उद्दाम हरो भव ताप दाप अभिमत कर सिंचन, हे दुर्दम उद्दाम हरो, हे दुर्दम उद्दाम हरो, हे दुर्दम उद्दाम हरो।

हे मेघराज, तुम्हारी एक मुस्कान से मेरा भयावह कष्ट दूर हो जाएगा। तुम उमड़ घुमड़ कर मुझ में समाये हर प्राणी में नव जीवन का संचार कर दो। हे पावस के देवता, संभव है कि तुम्हें विदित भी ना हो कि तुम्हारे न आने से यहाँ कैसा भीषण अकाल पड़ सकता है। अनेक बार तुम्हारे न आने से मुझे दुर्भिक्ष के दुर्दिनों का

0: सामना करना पड़ता है। तुम नहीं आते तो स्थिति कुछ यूं हो जाती मेघ।
1: कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों तक की हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन में ऊपर कई दिनों के बाद।
0: तुम्हारे आगमन से सभी के हृदय में आनंद एवं उत्साह का संचार होता है। तुम नहीं आते तो सभी तुम्हें तन और मन से काला मानते हैं मेघ। जो किसी के काम ना आए उसका हृदय उज्जवल नहीं, काला ही माना जाता है। जिसमें किसी के कष्टों को देखकर द्रवित होने का भाव जागृत ना हो उसे दुनिया चिल्ला चिल्ला कर कहती है,
2: काला तो ये बादल है,
3: काला तो ये बादल है, काला तो ये बादल है।
4: हाँ धरा, मैं काला हूं। तुम और तुम्हारे आंचल में समाए सभी प्राणी मुझे ऐसा ही समझते हैं। मैं कब तुम्हारे पास नहीं आना चाहता प्रिया, तुम ही बताओ। भला कौन ऐसा प्रियतम होगा जो अपनी प्रियतमा पर प्रीति की वर्षा न करना चाहता हो।

0: तुम्हारे आंचल में अर्थ लोलुप ना समझ लोग वन्य संपदा को नष्ट करने पर तुले हैं। तुम्हारे इस शस्य श्यामला आंचल में कितना प्रदूषण व्याप्त है। युद्ध और उसमें भीषण आधुनिकतम हथियारों का प्रयोग, परमाणु अस्त्रों की होड़ और वैज्ञानिकों के नित नए परीक्षणों से मेरा हृदय छलनी हो जाता है। प्रिय, छलनी हो जाता है। मैं चाहते हुए भी आते आते रुक जाता हूं, आशंकित सा, आतंकित सा। वसुंधरा, तुम्हें संतप्त देखकर भी जी महसूस कर रह जाता हूं मैं। कोई मुझे कुछ भी कहे प्रिय, किंतु सुनूंगा मैं, क्योंकि मैं विवश हूं और मेरी ये व्यवस्था।
1: नहीं नहीं मेघराज, नहीं, तुम्हारे लिए मैं ऐसी बात नहीं सुन सकती। तुम तो सदा से मेरे सहायक रहे हो मेघ। ये प्रकृति के अग्रदूत, ये नल नाले सरिस सरोवर तथा श्यामल हरित प्रकृति तुमसे ही स्वरूप प्राप्त कर पाते हैं मेघ। मैं तुम्हारे उपकार को नहीं भूल सकती। मेरे आंचल की नीलम घाटियों में समाये जीव तुमसे ही उपकृत होते हैं। तुम अपने संकल्प का पहले की भांति ही निर्वाह करते रहो मेघ। मेरी दृष्टि में तो तुम तूल जलद, ऊर्ण जलद, तूम घूम जल, पूर्ण जलद, धीर जलद, तूर्ण जलद, श्वेत श्याम छवि पूर्ण जलद।
0: वास्तव में मैं कपास के समान धवल और बंजारों की भांति इधर से उधर घूमने वाला हूं। मुझ में सागर के समान धैर्य धारण करने की शक्ति है। मैं किसी को प्यासा नहीं रखना चाहता। मैं पयोद संतप्तों को राहत देने वाला हूं और तुम्हारे आंचल में जितने भी चर अचर पदार्थ हैं सभी में प्राण फूंकने की मंगल कामना लिए मैं आ रहा हूं। मैं आ रहा हूं, आ रहा हूं, मैं प्रिय आ रहा हूं।
1: लो देखो,

मैंने कहा ना, मेघराज बहुत दयालु हैं। कैसे श्यामल श्यामल बादल चारों ओर घिर आए हैं। दयालु मेघ भला कैसे दूसरों का कष्ट देख पाते। मेरा संपूर्ण आंचल भीगने लगा है, वर्षा की झड़ी लग गई है। देखो तो, देखो।

सर्वत्र जल की वर्षा प्रारंभ हो गई है। शारीरिक तपन तो दूर हुई ही, साथ ही सांगीतिक माधुर्य मन को भा गया। प्रथम वृष्टि से उत्पन्न सौंधी सौंधी सुगंध हृदय में समा गई। हर प्राणी के मन में आशा की किरण फूट पड़ी। उसके अपने अनेक स्वप्न पूर्ण होते देखने लगे। मेघ झूम झूम कर बरस रहे हैं। आज जैसी वर्षा पहले कभी किसी ने नहीं देखी होगी। हृदय से अनायास ही ये भाव मुखर उठे हैं।

देखो मेघ, हर प्राणी प्रसन्न है, मैं प्रसन्न हूँ, प्रकृति का पत्ता पत्ता प्रसन्न है। जलवृष्टि होते ही इसमें एक विशेष प्रकार का सौंदर्य उभर आया है, नवजीवन का संचार हो गया और प्रत्येक शाखा पुष्ट दिखने लगी है। पावस के घन का स्वागत हर प्राणी अपनी ओर से कर रहा है। देखो मेघ,

0: वर्षा के प्रिय स्वर हृदय में उद्दीपन का कार्य करते हैं। सुप्त भावनाएं जागकर कुछ कहने और करने को मचल उठती हैं। भाव अंतर मतर गहराई तक को छू लेते हैं।
1: वर्षा के प्रिय स्वर उर्मे बुनते सम्मोहन, प्रणयातुर शत कीट विहग करते सुख गायन, मेघों का कोमलतम श्यामल तरुओं से छन, मन में भूखी अलस लालसा भरता गोपन, रिम झिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते तृण तृण की पुलकावली भर, पकड़वार की धार झूमता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन।
2: स्नेह की शीतल छाया तले कौन प्रसन्न नहीं होगा, कैसा अनुभव होता है। एक बार की गर्जना तो वो सह भी ले, किंतु बार बार की गर्जना उसके विरह विदग्ध हृदय को और अधिक जलाती है। मेघ की गर्जना से वो भयभीत होती है, विरहिणी अनायास ही कह उठती है, घुमड़े घुमड़े घटा घन की घनेरी अने, जिनके प्रिय उनके साथ हों, जिनके प्रिय मेघराज के आगमन पर भी न लौटें, तो उनकी विरह अवस्था और भी अधिक विषम तथा असह्य हो जाती है। घन गर्जना तथा दादुरों की टरटर कान फोड़ने वाली प्रतीत होती है। अतः हे मेघराज, तुम आते समय इतनी गर्जना न करना कि विरहिणियों का चित्त दुखी हो जाए। इसी प्रकार कोयल और दादुरों से भी कहा जाए कि वे अपनी वाणी से विरहिणी के विरह विदग्ध हृदय को और अधिक न जलावें। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि विद्या वारिध देव ने भी कितने सुंदर शब्दों में इसकी वर्जना की है। आयो ऋतु पावस न आए प्राण प्यारे, दुरन कहि बक बक जाने फोरे कान, टिकन हटिक हट शबद सुनावे ना, बिरह बिथा में हो तो व्याकुल परी हूँ, देव जुगनू चमक चित चिनगी लगावे ना, चातक न गावे मोर सोर न मचावे घन, घुमड़े न आवे जौलो शाम घर आवे न।
0: हे मेरे प्राण प्यारे मेघ, विरहणियों को तो दामिनी की तमक, सुरचाप की चमक श्याम गति कष्टदायक होती, कि तुम जब इतनी मंद गति से आना कि कोयल या मोर तुम्हारा आगमन भी न जान पाए, क्योंकि जितनी ही प्रसन्नता ये प्राणी व्यक्त करेंगे विरहिणी उतनी ही दुखी होगी। मेरी सहानुभूति इन निरीह दुखी विरहिणियों के साथ भी तो है। मेघराज, आप आए अवश्य, किंतु आपके आने की सूचना और किसी को ना हो।

हे मेघ, इस संसार की कुछ विरहिणियां तो ये मान कर चलती हैं कि जब उनके प्रियतम ने ही उन्हें विस्मित कर दिया है तो दूसरा कौन है जिसके समक्ष वे अपनी फरियाद प्रस्तुत कर सकती हैं। ये बादल तो उनके प्राण लेकर ही जाएंगे। कौन सुने कासो कहो सुरत बिसारी ना, बदा बदी जिय लेत है ए बदरा बदरा। हे मेघ, तुम्हारे आने से किसी को प्रसन्नता हुई है तो कोई और दुखी हो गया है, किंतु सबसे अधिक प्रसन्नता तो यक्ष को हुई होगी जिसे अपनी पत्नी के पास संदेश भेजने के लिए तुम जैसा विश्वास पात्र संदेशवाहक मिल गया। विरहिणी को अपने प्रियतम के सुरक्षित रहने की सूचना से बढ़कर और कुछ सुखद नहीं लग सकता। उनका कुसुम कोमल प्रणय कातर हृदय आशा के बंधन से बंध कर टूट कर बिखर जाने से बच रहता है। वे विरह की अवधि गणना में पुनः संलग्न हो जाती हैं।

0: मैं यक्ष हूँ, मेरी पत्नी अलकापुरी में मेरी याद में दुखी है। हे मेघ, तुम्हें उसके पास मेरा संदेश लेकर जाना है। यदि मेरे विरह में व्याकुल मेरी पत्नी निद्रा मग्न हो तो तुम वहां इतनी धीमी गति से जाना कि वो जग न जाए। उसे जगाने की चेष्टा न करना, अपना गर्जन बंद कर देना और एक प्रहर तक उसके जागने की प्रतीक्षा करना। ऐसा न हो कि कठिनाई से स्वप्न में मिले हुए प्रियतम के साथ प्रगाढ़ आलिंगन के लिए कंठ में डाला हुआ उसका भुजपाश अचानक खुल न जाए।
1: आकाश में बादलों की गर्जना से विरही अथवा विरहिणी का हृदय भयग्रस्त हो जाता है। घन घमंड नव गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। इसलिए हे मेघराज, तुम सबका हित विचारते हुए मेरे पास आओ। मेरे समस्त सहयोगी तुम्हारी प्रतीक्षा में हैं, किंतु तुम अपने संतुलित रूप में ही आओ। ऐसा ना हो कि तुम्हारा मात्र अनवरत मेघाच्छादन पृथ्वी को और अधिक तप्त कर दे, अथवा ऐसा भी ना हो कि अनवरत वर्षा से जल प्लावन जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए। संयम के बांध तोड़ना तो किसी के लिए भी उचित नहीं है ना।
2: हे मेघ, तुम्हारे आने से आषाढ़, श्रावण और भादों की पूरी एक संस्कृति पुष्पित और पल्लवित होती है। तुम्हें याद है कभी ब्रजभूमि में यमुना के तट पर कदम्ब के तले तुम्हारी शीतल फुहारों में श्री कृष्ण और उनकी आह्लादनी शक्ति राधा हिडोलों पर प्रणय पर्व मनाते रहे थे।
1: हे मेघ, तुमने प्राणियों के लिए एक बहुत ही अनुकरणीय दृष्टांत उपस्थित किया है। जो व्यक्ति दूसरों के हित में अपना सर्वस्व न्योछावर करते, उससे अधिक महान और कौन हो सकता है।

लीजिए फिर सुनिए क्रम के अंतर्गत। अभी आप सुन रहे थे रूपक ओ बरखा के पहले बादल। आलेख डॉक्टर प्रतिभा चतुर्वेदी का था। वाचन प्रस्तुति रही यतीन्द्र चतुर्वेदी की। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

अभी आपने सुना फिल्म फूल और कांटे का ये गाना, और इस गाने को गाया था कुमार सानू और अलका याग्निक ने। आइए अब सुनते हैं आयशा भोसले और कुमार सानू का गाया हुआ ये गीत। फिल्म का नाम है बलमा।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में अभी आपने सुना ये गाना, फिल्म का नाम था खुद्दार। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, कभी खुशी कभी गम से। इस गीत को स्वर दिए हैं कविता कृष्णमूर्ति और अलका याग्निक ने।

अलका याग्निक और हंस राज हंस की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म कच्चे धागे का ये गाना। और आइए अब सुनते हैं फिल्म आशिकी का ये गीत। इस गीत को गाया है अनुराधा पोडवाल और कुमार सानू ने।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म डुप्लीकेट का ये गाना। और आइए आप सुनते हैं फिल्म डर का ये गीत। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और उदित नारायण ने।

उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म डर का ये गाना। और इस गीत के साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, वनिता लोक कार्यक्रम के अंतर्गत हेलो सहेली कार्यक्रम में इस सोमवार 27 जुलाई 2026 को अपराह्न 1:15 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है मस्तिष्क एवं नसों के रोग, कारण एवं निवारण। इस कार्यक्रम में जानकारी

जानकारी देने के लिए हमारे विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर नीलेश गुप्ता। आप हमारे टेलीफोन नंबर 25 30 135 पर फ़ोन करके अथवा मोबाइल नंबर 94 12 22 55 75 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में मस्तिष्क एवं नसों के रोग कारण एवं निवारण से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं। श्रोताओं ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है मस्तिष्क एवं नसों के रोग कारण एवं निवारण। श्रोताओं यदि आप मस्तिष्क एवं नसों के रोग जैसे मिर्गी, सिरदर्द, लकवा, माइग्रेन, सुन्नपन, झंझनाहट, कंपन, सियाटिका, याददाश्त कम होना, पार्किंसन डिजीज आदि समस्या के समाधान के लिए सवाल पूछिए डॉक्टर नीलेश गुप्ता से। श्रोताओं ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन रहेगा सोमवार 27 जुलाई सन 2026 और समय अपराह्न 1:15। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस। कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को नमस्कार। श्रोताओं कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस के लिए सबसे पहले संदेश हमारे पास आया है सोंगा जिला धमदरी छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले श्रोता हैं कोमल सेन, तोषण और विनायक सेन। अगली फरमाइश लिख भेजी है अम्बागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रिहान ने। ये संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं सिद्धार्थ नगर दरियापुर भावली से गयना नियेले, नवदीप, विश्वदीप, अशोक, शेरीवर्णे रकोला से अरुणा, बलदेव दामोदर, आदित्य दामोदर और इनके सभी संगी साथी। ये संदेश पाकुड़ झारखंड से लिखने वाले श्रोता उत्तम कुमार भगत, श्वेता की सीतासु, अर्णवानंद और सत्यमानंद। पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। ये फरमाइश हमारे पास आई है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा की। अगला संदेश हमें लिख भेजा है कुमार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता ने केत, ऋषिकेश, जीविका, सानिका, अजय, करिश्मा, अविका और विशाखा सोनवनी ने। ये संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना, आशीष, चैतन्य राजा और मेघा मस्कीन। पंचकूला से राहुल, रचिता और केशु रिधान खुराना। अगला संदेश श्रीरंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी का। ये फरमाइश चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा की। अगला संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता है दतरेंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि और नोखेलाल वर्मा। ये फरमाइश आई है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर की। अगला संदेश गाड़गे नगर यवतमाल से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल, रक्षता, रेयंश और इनके सभी परिवारीजन। अगला संदेश कमलकांत गुप्ता, दीपा, रिमझिम गुप्ता का पिपरिया से। ये संदेश हमें लिख भेजा है नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सुहन जोशी ने। ये फरमाइश आई है बुलडाला महाराष्ट्र से वासुदेव वोदवड़े, अनिता, रमेश राव गोठाड़े और इनके सभी परिवारीजनों की। ये संदेश मोहाली चंडीगढ़ से डी मल्होत्रा, रितिका मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल, जयवीर, अमनदीप, शुभचंद्र, साहिल और बिट्टा बजाज का। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर फिल्म हमराज का ये गीत जिसे गाया है महेंद्र कपूर ने।

कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस के लिए ये संदेश हमारे पास आया है गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला विशाल और निशा का। ये संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण जोशी, पूजा जगदीश जौहरी। ये संदेश शीतला माता चौक खंडवा से विशाल सिंह, विवेक सिंह, विजय महोबिया, कविता अनाया, कमला देवी और बिमला देवी का। अगला संदेश दिल्ली से रेशमा अंसारी, सना खान, शकीला अंसारी, डोमराव से वलीउल्लाह अंसारी। और ये फरमाइश आई है गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सबीहा मिखाइल और जैनब मुजावर की। अगला संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता पटेल नगर मौलोड से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी, गगनदीप आरजू और इनके सभी संगीत साथी। ये फरमाइश आई है रेलवे रोड गंजुडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, बेगम शबनम अनवर, नजमा बेगम नाज और सरिता गौतम की। अगला संदेश फुटानी चौक नरहन स्टेट से ललन मिश्रा, नूतन मिश्रा, अमन पाराशर, आध्या और ललन मिश्रा का। महोबा बुंदेलखंड से नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिंह, गौरव सिंह, जानवी और दर्श राजपूत। ये फरमाइश शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला रोशनी, चेतन विशाल और प्रियांशी मनवर का। अगला संदेश नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवान का, निर्मला विशाल, नारायण सोपान और आशीष। ये संदेश लिखने वाले मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु सागर बालूजा, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक। अगला संदेश सोंगा मगर लोड छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका, गजेंद्र, हियांश कुमार चंदन का। अगली फरमाइश आई है महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजयलक्ष्मी, राजेश और राकेश ऋषिता की। अगला संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं कुमार हेड़ा सहारनपुर से, सैयद मसरूर, साइना हसन, अक्सा, नाजिया आफिया, इब्राहिम सद्दाम और इनके सभी परिवारीजन। अगला संदेश खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार का। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया हुआ फिल्म ताजमहल का ये गाना।

ये संदेश हमारे पास आया है रामगढ़ कैंट से। महेंद्र मोदी, कुलदीप कंवल, भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंद्र भूषण, संस्कृति पौरुष और इनके सभी परिवारजनों का। अगला संदेश नगर निगम वार्ड 28 सीतामढ़ी से। बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना आरिज, नदीम शमीम, ममता रानी, पूनम कुमारी, मोहम्मद आसिफ खान और निखत परवीन। ये फरमाइश छत्तीसगढ़ से गुणवंत श्रीवास, श्रीमती करुणा, आयुष विवेक और आयुषी श्रीवास की। ये फरमाइश आई है रामचरण विश्वकर्मा, साहिल, प्रियल, दिव्यांशी और इनके सभी संगीत साथियों की, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से। अगला संदेश नवीन सिंह, ज्योति, रानी मेनका, श्वेता, स्वाति, सुशांत, चुलबुल रानी, कामेश्वर प्रसाद गुप्ता, प्रदीप कुमार, राजबहादुर, शंभू शाह, जयमंत्री का, राजनगर बिहार से। ये फरमाइश बंडीवाला फजल का पंजाब से, क्रियांश बगड़िया, योगेश, ओम, गरिमा, रजत और मनीष चौधरी की। ये संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं हैदराबाद से गोपाल याई, उमा महेश्वरी। अगला संदेश कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा अमित, प्रतीक रोशनी और प्रांजल राय। समस्तीपुर बिहार से लिखने वाले श्रोता कारी रायकारी, मीनाकारी, पुंजराज, आरती आकर्षण और जयश्री। ये फरमाइश आई है खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, पीयूष सिक्का, कोयल, डुग्गू, भाविका सिक्का की। अगला संदेश हमें लिख भेजा है बुलडाणा महाराष्ट्र से किशोर वानखेड़े, उषा विशाल, राजगवई और राजवीर गवई ने।

ये संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता बंगाली पंजा नागपुर से प्रकाश रमांडे, भारती जानवी वैष्णवी और हर्षल। ये संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं कोयते वस्ती पुनावले से अजय सोनवने, करिश्मा अविका, साइशा और इनके सभी संगीत साथी। श्रीरामपुर से अशोक कुमार, अविका जीविका सानू और अर्चना कुमार। ये संदेश आया है रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश बल्लू, तरुण निका और निजा का। अगला संदेश हमारे पास लिख भेजा है एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता वोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी और अंकित कांगड़ा ने। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर लता मंगेशकर और मुकेश के स्वर में फिल्म हरली आली और रास्ता का ये गीत।

अगली फरमाइश नांदेड़ से प्रकाश जैन, लातूर से संगीता सूरज और पीआर जैन की। और ये संदेश ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोड़ाने, अर्चनाताई हीरामन शिंदे, प्रणय प्रसिद्धि प्रतिभा गोड़ाने का। और ये फरमाइश आई है मराठवाड़ा से सुधाकर राजे यादव देशमुख, प्रशांत राजे यादव, कुमार संचित, कुमार प्रथमेश, हर्षत, प्रणाली सर्वद, सानवी और हर्षिता देशमुख की। ये संदेश पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, अस्मा नाज और गुड़िया बानो का। अगली फरमाइश बीरमगांव गुजरात से अजीत भावसागर, प्रमिला भावेश और इनके सभी संगीत साथियों की। ये संदेश लिख भेजा है दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति प्रहलाद, राजेंद्र उमेश और प्रमिला बंछोर ने। ये संदेश हमें लिख भेजा है कबीर नगर लोनी से नसीमुल इस्लाम दानिश गुनोरी ने। ये फरमाइश आई है सामना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी, पप्पू मह खुशदिल, सुनीता रानी, आरजू हसमुख लाल जिंदल, संजीव बंटी जिंदल और इनके सभी संगीत साथियों की। अगला संदेश भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल, ईशान और पूजा परिहार का। कोरिया से डोनट पावो, छत्तीसगढ़ से प्रभा जयपुरिया और जलंधर से अशोक जाटव का संदेश। और ये फरमाइश नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद ओंकार और साईं गायकवाड़ की। अगला संदेश लिख भेजा है धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद, आलिया और आयान बाबू ने। ये संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता है शनि चौक खंडवा से उमाराज, कुलदीप, जगदीप, प्रभारानी और इनके सभी संगीत साथी। गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविदा राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, अच्छेलाल और फलना झा। ये फरमाइश आई है जिला वरंगल से मोहम्मद खाजा रिजवाद्दीन, मोहम्मद खाजा फसीउद्दीन, आयशा तबस्सुम जुबेरिया की। समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति रोहतास बिहार से सोनम और अनामिका सिंह। अगला संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं करताल जिला रंगारेड्डी तेलंगाना से कानूगोला गोपाल, महेश्वरी प्रवालिका, विष्णुवर्धन, विघ्नेश और इनके सभी संगीत साथी। ये संदेश हमें लिख भेजा है कृष्णा कॉलोनी हांसी से सुभाष योगी और राजू मिगलानी, बब्बू डब्बू ने। अगला संदेश तेलंगाना से कस्तूरी रामुड़े, वामू देवी और इनके सभी परिवारीजन। ये संदेश आया है मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सुपाइन ताड़े, विजया, वसंतराव भोजने, पीएस नवानकर का। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार का गाया हुआ यह गीत। फिल्म का नाम है आज का अर्जुन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बात और SMS आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
5: आराम से मैडम।
4: क्या
5: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है, नो ट्रैफिक नो टेंशन,
6: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
7: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
8: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
7: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
9: प्रस्तुत है ब्रज लोकगीत। आज के कलाकार हैं हरे किशन ब्रजवासी।

अभी आप सुन रहे थे ब्रज लोकगीत। आज के कलाकार थे हरिकिशन भरत ब्रजवासी। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में 1,15,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। सबसे अधिक प्रभावित जिले शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट हैं। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 61 हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। वहीं गुजरात में तेज बारिश के बाद बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के 265 क्षेत्रों में बारिश हुई है। राज्य राहत आयुक्त ने 5 मौतों की पुष्टि की है। मौसम विभाग ने कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक

0: फोन किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
1: इस वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपाय से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी। श्री नड्डा ने इस बैठक को सकारात्मक बताया था। सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारी को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संसद के बाहर मीडिया को दिए गए बयान के साथ एआई का दुरुपयोग कर छेड़छाड़ की गई और एक डीप फेक वीडियो तैयार कर उसे गलत सूचना फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस मामले में आज सुबह चाणक्यपुरी पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने, प्रसारित करने या उसे बढ़ावा देने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजा सुब्रमणि ने कहा है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के कारण 30,000 सेना के जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो फर्जी है और AI से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से टेलीफोन पर बातचीत की और राज्य में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें राहत पुनर्वास और

रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका का कार्यक्रम विज्ञान भारती। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात्रि 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। इन दोनों ही कार्यक्रमों को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम इस सप्ताह संसद में। इस कार्यक्रम को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

अब से कुछ ही देर में यानी कि 1:15 पर बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर आंगना। इसमें भेंट वार्ता प्रसारित की जाएगी, बरसात के मौसम में स्वास्थ्य रक्षा। वार्ताकार होंगे डॉक्टर मनीष बंसल, भेंटकर्ता होंगे ओपी सिंह। संध्या 5:30 पर युवा साथियों का कार्यक्रम होगा युववाणी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सुनेंगे 6:15 पर। इसमें आज आप सुनेंगे वार्ता प्रगतिशील कृषक से मछली पालन के अनुभव, वार्ताकार होंगे तेजपाल सिंह। 7:05 पर साहित्य कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत कथा। प्रसंग होगा और आप सुनते हैं गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में सूचना। लापता व्यक्ति का नाम रंजना, पिता का नाम सुखवीर सिंह, आयु 19 वर्ष है, इनका कद 5 फुट है, रंग सांवला है, बालों का रंग काला है, इनके शरीर की बनावट सामान्य है, ये 7 जून 2026 से लापता है, आंखें काली हैं, काला कुर्ता नीली जीन्स पहने हुए हैं, इनका पता है बसंत बिहार कॉलोनी अवधपुरी थाना हाईवे मथुरा। जिस किसी को भी इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त हो वो पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा जनपद मथुरा को कृपया सूचित करें। लापता व्यक्ति का नाम टीना सैनी, पिता का नाम है बाबूराम, इनकी आयु है 22 वर्ष, इनका कद है 5 फुट 2 इंच, रंग गोरा है, बालों का रंग काला है, शरीर सामान्य है, घटना ये 16 जून 2026 से लापता है, आंखें काली हैं, ये पीला सलवार कुर्ता पहने हुए हैं, इनका पता है सैनी मोहल्ला थाना कोसी कला जनपद मथुरा। जिस किसी को भी इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त हो वो कृपया पुलिस अधीक्षक शाखा अपराध जनपद मथुरा को सूचित करें। लापता व्यक्ति का नाम है श्रीमती सुमन, पति का नाम है कल्याण, इनकी आयु है 22 वर्ष, कद है 5 फुट, रंग गेहुआ है, बालों का रंग काला है, शरीर की बनावट सामान्य है, ये 29 मार्च 2026 से लापता है, इनकी आंखें काली हैं, ये हरे रंग का सूट सलवार पहने हुए हैं, इनका पता है पिसावा थाना बरसाना जनपद मथुरा। जिस किसी को भी इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त हो वो पुलिस अधीक्षक शाखा अपराध जनपद मथुरा को कृपया सूचित करें। अभी आप सुन रहे थे लापता व्यक्तियों के बारे में सूचना। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है संवेद स्वरों में देशगान।

अभी आप सुन रहे थे समवेत स्वरों में देशगान, आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। अब बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर अंगना।

घर अंगना कार्यक्रम को सुनने वाली हमारी सभी बहनान को विजयलक्ष्मी बहन की राम राम। बहनाओं कैसी हो? बढ़िया। तो बहनाओं बढ़िया ही होना चाहिए और प्रभु करे सभी बढ़िया हुए, क्योंकि हमारे यहाँ तो किमें भी ऐसे ही हैं। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भवेत्। कोई भी दुखी

नहीं हो, सभी प्रसन्न हो, कोई भी बीमार नहीं हो, सभी स्वस्थ हो, ऐसी तो हम हर दिन कामना करें। और हमारी बहन जब सोकर उठे ना, तो सबसे पहले परिवार में वो प्रार्थना ही यही करें। क्यों? क्योंकि सबसे एक भीतर की बात है कि अगर कोई परेशानी आ जाए ना, तो बहनन को काम बढ़ जावे और रोटी ना बने, बालक ना हंसे, तो आनंद ना आवे। तो बहन सोचें सब अच्छा ही चलता रे, काम की काय, काम तो नेक ज़्यादा नहीं तो नेक कम है तो ही रेगो। और देखो जा समय तो अभी तो फिलहाल धूप निकल रही है, पर वो चुभनी धूप है, और अब बंद है जाएगा तो मैं आ जाएगा तो ऐसा मैं कि पूरी कीची कीच है जाए, तो ऐसा लगे कि अब पहले जाए साफ करें, नहीं तो फिसल जाएंगे बालक, बड़े बूढ़े ना गिर जाएं, पर पोहा भीतर घुसी आए तो कहूँगा कि पैर ना फिसल जाए, अरे मेरे काम है चार। और कहूँ कोई ने पानी मांग लियो तो भीगते में दे के आओ। और बहनों नेक बूंद गर्म से ठंडे में आई और मूड पे पड़ गई तो परेशानी है जाए, सर्दी गर्मी है जाए। तो आनंद तो है पर बचाव हुआ है, तो थोड़ा बच के रहें, थोड़ा अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखें। और देखो बरसात का मौसम है, चटपटे भोजन का मन सबको करे कि समोसा खा लें, कि पकौड़ा खा लें, कि लाओ चटनी बना लें, पर ऐसे में हमारी जो पाचन क्रिया है ना थोड़ी धीरी है जाए, तो थोड़ा संतुलित भोजन लें, थोड़ा ताज़ा भोजन लें, और फ्रीज में से निकाल के काऊ चीज़ें तुरंत ना खाएं। फ्रीज से एक आध मिनट को निकाल के बाहर रख दें, वह कमरा के तापक्रम

0: मैं तो कृष्ण मिलन को जाऊं। बैरन बाजे पायलिया। अब भाई हमारी बहना प्रमोद कुमार शर्मा भैया के स्वर में आनंद ले रही हती जा बहुत सुंदर से लोकगीत को। बहनाओं हमारी माटी की खुशबू में एक अलग ही रस भरा भया है, जा रस की कल्पना हम केवल मन में कर सकें, केवल कौए बताना चाहे ना तो ना बता सके, केवल इतना ही कह सकें जो गोंगो मीठे रस को फल अंतर्गत ही भावे। तो बहनों गूंगो जैसे आम कितना मीठा हो ना बता पाएगा ना मुँह मटकाएगा, ऐसे ही हम अपनी भक्ति को अपने श्याम रंग को अपने लोकगीतन को ना बता पावें। और बहनों जब हम अपनी भक्ति में रंगे हुए तो वामे हमें सब कछु कृष्ण ही कृष्ण दिखे, और जा समय बरसात के मौसम में चारों तरफ हरो ही हरो दिख रहे होए, और प्रकृति ने हरो रंग हरो श्रृंगार ले रही है, तो वहीं सावन की घटा आईवे को तैयार खड़ी है। ब्रजवासिन की भीड़ भक्तन की भीड़ ब्रज में पधार रही है। पर बहनों ऐसे जब बरसात के मौसम में अपने स्वास्थ्य को विशेष ध्यान रखना है, क्यों? क्योंकि जान है तो जहान है। कछु वातन को अगर हम कहें कि ठंडो पानी मत पियो ऐसा मत करो तो थोड़ा अलग लगे, पर वही बात को अगर डॉक्टर साहब बतावें तो आदमी मान जावे कि हाँ भैया डॉक्टर साहब ने बताई है तो जा काम को तो हमें करना ही करना है। तो बहनाओं बरसात के मौसम में कैसे सावधानी रखें, का परेशानी है सकें, आओ हम जाने हमारी जा वार्ता के माध्यम से, और जा जानकारी को हमें दिवाए रहे हैं ओपी सिंह और जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर मनीष बंसल। तो आओ बहनाओ सुने।
1: रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को नमस्कार। श्रोताओं बरसात का मौसम यूँ तो समृद्धि का मौसम है, धन धान्य का मौसम है, अच्छी फसलें होती हैं, लेकिन इस मौसम में सामान्यतः हम देखते हैं कि कुछ बीमारियां भी ऐसी हैं जो हमें सौगात के रूप में मिल जाती हैं, या कहें कि उसमें कई बार हमारी थोड़ी सी लापरवाही भी होती है। तो कैसे इस मौसम को हम एक स्वास्थ्यप्रद मौसम के रूप में बनाए रखें, इसमें हमारी क्या सावधानी हो सकती है, तो चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीष बंसल साहब जो शहर के वरिष्ठ फिजिशियन हैं, हम सब लोग जानते हैं, परिचित हैं, मिले भी होंगे। डॉक्टर साहब आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत, नमस्कार।
2: नमस्कार, राधे राधे सभी श्रोतागणों को।
1: जी राधे राधे। तो बरसात के मौसम की जब चर्चा होती है तो थोड़ी सी सावधानी ऐसा लगता है कि हमारे आसपास होनी चाहिए, हमारे व्यवहार में होनी चाहिए, तो बताएं कि इस मौसम में क्या क्या ऐसी बीमारियां हैं। बुखार को तो हम सामान्यतः मान के चलते हैं जो मलेरिया के रूप में वायरल के रूप में होता है, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हो सकती हैं, तो क्या कुछ एक सामान्य व्यक्ति को परेशानी हो सकती है और कहाँ कुछ उसकी सावधानी बनती है, इस पर थोड़ा सा आपके।
2: सही कहा आपने, जैसे आपने खुद ही कहा था कि बारिश जो है हरियाली भी लेके आती है, खुशहाली भी लेके आती है, समृद्धि भी लेती आती है, लेकिन साथ में बदलते मौसम में बीमार होने का जो खतरा है वो हमारा बढ़ जाता है। तो सबसे कॉमन बीमारी तो हमारी जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हमें मिलती है वायरल फीवर ही मिलता है। वायरल फीवर बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है और जो कि एक दूसरे से फैलता है, जैसे कोविड है, कोविड सभी लोगों ने सुना है 2020 के बाद में, एक दूसरे के संपर्क में आने से, छींकों से, खांसने से, एक दूसरे के संपर्क में आने से हो जाता है। तो सबसे कॉमन तो वायरल ही है। उसके बाद में कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो कि खाने पीने से संबंधित होती हैं, उदर रोग संबंधित होती हैं, जैसे उल्टी है, दस्त है, तो जो बाहर का खाना खाने की वजह से या कई बार घर में भी अशुद्धि की वजह से, हाथ साफ ना होने की वजह से होती है। कुछ चर्म रोग काफ़ी हो जाते हैं भीगने की वजह से, बारिश हम भीगते हैं कई बार लंबे टाइम गीले रह जाते हैं या कपड़े गीले रहते हैं जिसकी वजह से चर्म रोग आ जाते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि मच्छरों की वजह से होती हैं, जैसे कि डेंगू है, चिकनगुनिया जिसको आम भाषा में यहाँ पे लंगड़ा बुखार बोला जाता है, लंगड़ा बुखार हो जाता है, या मलेरिया है जो कि मच्छरों से फैलते हैं, इस तरीके की बीमारियां काफ़ी सामान्य तौर पे देखी जाती हैं।
1: तो इसमें अब जैसे दो तीन चीज़ें बताई कि भाई बरसात का मौसम है, हमारा आना जाना तो

0: डेली रहता ही है इसमें। तो सबसे पहले तो क्या है कि ये सावधानी रखें कि हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो कम से कम भीगे नहीं हैं
1: जी जी सर, बिल्कुल
0: जी।
1: सही कहा।
0: तो दूसरा ये कि खान पान अपना घर से कुछ खा के चलें, कुछ घर का ले के
1: हाँ, घर से
0: चलें,
1: खाना खा
0: बाहर के
1: के
0: खाने से
1: चलें
0: बचें।
1: और पानी अधिक पिएं। पानी एक तरीके से हमारी इम्यूनिटी में हेल्प करता है, और अगर पानी हम स्वच्छ पानी पी रहे हैं, आरओ का है, या हम श्योर हैं कि पानी है, नहीं तो हम उबाल के ठंडा करके पानी पिएं। अधिक से अधिक पानी पीने से भी हमारी इम्यूनिटी जो है, प्रतिरोधक क्षमता जो है, वो बढ़ती है उससे।
0: बाहर का खाना जैसे कई बार संभव नहीं होता कि हम घर से खा के चलें, घर से लेके चलें, खा ही लेते हैं, तो वहाँ क्या सावधानी बरतते हैं कि भाई ऐसा ना हो कि हम खुला खा लें या कहीं कहीं जहाँ मिले जो मिले वो ही खा लें उसमें तो कौन।
1: विशेषकर कच्ची सब्जियां या कच्चे फल जो होते हैं, कटे हुए जो चीज़ें होती हैं, या स्पेशली रॉ आइटम जो होते हैं, या चटनी है, सॉसेस हैं, इस टाइप की चीज़ें ना खाएं। पका हुआ खाना खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद भी हम पैक्ड चीज़ खा सकते हैं, जैसे बिस्किट्स हो जाते हैं जो कि पैक्ड आते हैं, उसमें खतरा कम हो जाता है। और फ्रूट्स में भी अगर हमारे को, जो मुझे जो सबसे पसंद आता है, जो बहुत हाइजीनिक रहता है खाने के लिए, वो केला रहता है, बनाना रहता है,
0: जी,
1: जिसमें टच नहीं होता। आप छिलका छीलते
0: उतारिए
1: हैं,
0: और खा
1: उतारिए और
0: लीजिए।
1: खा लीजिए। बाकी फल खाने में थोड़ा सा खतरा रहता है। बाकी फल तो आप घर पे लाके ही धो के प्रॉपरली काट के
0: कई
1: तोड़
0: बार
1: के,
0: हम लोग जैसे गए तो फ्रूट चाट खा लेते हैं,
1: हाँ
0: जूस ले लेते हैं,
1: वो
0: ये
1: खतरनाक
0: कई
1: है
0: बार बड़ा
1: वो।
0: अनहेल्दी हो जाता
1: हाँ,
0: है।
1: वो काफ़ी खतरनाक चीज़ें हैं, जो स्पेशली कटी हुई सब्जियां, कटे हुए फल बाहर से खाना, ऐसे स्ट्रीट वेंडर से जहाँ से बहुत ज़्यादा हाइजीनिक नहीं है, ज़्यादा साफ सुथरा नहीं है, वो हम दावत दे रहे हैं उल्टी दस्त के लिए, इसके लिए।
0: हम सोच तो ये रहे कि बहुत अच्छा है
1: हाँ,
0: लेकिन
1: स्वाद के लिए
0: वहाँ
1: अच्छा है, बट सेहत के लिए अच्छा नहीं है।
0: अच्छा नहीं है, और कई बार इतना बल्क में और रेगुलर बन रहा होता है कि वहाँ फिर इन्फेक्शन होने के चांस रहते ही हैं जो जूस वगैरह
1: बल्क में भी
0: निकल।
1: बन रहा होता है, और उतना साफ सफाई भी नहीं होती
0: साफ
1: है।
0: सफाई
1: साफ
0: नहीं
1: सफाई
0: होता,
1: का भी बहुत
0: जूस अगर
1: बड़ा
0: पीना
1: होता
0: है
1: है,
0: तो घर पे ही पिए फिर ला के।
1: क्योंकि जो मक्खियाँ होती हैं, मक्खियाँ काफ़ी भिनभिनाती रहती हैं, और आसपास की जो साफ सफाई होती है वो भी उतनी अच्छी नहीं होती है। तो जितना संभव है, मतलब आप बाहर का ना खाएं, घर से पैक करा के ले जाएं, घर से खा के चलें, या ऐसी चीज़ें पैक्ड खाएं कि जो कि साफ़ सुथरी फैक्ट्रीज में बन के तैयार होके आती हैं, बिस्किट्स हो जाते हैं, इस टाइप की
0: जी
1: चीज़ें आप खा सकते
0: आप
1: हैं।
0: ले सकते हैं
1: हाँ,
0: उसमें
1: अगर मजबूरी है
0: चाय
1: तो।
0: कॉफी के
1: बिल्कुल,
0: साथ। आपने भीगने की बात की, इसमें स्किन की भी बात की कि कुछ चर्म रोग हो जाते हैं तो उसमें, अब जैसे मान लो भीग गए तो फिर क्या बनता है कि भाई भीग गए तो फिर जल्दी से कपड़े
1: अब
0: बदलें
1: जहाँ
0: सूखे।
1: पे, हाँ, जहाँ पे आप बदल सकते हैं तो वहाँ तो आप अवश्य
0: बदलिए।
1: बदलिए, और जहाँ नहीं बदल सकते हैं, आप अगर ऐसी जगह फंस गए कि आप भीग भी गए और बदल भी नहीं सकते, तो वहाँ तो मजबूरी है। कोशिश करिए कि अपने आप को सुखा लीजिए कहीं पे, कि जिस पे जहाँ पे हवा चल रही है, पंखा चल रहा है, तो कहाँ पे चल रही है। लेकिन इसमें एक विशेष तौर पर एक भी चीज़ कहा जाता है कि अगर आप भीगे हुए हैं, आपके कपड़े गीले हैं, तो एयर कंडीशन रूम में जाने से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए,
0: बच्चे
1: वहाँ पे
0: बच्चे।
1: आपके बीमार होने के खतरे जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, संभव हो जाते हैं। तो जो सादा हवा चल रही है, पंखा चल रहा है, उसमें आप कपड़े सूखें तो ज़्यादा बेहतर है।
0: हाँ थोड़ा सा एक आध तौलिया या ऐसा रखें जिससे कम से कम भाई
1: हाँ,
0: आप भीग
1: कोशिश
0: जाए तो
1: करिए कि आप
0: उसे
1: घर से,
0: सर
1: हाँ
0: सुखा लें।
1: हाँ कोशिश करें तो आप घर से छाता है, बरसाती है, इस टाइप के जो
0: रेनकोट है
1: अपने, हाँ,
0: डालते हैं
1: रेनकोट है, वो आप अरेंजमेंट करके चलिए, जिससे कि आप अपने आप को
0: अब
1: बचा
0: तो
1: सकें।
0: मौसम पूर्वानुमान भी हमारे घंटे
1: हाँ
0: घंटे आधा आधा घंटे का है तो वो
1: हाँ
0: उसकी भी मदद ले सकते
1: हाँ
0: हैं
1: बिल्कुल
0: आप।
1: बिल्कुल। अब तो ऐप में, आपका मोबाइल फ़ोन के ऐप में आपको पता चलता है कि आज बारिश के कितने प्रतिशत
0: किस
1: चांस
0: घंटे
1: हैं,
0: में है
1: तो अगर आप
0: कहाँ
1: जाना अवॉइड कर सकते हैं, जाना बच सकते हैं, तो आप ना जाइए, और अगर जा भी रहे हैं तो पूरा का पूरा अपना इंतज़ाम करके चलिए, अपना पूरा का पूरा।
0: जी। स्वच्छता जैसे कई चीज़ें आपने कही कि बहुत सारी जो बीमारियां बुखार विशेषकर चाहे वो वायरल हो चाहे डेंगू हो चाहे चिकनगुनिया हो या फिर मलेरिया का और मच्छर मक्खी से थोड़ा सा यहाँ सावधानी। तो अब वो दृश्य तो बदले हैं परिदृश्य बदले हैं लोगों की सोच भी बदली है जब से 2014 से हमने स्वच्छता अभियान को अपने जीवन में अपनाया है माननीय प्रधानमंत्री जी के कहने पर। तो हर व्यक्ति जागरूक है और चीज़ें अब काफ़ी कुछ अच्छी दिखती भी हैं लेकिन जीवन में स्वच्छता अपने आसपास का परिवेश पर्यावरण इन सब चीज़ों को एक जागरूक नागरिक के नाते एक अच्छी सोसाइटी के नाते जीवन में इन चीज़ों का फ़र्क पड़ा है
1: जी
0: इसमें
1: जी
0: अपनाना चाहिए
1: बिल्कुल, हाँ
0: इसको।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। पिछले एक दशक से बहुत हमने इसके सकारात्मक परिणाम देखे हैं, जो भी सरकारी व्यवस्था ने स्वच्छता अभियान चलाया है उससे।

0: मच्छर मक्खी के से जो हम लोग वेक्टर बॉर्न डिजीजेस बोलते हैं, जो कि मच्छरों से या मक्खियों से फैलते हैं, उनमें भारी कमी आई है और बहुत फ़र्क पड़ा है। और हमारी जो जनता है वो भी बहुत जागरूक हुई है, उसने भी काफ़ी सफाई कार्यक्रम चलाया है। और इसमें भी हमारा अभी इम्प्रूवमेंट का और भी हम इसमें करने का वो रख सकते हैं। स्पेशली जैसे गाइडलाइन हमेशा जारी की जाती है बारिश के मौसम में कि हम कहीं पे भी पानी का भराव होने से रोकें। कहीं भी जैसे आपके यहाँ कूलर है या कोई बर्तन है जहाँ पे पानी भर रहा है, क्योंकि जो हमारे डेंगी है और चिकनगुनिया है, ये जो एनाफिलीज जिप्शियाई करके एक मच्छर होता है जिसको हम टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं, ये दिन का मच्छर होता है और ये स्वच्छ पानी में पलता है। तो जहाँ भी स्वच्छ पानी का ठहराव होगा वहाँ पे ये मच्छर भरपूर मात्रा में निकलेंगे और बीमारी को फैलाएंगे। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकार तो घर घर नहीं पहुँच सकती है, तो ये हमारी जिम्मेदारी नागरिक होने के नाते पे बनती है कि हम अपने घर में, अपने गली मोहल्ले में, अपने शहर में, कस्बे में, गांव में इसको एक अभियान के तौर पे चलाएं और कहीं भी पानी का ठहराव होने से रोकें। बहते पानी में ये मच्छर नहीं पनपता है, और कहीं पे आपको ऐसा लगता है कि पानी ठहरा हुआ है और हम उसको नहीं हटा सकते हैं, तो वहाँ पे हम मिट्टी का तेल डाल सकते हैं, तो वहाँ पे जो इनके मच्छर के लार्वा होते हैं वो बच नहीं पाते हैं और मच्छर पनप नहीं पाते हैं। उसके बाद भी हम मच्छरों का घर में भी बचाव कर सकते हैं। घर में हम बचाव के लिए मॉस्किटो कॉइल्स आती हैं या मॉस्किटो रेपेलेंट आते हैं, मच्छरों को भगाने के जो उपाय होते हैं वो कर सकते हैं। ऑइंटमेंट आते हैं, कहीं आप अगर बाहर आउटडोर जा रहे हैं, बाहर पार्क में जा रहे हैं जहाँ पे आपको इस बात का, या बच्चे जा रहे हैं जहाँ पे हमें इस बात का खतरा लगता है कि मच्छर काट सकते हैं, तो
1: लगा
0: वहाँ पे
1: सकते हैं।
0: ऑइंटमेंट्स आते हैं, जो क्रीम आती है मॉस्किटो से बचाने वाली, कपड़े हम पूरे पहने, फुल स्लीव्स की शर्ट्स पहने, शूज़ पहन के जाएं और ट्राउज़र पहने, जो निक्कर होती है या हाफ स्कर्ट्स होती हैं, इस टाइप के कपड़े नहीं पहने। जितना हमारा त्वचा का एक्सपोजर कम होगा तो हमारे मॉस्किटो बाइट होने की भी चांसेस कम होते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जिससे कि हम मच्छरों से बचाव पा सकते हैं। और जो मलेरिया होता है वो मलेरिया बेसिकली, मलेरिया का जो मच्छर होता है एनाफिलीस मॉस्किटो जो होता है, वो गंदगी में ज़्यादा पनपता है। तो जाहिर सी बात है कि जो सरकार कर रही है, सरकार अपने लेवल पे कर रही है, और हम भी अपने आसपास में कहीं भी गंदगी को पनपने ना दें।
1: जी, तो एक अच्छे नागरिक, जागरूक नागरिक और एक अच्छी सोसाइटी में ये सब प्रतीक तौर पे हम अपनाते रहें तो अच्छा रहेगा। आजकल कुछ चीज़ें टाइफाइड के बारे में भी आजकल सुना था, पहले टाइफाइड बड़ा रेयर होता था लेकिन कुछ दिनों में टाइफाइड भी, तो इन दिनों में क्या उसकी भी संभावना
0: हाँ,
1: हो सकती है?
0: टाइफाइड का भी जो स्प्रेड है वो फीको ओरल होता है। फीको ओरल का मतलब ये होता है कि जनरली इसका जो बैक्टीरिया होता है, साल्मोनेला टाइफी करके बैक्टीरिया होता है, ये हमारे दूषित खाने से या पानी से ही फैलता है। तो जो उपाय हम उल्टी दस्त के लिए हम कर रहे हैं कि हम बाहर की चीज़ें ना खाएं और अपना हाथ वॉश करके गए, ऐसी जगह पे ना खाएं जहाँ पे अनहाइजेनिक कंडीशन होती है, घर का ही खाना खाएं, तो हम इसके जो स्प्रेड है, जो उसका फैलाव है, उससे हम बच सकते हैं टाइफाइड से। तो उसके उपाय सेम रहेंगे वही वाली,
1: हाँ मतलब
0: हाँ वो उसी कैटेगरी में
1: खाने
0: आते हैं, खाने
1: की
0: पीने की चीजों
1: सावधानी,
0: से
1: व्यवहार की सावधानी।
0: तनाव हमारी इम्यूनिटी बहुत ड्रास्टिकली बहुत ही ज्यादा लो कर देती है और बहुत बीमारी के खतरे भी हमारे बढ़ जाते हैं तनाव की वजह से।
1: जी, तो श्रोता बंधु, ये बरसात का मौसम जैसा शुरुआत में कर रहे थे कि अच्छा मौसम है, समृद्धि का मौसम है, लेकिन बीमारियों का भी मौसम है। और डॉक्टर साहब की बात से जो निकल के आया उसमें हमारे खान पान का संयम, व्यवहार का संयम, इसमें अच्छी नींद लेना, अच्छे तरह से रहना, चीज़ें बच के रहें हम, इलाज से बचाव बेहतर जैसा पुराना हमारा फलसफा है उस पर चलें, और कुछ चीज़ें हम सावधानी के तौर पर रखेंगे तो इस मौसम को अच्छा बना सकते हैं। चलते चलते कुछ और कहना चाहें डॉक्टर साहब?
0: पांच छह चीज़ें जो हमने शुरू से ही डिस्कस किया है वो मैं एक बार समराइज कर देता हूँ कि एक तो यही है कि हम भीगने से बचें, तो उसके लिए छाता है, रेनकोट है, वो सारी चीज़ें लें। मौसम की प्रिडिक्शन को ध्यान में रख के चलें कि अपना ट्रैवलिंग प्लान जो है हम उसी हिसाब से करें। टू व्हीलर अगर नहीं उपयोग करें, हमारे पास फोर व्हीलर है तो फोर व्हीलर यूज़ करें। खाने पीने का ध्यान दें, बाहर की चीज़ें ना खाएं, घर का अच्छा आहार खाएं हम। हाथ वॉश करें प्रॉपरली, रेगुलर हैंड वॉश करें। बाहर से अगर आप आ रहे हैं, घर में प्रवेश कर रहे हैं, तो अवश्य अपना हाथ वॉश करें। नींद प्रॉपर लें, प्रॉपर अपना आप एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए, स्पिरिचुअली रहें, अपने आप को स्ट्रांग

0: रखें, अपने आप को तनाव मुक्त रखें, खुश रहें, हैप्पी रहें,
1: जी
0: हैप्पी रेनी डे है।
1: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और श्रोता बंधु, आप डॉक्टर मनीष बंसल साहब, वरिष्ठ फिजिशियन, मथुरा शहर के जाने माने हमारे साथी हैं हमारे।
2: तो अभी हमारी बहना जानकारी को ले रही हती डॉक्टर मनीष बंसल से, और जो जानकारी को दिखवा रहे हते हमें ओपी सिंह। बरसात के मौसम में स्वास्थ्य रक्षा, आशा है हमारी बहन जो जानकारी को लाभ खूब उठाएंगी। क्योंकि देखो भैया, बरसात है और झोली भर भर के अगर अन्न जो बरसात लाव है, तो अगर हमने नया को लापरवाही करी तो बीमारी हुआ जामे, तो थोड़ा बच के रहें। देखो कितनी साफ बात बताई कि नींद लें, हाथन ने धो के साफ सुथरे हाथन से भोजन करें, साफ सुथरे सूखे वस्त्र पहने, नहीं तो चर्म रोग है सके। तो इतनी सारी बातें बताई हैं बिना हम अपने पल्ले में बांध लें, क्योंकि भैया हमें तो इन बातन से रोज ही काम पड़ना है। संग में देखो बरसात आ रही है तो नदी जलाशय जो जो पास में है वो भर जामे। जा समय हम मथुरावासी हैं तो जमुना जी भर रही हैं, तो जो जलाशय नदी हैं इनके पास थोड़ा ध्यान से जाएं। कहीं ऐसा ना है कि हम घूम भी जा रहे हैं देख भी जा रहे हैं, तो भैया घूम भी और देख भी कितना दूर से वो देखो जा सके। जलाशय के पास अकेले ना जाएं, अपने परिवार के संग पूरी सुरक्षा से जाएं अगर जा रहे हैं घूम भी, तो नहीं तो ना जाएं, बचें तो ज़्यादा बढ़िया है। और मौसम में थोड़ी हम अपनी यात्रा को टाल कर रखें तो बढ़िया होवे, कि हम बाद में करेंगे बरसात के बाद में, तो सुरक्षा की दृष्टि से बढ़िया होवे। लेकिन काम बहुत ज़्यादा है तो सोच समझ के विचार करके अपने काम को करें और जलाशय से थोड़ा बच के रहें, क्योंकि बिन में जा समय बहुत पानी भर रहे हुए। और हमारी सरकार, हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदार सदैव हमें यही चाहे कि सभी जने प्रसन्न रहें, कोई भी दुर्घटना ना घटे। और बहनों चलते चलते आओ आनंद लें जब बहुत प्यारे से लोकगीत को।

अभी हमारी बहना बनवारी लाल शर्मा के स्वर में आनंद ले रही हती जब मीठ से लोक गीत को बंसी को बजाए वो छोड़ो नंदलाल। अरे जब बंसी को तो हमारी ब्रजवासिन अपनी सौत के में, क्योंकि कन्हैया के पास जाको परमानेंट निवास है गयो है, और जबकि ब्रजवासिन भैंचा में कि कन्हैया सिर्फ हमारो ही होए, और हम ब्रजवासिन की तो सदैव चाहते हैं कन्हैया सिर्फ हमारो है और हमारो ही रहेगा। तो अपने कन्हैया के संग अपने ब्रज में हम सदैव आनंद करें, ऐसी हमारी कन्हैया से प्रार्थना है। और बहनाओं अब हम जा अपने घर अंगना कार्यक्रम को यहीं विराम देवी की अनुमति चाहें। हमारी सभी बहनान को हमारी राम राम।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर अंगना। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है सामुदायिक शिक्षा गान पाठ।

0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छा गाया आपने। अब हम फिर से पहले अंतरे पर चलते हैं।
1: अरे ये सोयल

0: अब आप गाइए।
1: 1 2 3 4
0: समझ गए? अच्छा, अब हम ताल के साथ गाने के बाद स्थाई गाएंगे।
1: 1 2 3 4

0: समझ गए, अब आप गाइए जरा जोश से, देश सेवा के भाव के साथ गाइए।
1: रेडी, 1 2 3 4।

0: बहुत अच्छे, बिल्कुल ठीक गाया आपने। बड़े होकर आप भी इसी तरह देश सेवा करना और अपने देश का नाम रोशन करना। नमस्ते बच्चे।
1: अभी आप सुन रहे थे सामुदायिक शिक्षा गान पाठ। गीतकार थे पेरिया स्वामी थुरान। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: And the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मरने वालों की संख्या 61 हुई। 1 लाख से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर संभव सहायता का आश्वासन। वर्षा प्रभावित गुजरात में बचाव और राहत कार्य जोरों पर, 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू। सरकार और सीजेपी के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालत गठित की। स्क्वैश में भारत के अनाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। और क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 1 लाख से अधिक लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिले शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ से संबंधित मामलों में 14 और लोगों की मौत हुई। इनमें चराईदेव में 7, शिवसागर में 6 और जोरहाट में 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 61 हो गई है। प्रमुख नदियां दीखो, दिसंग और धनसरी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे ऊपरी असम में बाढ़ की स्थिति और भी गंभीर हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। आपदा मोचन बल, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियां राहत सामग्री उपलब्ध कराने, फंसे हुए लोगों को निकालने और बाढ़ प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने में लगी हुई है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित जिलों राहत उपायों को तेज कर दिया गया है। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से टेलीफोन पर बातचीत कर बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शर्मा ने कहा कि असम के लोग इस कठिन समय में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन और अटूट समर्थन के लिए उनके प्रति अत्यंत आभारी हैं। इस बीच गुजरात में मॉनसून की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
3: सीआरएफ की 32 प्लांटून और सेना की 6 टुकड़ियां भी विभिन्न जिलों में तैनात की गई है। लगातार हो रही बारिश से राज्य के जलाशय में जल स्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। सरदार सरोवर नर्मदा बांध में जल भंडारण क्षमता का लगभग 69% पानी भर चुका है, जबकि राज्य के 21 बांधों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। जल भराव के कारण यातायात और विद्युत सेवाएं भी प्रभावित हुई है। 34 स्टेट हाईवे समेत राज्य के 600 से अधिक सड़कें एहतियातन बंद कर दी गई है। वहीं मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों के लिए भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: भारतीय तटरक्षक बल ने 22 जुलाई की मध्यरात्रि से चलाए गए 11 बचाव अभियानों के माध्यम से दमन, दादरा और नगर हवेली तथा दक्षिण गुजरात के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे 170 लोगों को बचाया है। वहीं सिक्किम के नामची जिले के फामतम गांव में आज भूस्खलन के कारण 2 लोगों के मारे जाने की आशंका है। नामची के एसएसपी ने बताया कि बचाव अभियान चलाया जा रहा है। 2 घायलों को नामची जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा आज फिर से शुरू हो गई है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। यात्रियों को सुरक्षित तीर्थयात्रा के लिए प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है। इस बीच 6,269 तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर में तेज बारिश के कारण लगातार 6 दिन तक निरस्त रही श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज फिर शुरू हुई। इस मार्ग पर लगातार बारिश, भूस्खलन और अचानक बाढ़ आने के जोखिम के कारण यात्रा को निरस्त कर दिया गया था। तीर्थयात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान श्राइन बोर्ड और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों तथा सुरक्षा परामर्श का पालन करने और मौसम संबंधी जानकारी से अवगत रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं

0: कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार आज दोपहर नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता करेगी। इस बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार और प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं को रोकने के उपायों पर प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर चर्चा होगी। ये बैठक दोपहर 3:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित होगी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीजेपी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी सीजेपी की मांगों को गंभीरता और धैर्यपूर्वक सुना है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने परीक्षा प्रश्न पत्र लीक और उससे जुड़े अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों को नामित किया है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर इन मामलों का निपटारा किया जाए। उच्च न्यायालय ने कहा है कि ये अदालतें राज्य और केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा भेजे गए संबंधित मामलों की भी सुनवाई करेगी। इनका अधिकार क्षेत्र आसपास के जिलों तक विस्तारित रहेगा। न्यायालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना तथा ऐसे मामलों में त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार अब इस घोषणा को अमल में लाते हुए 4 प्रमुख शहरों में विशेष अदालतें स्थापित कर रही है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए की थी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल मध्य कोलकाता में कई वामपंथी संगठनों द्वारा नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में आयोजित रैली के दौरान पत्रकारों पर हुए कथित हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में कहा कि इस घटना के संबंध में 7 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में सख्त कानून लाने को लेकर जारी किए गए अपने वीडियो संदेश पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा।
0: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संसद के बाहर मीडिया को दिए गए बयान के साथ एआई का दुरुपयोग कर छेड़छाड़ की गई और एक डीप फेक वीडियो तैयार कर उसे गलत सूचना फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस मामले में आज सुबह चाणक्यपुरी पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने, प्रसारित करने या उसे बढ़ावा देने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर वो सोशल मीडिया पर लगातार नजर रख रही है। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त रोहित राजवीर सिंह ने बताया कि फर्जी खबरें और एआई द्वारा निर्मित सामग्री फैलाने वाले 400 से अधिक सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक दिया गया है।
2: दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की कि बिना पुष्टि वाले दावों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। हमारी जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान से चलाए जा रहे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स फेक कंटेंट फैला रहे हैं। दिल्ली पुलिस संबंधित एजेंसियों के एक साथ मिलकर ऐसे और अकाउंट्स की पहचान करने पर लगातार काम कर रही है। ऐसे 400 से अधिक हैंडल्स की अब तक पहचान कर ली गई है और उन्हें AI जनरेटेड कंटेंट, डीपफेक वीडियो, एडिटेड तस्वीरें और प्रदर्शन से जुड़ी अन्य झूठी सामग्री फैलाने के कारण ब्लॉक किया गया है।
0: और अभी अभी समाचार मिला है कि नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र

0: इंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंपा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि संसद में बिताया गया हर दिन, हर घंटा, हर मिनट और हर सेकंड लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए समर्पित होना चाहिए। नई दिल्ली में आज राज्यसभा के नव निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के लिए आयोजित दो दिवसीय ओरिएंटेशन और प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सदन में होने वाली बहस हमेशा किसी सार्थक निर्णय तक पहुंचनी चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कहा है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के कारण 30,000 सेना के जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो फर्जी और एआई से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज राज्य विधानसभा में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी की 28 लंबित रिपोर्टें पेश की हैं। इन लंबित रिपोर्ट को पेश करके पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना किया गया वायदा पूरा किया। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने ये रिपोर्ट पेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने आज कनाडा के ओंटारियो में खेले गए सेमीफाइनल में मिस्र के बार्ब सामेह को 3-1 से हराया। वहीं फाइनल में अनाहत का सामना आज मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात करीब 10:30 बजे शुरू होने की उम्मीद है। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि के बाद उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए अपने कोच और प्रशिक्षकों का आभार व्यक्त किया।
1: बहुत अच्छा लग रहा है, पहला मेडल है हमारा। हमारे पीछे कोच हैं राजेंद्र सिंह और हमारा जेपी सर हैं, वो भी बहुत सहयोग किए हैं। आज उन्हीं सब बदौलत हमें आज मेडल प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम पे आज इतना प्रैक्टिस करवाए, प्यार दिए, और भी आगे हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कुमार के प्रदर्शन को शानदार बताते हुए कहा है कि ये उपलब्धि उनकी अदम्य शक्ति, अटूट दृढ़ संकल्प और वर्षों के अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। आकाशवाणी कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत हम करगिल युद्ध के जाबाज योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर सेवानिवृत्त मेजर डीपी सिंह से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता कार्यक्रम को न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल दोपहर 12:30 से किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया। सरकार और सीजीपी के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालत गठित की। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मरने वालों की संख्या 61 हुई। 1,00,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर संभव सहायता का आश्वासन। वर्षा प्रभावित गुजरात में बचाव और राहत कार्य जोरों पर, 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू। और खेलों में स्क्वैश में भारत के अनाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। वहीं क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत।

लता मंगेशकर के स्वर में अभी आपने सुना ये गाना। फिल्म का नाम था दिल अपना और प्रीत पराई। शब्द रचना शैलेंद्र की थी, संगीत शंकर जयकिशन का था। और आइए आप सुनते हैं साहिर लुधियानवी के लिखे इस गीत को, जिसे संगीत दिया है एन दत्ता ने। स्वर आशा भोसले और महेंद्र कपूर के हैं। फिल्म का नाम है धूल का फूल।

फिल्म छोटे नवाब का ये गीत अभी आपने सुना, जिसे गाया था लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। इस गीत के बोल लिखे थे शैलेंद्र ने, संगीत आरडी वर्मन का था। और आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में ये गाना। फिल्म का नाम है चिराग, बोल मजरू सुल्तानपुरी के हैं, संगीत मदन मोहन का है।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वरों में अभी आपने सुना फिल्म फकीरा का ये गाना। शब्द रचना और संगीत रविंद्र जैन का था।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के स्वरों में अभी आपने सुना फिल्म बरसात की रात का ये गीत। बोल लिखे थे साहिर लुधियानवी ने, संगीत दिया था रोशन ने। और इसी के साथ ही सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। अपराह्न के 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। संध्या 5:30 पर आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय संध्या के 5:10 हो रहे हैं। हमारी आज की द्वितीय सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, जिसे हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित
1: संध्या पर आज सुनते हैं करगिल युद्ध में अपने शौर्य का प्रदर्शन करने वाले पूर्व सैनिक और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर DP सिंह के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: नमस्कार। एक ऐसे योद्धा की कहानी हम आज आपको बताने जा रहे हैं, जिनके जीवन में 15 जुलाई 1999 का दिन पुनर्जन्म दिवस या अमृत दिवस के रूप में आता है। करगिल की दुर्गम और बर्फीली चोटियों पर जब मौत मोर्टार बनकर गिरी, शरीर पर दर्जनों चोटें लगी, लेकिन उसके बावजूद हौसला नहीं टूटा। लगभग मुर्दा घर से वापस लौटकर भारत के पहले ब्लेड रनर बने, करगिल और लद्दाख जैसे दुर्गम इलाकों में मैराथन दौड़ी, कई पदक जीते और आसमान से छलांग लगाकर पहले सोलो स्काई डाइवर होने का गौरव भी हासिल किया। हजारों दिव्यांगों के प्रेरणा स्रोत भी बने। स्वागत कीजिए करगिल वॉर के हीरो, भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर DP सिंह जी का। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: जय हिंद, सबको नमस्कार, राम राम।
2: कहानी को थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब आपका बचपन था, जब आप स्कूल में पढ़ा करते थे या फिर उससे आगे बढ़कर जब आप कॉलेज में गए, तो पहली बार कब एहसास हुआ या कब विचार आया कि आपको सेना में जाना चाहिए? क्या परिवार के किसी लोग ने आपको प्रेरित किया या दोस्तों के बीच ऐसा माहौल था कि दोस्त कह रहे थे कि आपको सेना में जाना चाहिए? वो कहानी थोड़ी सी बताइए।
3: मेरा जन्म हरियाणा में हुआ है, जगह

0: के पास, और मेरी सारी स्कूलिंग जो हुई है वो अब जिसको उत्तराखंड बोलते हैं, रुड़की, जो IIT रुड़की के लिए मशहूर है, वहां पे हुई है। कॉलेज में प्राइवेट किया है। और रही बात प्रेरणा स्रोत, तो मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास, मेरे जो दादाजी थे वो वहां पर आर्मी का एक सेंटर है उसमें सेवा करते थे, वो अकाउंट्स में थे, CDA में। उनके साथ मैंने बचपन बिताया अपना, क्योंकि मेरे पिताजी दुर्गम क्षेत्रों में रहते थे, वो बॉर्डर रोड्स में सेवा कर रहे थे। तो दादा दादी के पास रहते हुए जो एक जीवन था वो बड़ा डिसिप्लिन वाला और सख्त था, लेकिन नाना नानी के पास जब हम छुट्टियों में जाया करते थे तो बड़ी मस्ती होती थी। तो वो जो बच्चा दूसरी क्लास से उनके पास रहता था उसको थोड़ा सा अटपटा लगता था, और डिसिप्लिन में किसको रहना पसंद है। तो एक दिन मैं ये सोच के कि यार नानी के पास ज्यादा मस्ती होती है, घर से भाग गया। और जब मैं घर से भागा तो उस रुड़की की सीमा से बाहर पहुंचा ही था कि किसी जानने वाले ने मुझे पकड़ा, साइकिल पे बिठाया और वापस अपने घर के बाहर छोड़ दी। तो जिंदगी का मेरा वो पहला यू टर्न था, और उस पहले यू टर्न में मैंने सबक लिया था कि भाई DP सिंह, जिंदगी में आप अपनी सच्चाइयों से भाग नहीं सकते। जहां हो, जैसे हो, वहां पर आपको अपने परिश्रम से, अपने बल से ऊपर उठ के जीना पड़ेगा और कुछ करके दिखाना पड़ेगा। ये जो पहला यू टर्न था, इसने मुझे बाद में जब मैं युद्ध में घायल हुआ, जीने के लिए जो एक फाउंडेशन थी वो ऑलरेडी बना दी थी, सेट कर दी थी। तो जब मैं वापस आया घर तो मैंने सोचा कि यहीं पे रहना है, ठीक है, अब डिसिप्लिन है तो डिसिप्लिन वाले एंगल से ही चलेंगे। और मेरे दादा दादी ने मुझे जोड़ दिया था गुरुद्वारे से, वहां से मुझे प्रेरणा मिली और मैंने फौज में ऑफिसर बनने की 8वीं क्लास में ही ठान लिया था, जब मैं भाग के गया था और घर में जो वापस लाके छोड़ दिया गया था। तो एक क्लैरिटी आ गई थी तभी कि भैया जिंदगी जीनी है तो फौज में अफसर बन के जीना है।
1: मेजर साहब, कहानी को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। 7 डोगरा रेजिमेंट में कमीशन होना और भारतीय सेना की वर्दी पहनना, कितना गर्व का पल था, क्या इमोशंस आपके जहन में चल रहे थे उस समय?
0: बिल्कुल, बहुत गर्व का पल था, क्योंकि आप ये सोचिए कि जिस बच्चे ने बचपन से सिर्फ एक ही सपना देखा हो और उस सपने को पाने तक उसको बहुत सारे फेलियर्स के थ्रू गुजरना पड़ा हो। पहले NDA में फेल हुए, उससे पहले 11वीं में फेल हुए, NDA में 3 बार अटेम्प्ट किया, फेल हो गए, फिर ग्रेजुएशन प्राइवेट किया तो उसमें भी एक बार ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि पिताजी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी शारीरिक रूप से, और घर में कोई देखभाल करने वाला नहीं था, तो लग रहा था कि अब बस जीवन डार्क हो गया है। लेकिन वहां पर भी हौसला अफजाई माता जी ने करी कि तुम पढ़ते रहो, और क्योंकि उन दिनों में सिचुएशन ऐसी थी घर की फाइनेंशियल की, मैंने बैंक में एक प्राइवेट नौकरी कर ली थी कि मैं पढ़ सकूं और साथ में CDS की तैयारी कर सकूं, क्योंकि जाना तो अल्टीमेट फौज में ही है। फिर CDS में फेल हुए 2-3 बार, फिर इंटरव्यू में फेल हुए, तो कम से कम 5-6 फेलियर देखने के बाद जब आप कमीशन होते हो, अपने ड्रीम को पाते हो, तो एक अलग ही तरीके का जुनून जो सिर में होता है वो मतलब देखने को मिलता है, वो खुशी जाहिर होती है। और उससे भी बड़ी खुशी थी कि कुछ ही दिनों में उसके बाद युद्ध आ गया था, तो बैप्टाइजिंग बाई फायर वाली जो बात, हर सोल्जर जो एक तरीके से तैयार रहता है कि फौज में आए इसलिए कि भारत माँ के लिए कुछ करके दिखाएं।
1: मेजर साहब, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि 1999 में जब करगिल युद्ध शुरू हुआ और आपको पहली बार पता चला कि आपको करगिल में युद्ध के लिए जाना है, उस समय क्या आपके जहन में चल रहा था और आपको वो सौभाग्य मिला, गौरव मिला? क्या परिवार से थोड़ी बातचीत हुई, परिवार के लोगों का क्या कहना था, या फिर सेना के अंदर का क्या माहौल था, थोड़ा बताएं उसके बारे में।
0: देखिए, उन दिनों इंटरनेट या फोन की सुविधा नहीं हुआ करती थी कि हम कनेक्टेड रहे, सिर्फ चिट्ठी लिखा करते थे कभी कभार। और जैसे मैंने बताया, 97 दिसंबर में मैं कमीशन हुआ था और साल भर के अंदर ही लड़ाई लग गई थी, तो वो जो एक साल बीता था वो कोर्सेज यंग ऑफिसर्स को फिर कमांडो कोर्स करने में बीत गया था। और सिर्फ 2 महीने की छुट्टी लेने के बाद जब मैं वापस पहुंचा तो तब तक मेरी पलटन ऑलरेडी लाइन ऑफ कंट्रोल पर डिप्लॉय हो चुकी थी। तो आजकल की परिस्थितियों के हिसाब से कि आप हमेशा कनेक्टेड हो और पता चल रहा है कि परिवार वाला क्या सोच रहा है, भाई बहन क्या सोच रहे हैं, तो ये वो उस समय सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तो हमें मालूम नहीं था कि कौन क्या सोच रहा है। और हमें खुद भी सिर्फ रेडियो से पता चलता था कि लड़ाई लग रही है, या TV भी नहीं होते थे, और क्योंकि हम दुर्गम क्षेत्रों में लाइन ऑफ कंट्रोल पर डिप्लॉयड थे तो वहां पे समाचार पत्र भी जो 3-4 दिन के बाद आया करता था, जैसे राशन आता था 3-4 दिन के बाद। तो ये जीवन उस प्रकार का था जो आज आप शायद यंगस्टर खासकर इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन उसके अलग मजे थे। और हम जो थे वो यंगस्टर थे बिल्कुल ही, उन दिनों 24 साल की मेरी उम्र थी और युद्ध शुरू हो चुका था, तो जुनून था कि अब कुछ करके दिखाने

0: वक्त आ गया है, हम तो तैयार थे सबके सब।
1: मेजर साहब, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जहां पर आपको डिप्लॉय किया गया, कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं थी, -20 डिग्री का तापमान, रणनीतिक चुनौतियां थीं और आपको अपने बटालियन के साथ मुंहतोड़ जवाब देना था। थोड़े आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए विस्तार से आप वो ग्राउंड बैटल सिचुएशन को डिस्क्राइब कर सकें कि वहां की क्या स्थिति थी, आप लोग जब वहां पहुंचे तो कैसे बंकर बने हुए थे, या आप लोगों ने क्या व्यवस्था की कि दुश्मनों को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देंगे।
0: जो क्षेत्र बुरी तरीके से युद्ध में था वो था कारगिल द्रास मशको। उस क्षेत्र में आके उन्होंने अपने सैनिकों को बिठाया हुआ था सर्दियों में। वो बहुत दुर्गम क्षेत्र था, उनकी तरफ से जो चढ़ाई थी वो चढ़ाई आसान थी। तो सर्दियों के दिनों में जब हम वो पोस्ट छोड़ देते थे अक्सर, उन दिनों में वो आराम से आके धीरे धीरे वहां पे उन्होंने अपना राशन पानी जमा करके बैठ चुके थे। हमारी तरफ से जो चढ़ाई थी वो बड़ी दुर्गम थी, लेकिन मैं इखनूर वाले इलाके में पोस्टेड था, वो भी लाइन ऑफ कंट्रोल थी। और वहां पर जो दुर्गम क्षेत्र था वो था पानी और पहाड़ के मिलाप के कारण, नदी के बीच में हमारा पोस्ट थी। और जैसे आजकल आपने देखा यही वाला टाइम था, तो बारिशों के दिनों में नदी नाले सब भर जाते हैं, बाढ़ तक की सिचुएशन आ जाती है। तो हमारी पोस्ट भी जो थी वो काफी इस तरीके से कट ऑफ हो रखी थी, पीछे से सप्लाई बड़ा मुश्किल से मिलता था। लेकिन फिर भी सामने जो दुश्मन था वो कोई 80 मीटर पे पोस्ट पे बैठा था, कोई 100 मीटर की पोस्ट पे बैठा था, तो फायरिंग और इन्फिल्ट्रेशन तो चलती रहती थी। तो दोनों क्षेत्रों का मिलाप नहीं कर सकते। उस क्षेत्र में हैंड टू हैंड बैटल बहुत ज्यादा हुई है, क्योंकि कबायलियों के साथ, टेररिस्ट के साथ, उनके जो रेगुलर फौजी थे वो भी घुसे थे। हमारे वाले क्षेत्र में रेगुलर फौजी ज्यादा थे, टेररिस्ट कभी कभार इन्फिल्ट्रेट करते थे। लेकिन दुर्गम था जरूर, क्योंकि सरकंडों के बीच में से हमारे वाले क्षेत्र में घुसना बड़ा आसान था। और खासकर हमारे साथ साथ जो सीमा से लगते गांव थे और जो सिविलियन थे, उनकी उनका जीना बड़ा आराम हो रखा था, क्योंकि सबके घरों पे लगातार फायरिंग की दुर्घटनाएं होती रहती थी। और उन दिनों में भी मैंने देखा कि सिविलियन जो गांव छोड़ के बाकी पीछे चले गए थे, जम्मू की तरफ आ चुके थे। तो जीवन जो था उस सबका क्षतिग्रस्त था, सबका हिला हुआ था, भले ही वो सैनिक हो भले वो सिविलियन हो, लेकिन हम डटे हुए थे, क्योंकि मातृभूमि की रक्षा करने के लिए चाहे जैसी मर्जी सिचुएशन हो, यही सिखलाई फौज ने हमें दी है, उसी सिखलाई पे हम चल रहे थे।
1: मेजर साहब, जब जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो आपको दिशा निर्देश दिए गए थे उसी स्थिति से चल रहे थे, 15 जुलाई 1999 का जिक्र बरबस ही आपके साथ बातचीत में आएगा, उसकी सुबह कैसे हुई थी। हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि वो 1.5 मीटर दूर जब मोर्टार गिरा, उस समय आपके जहन में पहला रिएक्शन क्या आया था।
0: मेरी जो पोस्ट थी उसमें मेरे साथ एक जेसू साहब और 29 जवान डिप्लॉयड थे, और हमारी पोस्ट से तकरीबन 80 मीटर दूर जो थी वो दुश्मन की पोस्ट थी। तो क्योंकि हमारी लगातार फायरिंग होती रहती थी, और मैं क्योंकि यंगस्टर था और हम भी तैयार रहते थे, तो कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते जिसके कारण जो हमारा पड़ोसी है वो परेशान रहता था। तो उस परेशानी को ध्यान में रखते हुए उसने 15 जुलाई से 2 दिन पहले एकदम फायरिंग बंद कर दी। तो शुरू में तो मुझे लगा 13 तारीख को कि यार फायरिंग बंद हुई है, चलो थोड़ा सा आराम मिलेगा हमारे सैनिकों को भी। लेकिन जब वो लगातार बंद रही 13 की पूरा दिन, और 14 को भी मैंने देखा बंद हो रही, तो चिंतित हुआ मैं। और इसका जैसा मुझे डर था वही हुआ कि वो लल बिफोर द स्टॉर्म था, बिकॉज बाद में पता चला शायद वो मेरे से परेशान होकर मेरी पोस्ट की ही रेकी कर रहे थे 13-14 को, मेरे उठने पे बैठने पे नजर रख रहे थे कि क्या करता है सारा दिन, कहाँ कहाँ जाता है। 15 जुलाई को जब दिन शुरू हुआ, तो दिन शुरू हुआ शुरुआत ही दिन की गोले से हुई, दिन के पौ फटने से पहले गोला फट चुका था। और मुझे पता चला वो गोला पीछे जाके गिरेगा, क्योंकि उस जो गोला नजदीक गिरता है उसकी आवाज नहीं आती, लेकिन जो गोला ऊपर से निकल जाता है उस आप युद्ध क्षेत्र में पहचान जाते हो कि ये पीछे गिरेगा आगे गिरेगा कहाँ गिरेगा। तो पहला गोला तो बहुत पीछे गिरा, दूसरा गोला इससे पहले कि कुछ रिएक्शन होते हैं उनका दूसरा गोला आ चुका था और उसकी आवाज नहीं आई। वो मेरे बगल में गिरा 1.5 मीटर दूर। 1.5 मीटर दूर जो था वो किलिंग जोन था उस गोले का, क्योंकि सिखलाई के हिसाब से 8 मीटर का दायरा किलिंग जोन होता है। तो उन्होंने तो पूरी अपनी तरीके से प्रिपरेशन के साथ मुझे मारने का पूरा हिसाब किताब फिट किया हुआ था, तो मारने की तो पूरी कोशिश करी, लहूलुहान किया भी, गंभीर भी हुआ मैं बहुत बुरी तरीके से। फिर मेरे सिपाहियों ने उठा के अपनी जान पे खेल के जब मुझे पीछे पहुंचाया 7 डोगरा के सिपाहियों ने, तो रास्ते में खून के साथ साथ हार्ट अटैक भी हुआ।

0: लेकिन फिर भी हम बच गए। बचना था क्योंकि बहुत सारे कीर्तिमान ऐसे भगवान ने शायद मेरी जिंदगी में लिखे हुए थे जो उसके बाद करने जरूरी थे। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि युद्ध क्षेत्र में घायल होना मेरा बहुत जरूरी था, क्योंकि उसके बाद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर पे शायद भगवान ने ऑलरेडी मेरी जिंदगी की स्क्रिप्ट में लिख के भेजी थी, उसके लिए टांग कटना, एक बार मृत घोषित करना, लहू लुहान होना बहुत जरूरी था। क्योंकि वहां से जब फिर कहानी शुरू हुई तो हमने उन दुश्मनों को फेस किया जो सोच से घायल थे। तो वो जो युद्ध लड़ा उसके बाद आज तक जो लड़ रहा हूं, उसमें जो झंडे गाड़ने को मिले, उसमें जो तिरंगा लहराने को मिला, उसमें सेना की जो सिखलाई है वो बहुत काम आई, आज भी आ रही है।
1: इस बातचीत को आगे बढ़ाएं मेजर साहब, बीच की एक छोटी सी कहानी और भी है। जब आप घायल हुए और उसके बाद आपके जो साथी सैनिक थे आपको रेस्क्यू करके अस्पताल की तरफ लेकर जा रहे थे, बगल में एक नदी भी बहती थी और आपके जो साथी थे उसमें एक को तैरना भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में आपका साथ दिया, थोड़ा उसके बारे में भी बताएं।
0: बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और मैं शायद ना सिर्फ उन चार सैनिकों का, 7 डोगरा पलटन का, और उसके बाद अनगिनत फौजी और सिविलियन जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से सेना के अस्पताल से जुड़े हुए थे, उनका हमेशा तहे दिल से शुक्रिया अदा करूं भी अगर सारी उम्र, तब भी वो कम रहेगा। क्योंकि तो सैनिकों में वो चार जो मेरे स्ट्रेचर को उठा के ला रहे थे, एक जो था वो नॉन स्विमर था, उसको मतलब तैरना अच्छे तरीके से नहीं आता था, लेकिन अपनी जान पे खेलते हुए उसने फिर भी अपनी सेना की सिखलाई को सर्वोपरि रखते हुए कि अपने सिपाही को, साथी को, भले ही मैं उनका ऑफिसर था लेकिन एक तरीके से मैं उनका साथी था, उसको युद्ध क्षेत्र से निकालना बहुत जरूरी है, उसका हमेशा साथ अंतिम पल तक देते हैं। तो अपने प्राणों पे खेलते हुए उसने मुझे वहां से बचाया। रास्ते में वो स्लिप भी हुआ लेकिन फिर भी उसने मेरे स्ट्रेचर को नहीं छोड़ा। और इसी प्रकार से जब मैं एम्बुलेंस में आया तो डॉक्टर साहिबान जो थे हमारे आरएमओ, उन्होंने फर्स्ट एड देने के बाद 2.5 घंटे जो मुझे लगे हॉस्पिटल तक पहुंचने में, जो बातें मुझसे करने की कोशिश करी ताकि वो मुझे जगा के रखे, वो आज तो मुझको वो बड़ी अच्छी लगती है जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ, लेकिन उस समय मुझे वो इरिटेट कर रही थी कि मेरी तो हालत बहुत खराब है और ये पूछ रहा है कि भैया तुम्हारा पता क्या है, तुम्हारा पोस्टल एड्रेस क्या है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। क्योंकि वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, वो मुझे बेहोश होने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। वो बात और है कि उसके बावजूद भी मैं कार्डियक अरेस्ट हुआ, बेहोश हुआ, और जब पहुंचा तो एक बार कि भैया इसकी फोटो पे तो माला टंगे के ले जाओ इसे बोला गया, लेकिन हम भारतीय सेना के सिपाही हैं, मरने वालों में से नहीं थे, बचे, आज भी जिंदा है।
1: 15 जुलाई 1999 की कहानी आप बयां कर रहे हैं। आप अस्पताल पहुंचते हैं, अस्पताल में डॉक्टर आपको मृत घोषित कर देते हैं, लेकिन उसके बाद फरिश्ते के रूप में आते हैं कर्नल राजिंदर सिंह जो डॉक्टर थे। वो कैसे आपको मिले? क्या उस समय आप होश में थे मेजर साहब? क्या जब वो विजिट कर रहे थे और वो आपके स्ट्रेचर तक आए तब आपको कुछ अंदाजा था?
0: मुझे कुछ नहीं मालूम क्योंकि मैं तो बेहोश था। सर्जन ने तो बोल दिया था कि डेड बॉडी है, ले जाइए मॉर्चरी में, लेकिन वो एमएच में, एमएच अखनूर में उस समय उस दिन थे, ये बाद में मुझे पता चला वो थे, तभी उन्होंने इंटरवीन किया, मेरी सिचुएशन को समझा और मुझे कहाँ से वो कैसे बचा के ले आए वापस, क्योंकि वो स्पेशलाइज थे, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट थे, उनको बेहोश करना और होश में लाना आता था। तो उन्होंने मुझे बचाया और बचा के तीसरे दिन जब मुझे होश आया, ये जो पांव कटा है वो गैंग्रीन के कारण बाद में कटा है, उस समय नहीं कटा था, क्योंकि चोटें बहुत हैं, 73 छर्रे अगर ऑलरेडी मौजूद हैं, उससे ज्यादा मेरे को काटते हुए चले गए तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी चोटें लगी होंगी। तो बच तो गया था। वो कर्नल राजिंदर सिंह उसके बाद मेरी जिंदगी में कभी नहीं आए बहुत सालों तक। 2019 में फेसबुक के कारण मैं उनके साथ कनेक्ट हुआ, तब तक मेरी जो किताब थी ग्रिट द मेजर स्टोरी वो छप चुकी थी, मैंने वो किताब उनको उन तक पहुंचाई। वो कैलिफोर्निया में एज ए वेटरन, एज ए रिटायर्ड पर्सन अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। और फिर जब 2023 में मैं यूएस में हवाई जहाज उड़ाना सीखने के लिए जाने का मुझे मौका मिला, तो स्पेशली मैं उनसे जाके वहां पे मिला और जाके मैंने उनके पांव छुए, गले मिला, और तब मैं इतने सालों के बाद इन पर्सन उनको थैंक यू कर पाया मुझे बचाने के लिए। ये है एक सैनिक का, सैनिक से मिलाप।
1: अभी अभी आपने बातचीत के दौरान एक बात कही कि 70 से ज्यादा छर्रे आज भी आपके शरीर में मौजूद हैं, परेशान करते होंगे आज भी।
0: मेड इन पाकिस्तान।

0: पाकिस्तान वाले चल रहे हैं, अंदर अभी भी बम के टुकड़े पड़े हुए हैं। 73 ऐसे टुकड़े हैं, उसमें कुछ टुकड़े ऐसे हैं जो ऐसी जगहों पे फंसे हुए हैं जहां पे तंग करना आसान है, जैसे जो ज्वाइंट्स हैं, हिप ज्वाइंट हो गया, एल्बो ज्वाइंट हो गया, या चेस्ट हो गया, या दो तीन और ऐसे जगह हैं, और एक लिवर में भी है। डॉक्टर बोलते हैं कि लिवर में वो चुपचाप लेटा हुआ है किसी तरीके से, क्योंकि अगर वो मिलीमीटर से कम भी कहीं हिल गया और कोई अंदर से नस फट गई तो पता भी नहीं चलेगा कि थैंक यू कब हुआ। लेकिन वो तंग करने में काफी देर तक तो उन्होंने मेरे को तंग करते रहने के लिए, मतलब उनको उसमें सक्सेस मिलती रही, मगर वो सक्सेस मिली तब उन्हें बंद हुई जब मैंने उन वो तो तंग करने से नहीं हटे, लेकिन मैं तंग होने से हट गया। मैंने कहा ठीक है भैया, जो मैंने लेसन 8वीं में सीखा था कि आप अपनी परिस्थितियों से नहीं भाग सकते, तो उन्हीं परिस्थितियों में रह के आपको अव्वल उठना पड़ेगा मेहनत करके, अपने अंदर उन्हीं शक्ति को बढ़ा के। वो लेसन फिर से यहाँ काम आया कि अगर आप छर्रों को निकाल नहीं सकते तो उनको अपना लीजिए, उस दर्द को अपना लीजिए, वो दर्द जिस दिन आप अपना लोगे तो दर्द अपने आप कम हो जाएगा, और रोने के बजाय उस दर्द पे हंसना शुरू कर दीजिए। उस दिन के बाद आज तक वो तंग तो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं तंग होता नहीं हूं।
1: तंग तो आप उस दिन भी नहीं हुए जब डॉक्टर ने कहा था कि आपका पैर काटना पड़ेगा। 24-25 साल का एक युवा देश के लिए युद्ध लड़ रहा था, पूरा भविष्य सामने खड़ा था, और आपने एक सेकंड का भी समय नहीं लगाया जब डॉक्टर ने कहा कि गैंग्रीन के कारण आपका पैर काटना पड़ेगा। उस समय क्या चला था आपके जहन में? भविष्य नजर आ रहा था कि बहुत मुश्किल होने वाला है, या फिर उस समय कुछ चीजें ऐसी ट्रिगर कर रही थी कि नहीं, सब कुछ बेहतर कर सकता हूं?
0: ये बहुत अहम सवाल है, और मैं कहूंगा कि ये एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट था मेरी जिंदगी का, क्योंकि जब डॉक्टर साहबान कर्नल अशोक, जो बाद में ब्रिगेडियर अशोक, आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर के कमांडेंट बनने के बाद रिटायर हुए हैं, वो मेरे बिस्तर के चारों तरफ पट्टी खोलने के बाद डिसीजन लेने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि मैं इस बच्चे को कैसे बताऊं कि तुम्हारी टांग काट दी जाएगी। उनके बोलने से पहले ही मुझे ये पता चल गया था पट्टी खोलने के बाद टांग को देख के कि ये कटेगी। तो मेरे दिमाग में दो विचार आए थे, उन विचारों को मैं आपसे शेयर करता हूं कि पहला जो विचार था उसकी ओनरशिप मैं नहीं लेता हूं, क्योंकि वो बड़ा ही स्पिरिचुअल और बहुत ही एक तरीके का पॉयस विचार था, क्योंकि मेरे दिमाग में अचानक आया कि अब देखते हैं कि एम्पुटी की लाइफ, डिसेबल वाली लाइफ कैसे होती है। ये एक चैलेंज है, शायद एक दिन मैं इस जिंदगी में इस चैलेंज को इस प्रकार से निभा पाऊंगा कि ना सिर्फ मैं बल्कि लोग भी प्रेरित होंगे। और दूसरा जो विचार था वो विचार था कि मैंने अपनी जिंदगी से खुद को प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी जिंदगी में कभी भी उसके क्वालिटी और स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितनी मर्जी मेहनत करनी पड़े, लेकिन मैं जीऊंगा तो खुल के जीऊंगा। अब इस दूसरे विचार को तो मैं मानता हूं कि मेरा था, लेकिन पहला विचार, 24 साल का जो व्यक्ति इतना स्पिरिचुअल थॉट कैसे सोच सकता है, ये मुझे अभी भी हैरानी होती है। तो शायद भगवान की दी हुई सोच थी, और उस सोच को भगवान ने एक्चुअल में रियलाइज भी कराया, वो पूरे तरीके से खरी उतरी भी, क्योंकि जो दूसरा विचार था उस विचार ने उस सोच को खरी उतरने में बड़ा हेल्प करी। हर मौके पे जहां पे मैं कुछ अचीव कर पाया हूँ डिसेबल होने के बाद, उसके पीछे वो मेरी प्रॉमिस थी मेरे साथ कि मैं अपनी क्वालिटी और स्टैंडर्ड, लाइफ की क्वालिटी और स्टैंडर्ड को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। कॉम्प्रोमाइज ना करने का मतलब है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को अंदरूनी तरीके से मजबूत बनाना पड़ेगा, अपने आज के लेवल से ऊपर उठना पड़ेगा, और ऊपर उठने के लिए आज के लेवल से अपने आप को अगर उठाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, खुद के कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा। और भगवान की दया से बार बार वो कंफर्ट जोन मैंने तोड़ा है, चाहे वो नकली टांग से भागना हो, चाहे वो ब्लेड से भागना हो, चाहे वो हवाई जहाज उड़ाना हो, चाहे वो हवाई जहाज से कूदना हो, वो कंफर्ट जोन टूटा है, क्वालिटी और स्टैंडर्ड रखा है।
1: पॉडकास्ट के दूसरे हिस्से में चलते हैं मेजर साहब। जब आप 1 साल से ज़्यादा समय तक अस्पताल में रहे, कई सर्जरियां हुई, उसके बाद घर वापस आए, जब

0: व्यक्ति का शरीर थोड़ा सा प्रभावित हो जाता है, आपने एक टांग गंवा दी, आसपास के लोगों का क्या रिएक्शन रहा? आप देश के लिए लड़े।
1: तकरीबन एक साल मैं हॉस्पिटल में रहा, और हॉस्पिटल में मैं अकेला नहीं था। हॉस्पिटल में मेरे जैसे 5 जने थे। हम किसी की टांग नहीं थी, किसी का आंख नहीं था, किसी का हाथ नहीं था, किसी के आंख और हाथ दोनों नहीं थे। लेकिन सब में जुनून था और सबके सब युद्ध क्षेत्र में घायल वाले थे। और उस जुनून ने, उस कमरेडरी ने एक दूसरे का सहारा बन के कभी भी हमारे को ये नहीं फील होने दिया कि हम किसी चीज में कम हैं। इनफैक्ट हमने वो करके दिखाया जो शायद उस समय लोग सोच भी नहीं पाते। कभी हम एक ही टांग पे क्लब में नाचते हुए नजर आते थे, कभी एक ही टांग में हम सड़कों पे स्लिप होके गिर रहे हैं या फिर भी उठ के चल पड़े हैं क्रच के साथ। तो जिंदगी खुल के जी रहे थे और खुद का देखभाल भी करने की पूरी कोशिश रख पा रहे। लेकिन जब दोबारा से जीवन में वापसी आई, जब दुनिया में वापसी आई और आम जीवन दोबारा शुरुआत करने का वक्त आया, तब हमें पता चला कि लोगों का जो नजरिया है वो डिसेबल की तरफ थोड़ा नकारात्मक है। और मेरे लिए खासकर वो एक चैलेंज था, क्योंकि मेरा जो पास था, मैं कमांडो ट्रेंड हाईली सुपरफिट टाइप का बंदा हुआ करता था, लेकिन रियलिटी ये थी कि मैं 4 कदम भी बगैर किसी सहारे के आज की डेट में चल नहीं पा रहा था। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट था दिमाग में, इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण इरिटेशन होती थी, इरिटेशन के कारण गुस्सा आता था, गुस्से के कारण लोगों को लगता था कि ये तो पागल हो गया है। लेटर ऑन आज भी मैं स्टेज पे जाता हूं तो मेंटल हेल्थ और PTSD के बारे में जरूर बात करता हूं, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जिसके पता ना होने के कारण मुझे बहुत कुछ सफर करना पड़ा। इन माय केस मेरे को स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थी जो बचपन में गुरुद्वारे जाने से जो मिली थी, उसके कारण मैं रिवाइव कर पाया और उसी के कारण मैं अचीव भी कर पाया चीजों को। तो वो मेंटल हेल्थ की जो सिचुएशन थी और जो वो इरिटेशन थी, जो अपना द्वंद्व था मेरा, मेरे पास की रियलिटी का और आज की रियलिटी का, उसको ओवरकम करने में जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ने मेरा सहारा दिया, उस सहारे के साथ आगे बढ़ते बढ़ते और उन अनअचीवेबल अनथिंकेबल चीजों को, चाहे वो पहला व्यक्ति हो भारत का जिसने नकली टांग से मैराथन भागी, इसके बावजूद कि मैं जब पूरा कंप्लीट था तो मुझे लंबी दौड़ लगाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुआ करती थी, उसके बावजूद ना टांग कटने के बाद किस किलोमीटर भाग के आया। तो ये सब ये पता चलता है कि दिमागी सोच अगर आपकी सही है तो आप एक एबल इंसान हो
0: जी।
1: ये जो एग्जाम्पल फिर मेरे को सेना की सिखलाई और अपने हिस्ट्री की मजबूती, सिखिज्म की मजबूती के कारण जो मैं एग्जाम्पल ऑन ग्राउंड सेट कर पाया अपने एज ए डिसेबल सोल्जर होने के बावजूद अचीवमेंट्स के साथ, उस एग्जाम्पल ने लोगों के नजरिए में बदलाव लाया और आज की डेट में जो मेरा ग्रुप है, NGO है, द चैलेंजिंग वन, जिसको 2011 में मैंने शुरू किया था, जिसमें तकरीबन आज की डेट में 3,500 एम्पुटीज कनेक्टेड है
0: जी,
1: उसमें उस नकारात्मक सोच से तोड़ के उन एम्पुटीज ने जीना सीखने के साथ साथ अचीवमेंट करनी सीखी। आज उनमें से बहुत सारे जो है कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं, ना सिर्फ खेलों में बल्कि एडवेंचर में। और एक नाम मैं खास कर लेना चाहूंगा, उस लड़की का आप लोग जानते भी होंगे, मानसी जोशी
0: जी,
1: जो कि वर्ल्ड पैरा बैडमिंटन चैंपियन रह चुकी हैं, जिन्होंने अर्जुन अवार्ड तक अचीव कर लिया है। तो ये विचारों का जो बदलाव आया और जिसमें मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि भगवान ने मुझे चुना, उसमें उस पाकिस्तानी का बम फेंकने की रिक्वायरमेंट उतनी इंपॉर्टेंट थी जितनी बाकी चीजों की रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट थी। ना वो बम फेंकता चोटिल होता, ना मेरी टांग कटती, ना ये हिस्ट्री लिखी जाती।
0: बहुत ज्यादा समय नहीं है कार्यक्रम में, 2 छोटे-छोटे सवाल आपसे बहुत संक्षेप में समझना चाहेंगे। पहला कि मैराथन आपने दौड़ना शुरू कर दिया था, ब्लेड रनर, भारत का पहला ब्लेड रनर बनने की क्या कहानी थी, और फिर सोलो स्काई डाइविंग भी आपने शुरू की, बहुत संक्षेप में उसके बारे में भी थोड़ा बताइए।
1: 3 बार जब मैं नकली टांग से हाफ मैराथन भाग चुका था तो जो एडजुटेंट जनरल हुआ करते थे उस समय, लेफ्टिनेंट जनरल मुकेश अग्रवाल, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मेरे को काफी शाबाशी दी और पूछा कि बताओ DP, तुम एक सेवानिवृत्त सिपाही हो, तुम्हारे को मैं और क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि सर अगर ब्लेड मिल जाए तो शायद भागना और नॉर्मल हो जाए। तो मेरे को 2011 में AG ने भारत का पहला ब्लेड इंपोर्ट करके 2011 में मेजर DP सिंह सेवानिवृत्त को दिया।

0: और वहां से मेरे को ब्लेड रनर का नाम, फर्स्ट ब्लेड रनर ऑफ इंडिया का नाम मिला। उसके बाद 2018 में जनरल बिपिन रावत जब चीफ थे, तो 2018 को सेना ने एयर ऑफ डिसेबल्ड इन लाइन ऑफ ड्यूटी उस सोल्जर को डेडिकेट किया था। और जनरल बिपिन रावत मेरा एग्जाम्पल जगह जगह पे जाके दिया करते थे अबाउट एबिलिटी ऑफ दिस सोल्जर, जो कि 100% डिसेबल है उसके बावजूद उसकी एबिलिटी। तो उनकी उनकी ब्लेसिंग्स के साथ मैंने, क्योंकि वो चाहते थे कि ये जो साल है इसको हम किसी हाई नोट पे कंप्लीट करें, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मेरे को स्काई डाइविंग करने की अनुमति दी जाए। तो उनकी अनुमति के साथ फिर जो आर्मी एडवेंचर विंग है उन्होंने मुझे 1 महीने की सिखलाई करी दी 2019 में मार्च नासिक में, और 29 मार्च को 2019 को पहला स्काई डाइवर एशिया का डिसेबल्ड होने का मुझे गर्व प्राप्त हुआ।
1: अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे, देश के करोड़ों युवाओं के नाम आपका क्या संदेश होगा जो कई बार हताश और निराश होकर बैठ जाते हैं, उन्हें लगता है कि भविष्य काफी अंधकारमय है, वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, और उन युवाओं को भी आप क्या कहना चाहेंगे जो देश की सेवा के लिए सेना में आने के बारे में सोच रहे हैं?
0: देखिए, मैं भी युवा था और मैं आज भी अपने आप को युवा समझता हूँ, समझने में तो कोई गलत नहीं है, चाहे भले बूढ़े हो गए। तो मेरा ये कहना है कि बैठना या रुकना में कोई दिक्कत नहीं है, थकते सभी हैं, लेकिन उसके बाद फिर उठो और चलते रहो। चलना तब खत्म करना है जब तुम्हारे को तुम्हारा एम, तुम्हारा मकसद मिल रहा है, उससे पहले नहीं। उससे पहले सिर्फ ब्रेक ले सकते हो।
1: कहते हैं मुश्किलों में मुस्कुराना और हौसले को आजमाना चाहिए। जब भी आपके जीवन में ऐसा लगे कि आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, संभावनाओं को संभव नहीं बना पा रहे हैं आप, तो हमारे इस पॉडकास्ट को जरूर देखिएगा, क्योंकि मेजर डीपी सिंह की कहानी अपने आप में सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो एक संस्थान बन चुके हैं और वो बताने के लिए काफी हैं कि कितनी विकट परिस्थितियां जीवन में क्यों ना आ जाए, लेकिन आगे बढ़ने की चाह हमेशा बनी रहती है। जरूरत होती है कदम बढ़ाने की, जरूरत होती है अपने लक्ष्य को और बड़ा करने की। थोड़ा सा हौसला रखिए, दृढ़ इच्छा शक्ति बनाए रखिए, आगे बढ़ते रहिए और एक न एक दिन आप अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर लेंगे। पर्सन बिहाइंड द स्टोरी पॉडकास्ट में हमसे जुड़ने के लिए और अपने विचार, अपने जीवन के बारे में, करगिल युद्ध के बारे में आकाशवाणी के श्रोताओं के साथ विस्तार से बात करने के लिए मेजर डीपी सिंह जी, आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद। जय हिंद। सबको राम राम।
2: अभी आप सुन रहे थे करगिल विजय दिवस के अवसर पर पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत करगिल युद्ध में अपने शौर्य का प्रदर्शन करने वाले पूर्व सैनिक और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह के साथ खास बातचीत। संवाद का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.earnews@gmail.com।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी। इस कार्यक्रम का अनुप्रसारण हमने किया दिल्ली केंद्र से FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

0: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
1: आराम से मैडम।
0: क्या?
1: आराम से पहुंचेंगे मैडम, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक।

0: No tension.
1: Easy access and seamless travel. Noida International Airport, where dreams take off.
2: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट. बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ.

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: युवाणी सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम में, और आज मैं हूं आपके साथ खुशबू। साथियों, क्या खूब कहा है, जब से परीक्षा वाली जिंदगी पूरी हुई है तब से जिंदगी की परीक्षा शुरू हो गई है। आज मुझे एक नया अनुभव हुआ, अपने मोबाइल से अपना ही नंबर लगा कर देखा, आवाज़ आई, द नंबर यू हैव कॉल इज बिजी। फिर ध्यान आया कि किसी ने क्या खूब कहा है, औरों से मिलने में दुनिया मस्त है पर खुद से मिलने की सारी लाइनें व्यस्त है। कोई नहीं देगा साथ तेरा यहाँ, हर कोई यहाँ खुद में ही मशगूल है। जिंदगी का बस एक ही वसूल है, यहाँ गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद है। जी हाँ साथियों, ये जो जिंदगी है उसमें हर तरह के उतार चढ़ाव हम देखते हैं और महसूस करते हैं, और अपनी ज़िंदगी को हमसे ज़्यादा और कोई नहीं जानता।

साथियों, आज की बात के क्रम में आज हम बात करेंगे ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी के विषय में। तो सबसे पहले समझते हैं ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक पात्र और जरूरतमंद परिवार को आवास योजना का लाभ निष्पक्ष, पारदर्शी और समान रूप से मिले, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी किसी भी आधार पर भेदभाव न हो। भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना का जो उद्देश्य है वो है ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना जो बेघर हैं या कच्चे और जर्जर मकानों में रहते हैं। योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता देकर सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराया जाता है। उचित हिस्सेदारी का मतलब ये है साथियों, प्रत्येक पात्र परिवार को योजना का लाभ जरूर मिले, लाभार्थियों का चयन पूरी तरह से पारदर्शी हो, महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन और अन्य जो वंचित वर्गों को उनको सबसे पहले प्राथमिकता मिले, भ्रष्टाचार, पक्षपात और फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगे, ग्रामीण समाज में सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा मिले। साथियों, बेघर परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास मिलता है, स्वच्छता, स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति में सुधार।

होता जाता है। सामाजिक सुरक्षा और आत्मसम्मान बढ़ता है, ग्रामीण विकास और रोजगार को प्रोत्साहन मिलता है, पलायन में कमी आने में सहायता मिलती है। ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी केवल मकान देने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना भी है कि प्रत्येक पात्र परिवार तक योजना का लाभ ईमानदारी, पारदर्शिता और समानता के साथ पहुंचे। जब चयन प्रक्रिया निष्पक्ष होगी और समाज की भागीदारी बढ़ेगी, तभी हर ग्रामीण परिवार के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक आवास का जो लक्ष्य है वो पूरी तरह से साकार हो सकेगा।

साथियों, सावधानी ही जीवन का सच्चा आधार है। जल के पास सुरक्षा सबसे बड़ा हथियार है। एक छोटी सी सतर्कता रखिए हर बार, यही बचाएगी जीवन, यही होगा उपकार। साथियों, हर वर्ष 25 जुलाई को विश्व डूबने से बचाव मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड ड्राइंग प्रिवेंशन डे। इस दिवस का जो उद्देश्य है, लोगों को डूबने जैसी जो प्रक्रिया होती है उसे रोका जा सकता है, दुर्घटनाओं के प्रति जागरूक करना और जल सुरक्षा के महत्व को समझाना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार हर वर्ष लाखों लोग डूबने की घटनाओं का शिकार होते हैं, जिनमें बड़ी संख्या बच्चों और युवाओं की होती है। यदि हम नदी, तालाब, झील, नहर, बांध या किसी अन्य जलाशय के पास जाएं, तो कुछ नियमों का पालन अवश्य करें। बिना आवश्यकता गहरे पानी में न जाएं, बच्चों को कभी भी जलाशयों के पास अकेला न छोड़ें। जहां गहरे पानी तैरना मना है, जैसी आप अगर चेतावनी का बोर्ड देखते हैं तो उसका पालन आप अवश्य करें। तैरना न आने पर पानी में उतरने का प्रयास बिल्कुल न करें। नाव या बोट में यात्रा करते समय हमेशा लाइफ जैकेट जरूर पहनें। बारिश या बाढ़ के समय तेज बहाव वाले पानी से दूर रहें। नशे की हालत में पानी के पास न जाएं। किसी को डूबता देखें तो खुद बिना किसी तैयारी के पानी में न कूदें। तुरंत आसपास के लोगों, पुलिस या बचाव दल को सूचना दें। प्राथमिक उपचार करें। जानकारी रखना भी जीवन बचाने में सहायक हो सकता है। इसमें युवाओं की भूमिका क्या होती है? जैसे कि अपने परिवार और मित्रों को जल सुरक्षा के प्रति जागरूक जरूर करें। गांव, स्कूल और समुदाय में जल सुरक्षा अभियान चलाएं। बच्चों को सुरक्षित वातावरण में तैरना सीखने के लिए प्रेरित आप जरूर करें। जलाशयों के आसपास स्वच्छता और सुरक्षा बनाए रखने में सहयोग दें। साथियों, आज विश्व डूबने से बचाव दिवस के अवसर पर आइए हम सभी ये संकल्प लें कि जलाशयों के पास हमेशा सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे। नदी, तालाब, झील या नहर के किनारे थोड़ी सी लापरवाही भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। बच्चों पर विशेष ध्यान दें। चेतावनी संकेतों का जरूर पालन करें।

थोड़ी हसरतें, कुछ जज्बात बाकी हैं। कभी अलविदा ना कहना दोस्तों, अभी बहुत से अल्फाज बाकी हैं। इन्हीं कुछ लाइनों के साथ अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी युवा साथी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युववाणी FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने तत्काल प्रभाव से आंदोलन वापस लेने की घोषणा की है। सीजेपी ने कहा कि हमारी सभी तीन मांगे मान ली गई हैं, इसलिए अब जंतर मंतर से लोग शांतिपूर्वक वापस लौट जाएं। नई दिल्ली में सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के बीच तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने इसकी घोषणा की।
1: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि सरकार प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी मामले वापस लेगी।
2: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: श्री नड्डा ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए दिए गए सीजेपी के सुझावों पर विचार किया जाएगा।
2: हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलीबरेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे।
0: इससे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं और ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच CBI को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी थी। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यह बात कही।
3: कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि सोमवार को संसद के वर्तमान सत्र का दूसरा सप्ताह प्रारंभ होगा, आप इस समस्या

0: पर और आपके द्वारा जो भी विषय रखे गए, जब सरकार संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है तो आप सोमवार से संसद की चर्चा में भाग लेंगे अथवा पुनः चर्चा से भागेंगे।
1: श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। दिल्ली पुलिस ने लोगों को नई दिल्ली क्षेत्र की ओर जाने से बचने की सलाह दी है, क्योंकि पूरे जिले में भारी भीड़ और यातायात जाम देखा जा रहा है। पुलिस ने यात्रियों को निर्देश दिया है कि वे देरी से बचने और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने राजीव चौक, मंडी हाउस, जनपथ और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार खोल दिए हैं। प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया है। श्री शेखावत ने कहा कि सारनाथ शांति, ज्ञान और करुणा का शाश्वत प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह मानवता के लिए भारतीय सभ्यता के गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक योगदान को दर्शाता है। कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में सिंगापुर के कानून मंत्री एडविन टोंग एससी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मेघवाल ने दोनों देशों के कानूनी सहयोग को मजबूत करने, वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और संस्थागत तथा न्यायिक सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। हरारे में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरे T20 क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 19 ओवर में 4 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में उनका सामना आज मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 MHz पर। लीजिए अब आपको जानकारी दे देते हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में।

रात 9:30 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती और रात 10 बजे कार्यक्रम होगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये दोनों ही कार्यक्रम हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

किसान भाइयों का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 6:15 पर। आज इस कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे सिंचाई और जल संरक्षण का महत्व। इसके साथ ही मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार खाद का प्रयोग विषयों पर। इसी कार्यक्रम में आप एक वार्ता भी सुन सकते हैं जिसका विषय रहेगा प्रगतिशील कृषक से मछली पालन के अनुभव। वार्ताकार होंगे तेजपाल सिंह। कार्यक्रम ब्रज साहित्य में आज आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत ब्रह्म मोह लीला का प्रसंग। कथाकार होंगे राज पुरोहित श्री शिवराज कृष्ण जी महाराज। संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी प्रसारित किया जाएगा शाम 7:31 पर। कार्यक्रम इस सप्ताह संसद में आप सुनेंगे रात 8:00। इस कार्यक्रम का अनुप्रसारण हम करेंगे दिल्ली केंद्र से। कार्यक्रम एक ही फिल्म से के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे राज फिल्म के कुछ गीत।

श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम विवरण। अब कुछ गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में सूचना सुन लीजिए। लापता व्यक्ति का नाम है लाड कुंवर, पिता का नाम कमलू राय, रंग गेहुआ, शरीर की बनावट सामान्य है, आंखों का रंग काला, पहनावा पीला सूट सलवार। इनका पता है सेक्टर 2 रुक्मणी विहार, थाना वृंदावन जनपद। दूसरे गुमशुदा व्यक्ति हैं मनीष, पिता का नाम मान सिंह, रंग सांवला, शरीर की बनावट सामान्य, आंखों का रंग काला, पहनावा है सफेद शर्ट छेदार। इनकी आयु है 26 वर्ष। अगले लापता व्यक्ति का नाम है, ये महिला है पूनम, इनका नाम है, पिता का नाम वीरेंद्र, रंग गेहुआ, शरीर की बनावट एकहरा बदन, आंखों का रंग काला, लाल रंग की साड़ी एवं पैरों में चप्पल पहने हुए हैं। आयु है इनकी 38 वर्ष, कद है इनका 5 फुट। लापता व्यक्ति का नाम छाया, पिता का नाम राजकुमार, रंग है इनका गोरा, शरीर की बनावट सामान्य, आंखों का रंग सामान्य, आयु है इनकी 25 वर्ष, कद है इनका 5 फुट 2 इंच। संतरी रंग का सूट और पैरों में हवाई चप्पल पहने हुए हैं। लापता व्यक्ति का नाम क्रांति, पिता का नाम नंदराम, रंग गेहुआ, शरीर की बनावट सामान्य, आंखों का रंग काला, क्रीम कलर और सलवार सूट ये पहने हुए हैं। आयु है 19 वर्ष, कद है 5 फुट। लापता व्यक्ति का नाम अंजलि, पिता का नाम धर्म सिंह, रंग गेहुआ, शरीर की बनावट सामान्य, आंखों का रंग काला, हरे रंग का सूट, हवाई काले रंग की चप्पल ये पहने हुए हैं। आयु है 28 वर्ष, कद है 5 फुट 2 इंच। गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में सूचना समाप्त हुई। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है संवेद स्वरों में देशगान।

अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वरों में देशभक्ति परक रचना FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं रूप किशोर शर्मा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो।
4: क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है।
3: जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं
4: और आपकी आमदनी में

0: इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
2: किसानवाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनान को रूप किशोर की राम राम। भैया मौसम को हाल तो आप जान ही रहे हो, हल्की फुल्की बूंदाबांदी ते गर्मी ते राहत है और हमारी फसल को भी फायदा है। भैया बड़े बूढ़े क्यों करते हैं कि मेघा तो बरसे भले राम करे सो होए, पर भैया राम करे सो होएगी लेकिन हमें उन मेघांते बरसे वे जल को संरक्षण करना होगा। आज जो हम चर्चा करेंगे सिंचाई और जल संरक्षण के महत्व के बारे में। भैया जल जीवन को आधार होए और जाको सही उपयोग जाको संरक्षण हमारी आर्थिक और प्राकृतिक स्थिरता को बनाए रखे। जल को संरक्षण करवो हम सबन के काजें बहुत ही जरूरी होवे, क्योंकि हम जो जल को दुरुपयोग करें या आवश्यकता ते अधिक वा को खर्च करें वो गलत है, क्योंकि जल जीवन को आधार है और पृथ्वी पे मौजूद सभी जीव जंतु वनस्पति पेड़ पौधा सब जल के बिना जीवित ना रह सकें। मानव जीवन में जल को विशेष महत्व होए, क्योंकि जी केवल पीने के काज ही ना है जरूरी, बल्कि खेती काम धंधे उद्योग स्वच्छता और ऊर्जा उत्पादन में भी उपयोगी होवे। जाके काजें जल को संरक्षण करवो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होए। भैया जल संरक्षण को महत्व तो यहाँ तक ही सीमित ना होए कि खेत को पानी खेत में और गांव को पानी गांव में, बल्कि हम अपनी खेती में हों फसलन की सिंचाई में जल संरक्षण को कर सकें, नई नई तकनीकीन को अपनाए सकें, जल का उपयोग करें, क्योंकि जितनी ज़रूरत होगी उतनी ही सिंचाई में जल का उपयोग करें, क्योंकि पौधा को सही समय पे उचित मात्रा पे पानी मिले तो पौधा की अच्छी वृद्धि और बेहतर पैदावार होगी। हम फसल की सिंचाई में हूँ नई आधुनिक सिंचाई पद्धति को अपना सकें, जैसे टपक सिंचाई विधि होए फव्वारा सिंचाई विधि होए, इन सब सिंचाई विधि को उपयोग करके जल संरक्षण को बढ़ा सकें और जल संरक्षण करीबे के संग ही संग अपनी आर्थिक और प्राकृतिक स्थिरता को भी मजबूत कर सकें। ये तो चर्चा रही भैया सिंचाई और जल संरक्षण को महत्व। भैया अनुभव सीख चाहे छोटो हो चाहे बड़ो हो हमें सबते लेनी चाहिए, सीख अच्छी होए। हम सामान्य तौर पे हमारे किसान भैया अपनी खेती बाड़ी करो करें, गेहूं कर दिए धान कर दिए सरसों कर दे, लेकिन कछु काम ऐसे होए कि जो खेती के संग ही संग हजामें और कम जगह पे ज़्यादा पैदा दे जामें। आज जो हम आपको भेंट वार्ता सुनवा रहे हैं वो प्रगतिशील किसान जिन्हें मछली पालन कियो तो उनके अनुभव आज हम आपको सुनवा रहे हैं उनके मुखते, और हमारे जो किसान हैं वो हैं तेजपाल सिंह और इनते बातचीत कर रहे हैं वीरेंद्र सिंह प्रगतिशील किसान से मछली पालन के अनुभव। तो भैया सुनो यह भेंट वार्ता को।
3: किसान भैया जैसो के हम खेती करते चले आ रहे हैं, पर खेती के संग संग कछु ऐसो अगर हम रोजगार करें या कोई ऐसो धंधो करें जाते खेती के संग भैया हमें और ज़्यादा मुनाफा हुए और हमें अलग ते कछु लीक ते हटके कछु करवे को मिले, तो ऐसो ही एक व्यवसाय है या धंधो कह लियो या कारोबार कह लियो वह मछली पालन। तो मछली पालन जो है कैसे करो जाए, तो ऐसे कछु अनुभव आज हम आपको सुनवा रहे हैं अपने एक किसान की। हमारे संग एक किसान तेजपाल सिंह इनायतगढ़ के रहने वाले जो नौजील क्षेत्र के हैं। राम राम साहब।
4: राम राम साहब।
3: तो

0: सबसे पहले जी बताओ कि आपने जो है जो मछली पालन को जो ये खोले हो अपनो रोजगार, तो जी कैसे विचार आए हो आपको कि भाई हमें मछली पालन करना चाहिए।
1: सही बात तो भैया की है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है।
0: हाँ सही बात है।
1: तो मैंने 12-13 में कामधेनी डेयरी योजना खोली, 100 भैंस वाली।
0: अच्छा।
1: बड़े इरादे से खोली, बड़ी मेहनत करी, लेकिन वहाँ में कुछ समस्या ऐसी आई कि नुकसान पर नुकसान चलता रहो और घाटे को सौदा है गई। जब घाटा बढ़ने लगे तो फिर लगी कि भाई इसकी भरपाई कैसे हो। तो
0: हाँ
1: मैंने यहाँ साइंटिस्ट से बात करी, डॉक्टर से, कृषि विज्ञान केंद्र पर बात करी। वही टाइम पे मछली विभाग के एक मीटिंग में एक अधिकारी से मुलाकात। भाई मैंने उन्हें अपनी समस्या बताई,
0: जी
1: वो बोले कि अगर आपके पास साधन हो तो मछली पालन कर लो
0: अच्छा।
1: और आपके घाटे की पूरी भरपाई न होगी तो कम जरूर हो जाएगा घाटा।
0: हाँ
1: उसी टाइम पे खेत तालाब योजना आएगी, यहाँ में सरकार ने
0: हाँ
1: बरसात के पानी इकट्ठा करवे के लिए
0: अच्छा।
1: एक योजना किसानों को दी कि आप एक तालाब बनवाओ, एक साइज था या साइज के तालाब खुदवा जो,
0: अच्छा।
1: तो हमें अनुदान दियो सरकार ने। तालाब मैंने वो अनुदान पे खुलवा के, और वही तालाब में उनके कहवे पे मछली विभाग के जो अधिकारी है मछली पालन को काम स्टार्ट कर दियो।
0: अच्छा, तो फिर कितनी जगह आपने अपने खेत में ते लई जा तालाब के काजे।
1: मैंने करीब 1 एकड़ जमीन ले ली वहां में,
0: अच्छा,
1: और
0: मतलब कि
1: छोटे
0: 5 बीघा से।
1: 5 बीघा के करीब और 2.5-2.5 बीघे के 2 तालाब बनवाए,
0: अच्छा।
1: बीच में छोड़ के जगह, और 2 तालाब कर दिए।
0: जी
1: दोनों तालाबों में एक नाली बना के आपस में जोड़ दिए और दोनों तालाबों में मछली पालन को काम स्टार्ट कर।
0: तो जी चौमा से भी शुरू करे हो आपने तालाब योजना का चुप।
1: या कोई एक टाइम है, तालाब तो खुदवाए मैंने चौमासे से पहले,
0: अच्छा।
1: लेकिन वहां में मैं वासार बच्चा न डाल के इतने चौमासे निकल गए। जो लेट लेट है वो
0: अच्छा, तो बच्चा कहाँ दिलाए आप।
1: बच्चा वह टाइम पे तो यहाँ अपने आसपास कोई हैचरी नहीं, तो वहां बरेली से लेके आए हम।
0: अच्छा।
1: एक सरकारी संस्था थे, पहले तो मछली विभाग वाले ने मंगाए दिए, मैंने वहां पैसा जमा कर दिया और उनने मेरे घर पे सप्लाई दे दी।
0: तो फिर बुक का हिसाब से मिले बच्चा, जैसे कि
1: वो
0: एक।
1: बच्चा गिनती के हिसाब से हमें जो
0: अच्छा
1: छोटे साइज के,
0: हाँ
1: और जितना छोटा बच्चा लेगे उतना ही सस्ता आवेगा, लेकिन वहां में ज्यादा बच्चा मर जाए छोटे
0: अच्छा।
1: बच्चा ने,
0: हाँ
1: तो बच्चा को साइज उन्हें देख के लेना चाहिए।
0: तो कितनों साइज होना चाहिए लगभग।
1: कायदा में तो 20 ग्राम से स्टार्ट है के, और 100 ग्राम तक को बच्चा सबसे बढ़िया रही है।
0: अच्छा। तो फिर यहाँ में जैसे आपने कही बच्चा हमने ले हो, तो तूल ते ले हो कि फिर गिनती ते ले हो,
1: वो
0: जैसे
1: गिनती ते आवे बच्चा,
0: तो पैकेट में हम तो
1: पैकेट में आवे, पॉलीथिन की पैकेट में वो पानी डालें और पानी में ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन भर के दें,
0: हो। अच्छा।
1: जाते कि बच्चा रास्ता में मर न जाए,
0: सैकड़ा के हिसाब से। हाँ तो
1: सैकड़ा के हिसाब से।
0: कि भाई जय रुपया की जय सैकड़ा।
1: हाँ
0: तो वास में फिर तो आप जिस 13-14 की बात बता रहे हैं तो मत दो ही आएगा हो वास
1: ना, वो
0: में।
1: तो अगर छोटा बच्चा लेगा तो आज वो रेट वही है,
0: हाँ का हिसाब दे।
1: वो करीब 45 से 50-70 रुपया 1,000 तक को आवे।
0: अच्छा, तो जी तो बड़ी किसान का सस्तो को भाई,
1: सस्तो तो है, लेकिन वहाँ 1,090 थे, वो 2 से 2.5 से बच पा में।
0: ऐसी बात है।
1: हाँ ज्यादा छोटो हो गए
0: अच्छा, तो मतलब लाइवे में जो,
1: लाइवे में ना, तालाब में आके खत्म खत्म है जाए वो, क्योंकि वह
0: अच्छा
1: मौसम में वो ढलना पा में इतनी
0: नए
1: जल्दी,
0: वातावरण में आमे।
1: नई जगह मिले। हाँ
0: हाँ, तो जैसे आपने बताई कि मई के महीना में डालो, तो वास में तो पानी बहुत गर्म है जाए।
1: ताजी पानी डालो जाए, और जब ज्यादा पानी हो तो उतना गर्म है ना पावे।
0: अच्छा। तो बच्चा फिर सुबह डालो जाए सांझ को,
1: जब कायदाम तो ये है कि दोपहर बाद ही डालो, बच्चा है
0: सीरो है जाए पानी जब।
1: ठंडो है, ठंडो ही है पानी, ज्यादातर गर्म ना
0: हाँ,
1: हो।
0: ज्यादा पानी ठंडो ही है,
1: हाँ
0: तो जैसे
1: क्योंकि
0: कि
1: 5 फुट या 6 फुट गहराई को पानी रहे, तो
0: अच्छा।
1: इतने खड़े पानी में वो
0: हाँ,
1: गर्म है ना पावे जब तक।
0: तो एक तालाब में जैसे बताइए आपने 2.5 बीघा को एक तालाब, वो पहले वहां आपने पानी भरवाए होगो और फिर जब वहीं बच्चा छोड़ दो होगो, तो फिर दूसरे तालाब को कहाँ प्रयोग हुए हो। अच्छा,
1: दोनों तालाबों में ही छोड़े बच्चा,
0: दोनों में एक संग छोड़े।
1: दोनों में एक संग ही छोड़ दिए।
0: अच्छा। तो वहां में फिर एक दूसरे में जावे आवे को।
1: बीच में तो मैंने एक 4 इंची के पाइप थे आपस में कनेक्ट कर दिए कि हम पानी एक में चलावें,
0: हाँ
1: और वो पाइप में है कि लेवल दोनों बराबर रहवावे। अच्छा
0: अच्छा। तो
1: एक दूसरे में तो बच्चा इधर उधर न जाए, तो आके पाइप के मुंह पे जाली लगा दी एक।
0: अच्छा, जाए नहीं
1: हाँ
0: एक तालाब में
1: ये
0: एक।
1: पानी के विपरीत चलें,
0: हाँ
1: तो पाइप में तो पानी को फ्लो तो एक साइड में ही रहेगा, चूंकि इधर एक ही तालाब में हम सप्लाई रखे,
0: हाँ
1: तो जब या तालाब में तो दूसरे में जाएगा तो एक ही तरफ को बहावे,
0: हाँ
1: तो बच्चा बहाव के विपरीत चलते हुए एक ही तालाब में सब हो जाएंगे इकट्ठे।
0: हाँ बिल्कुल
1: तो
0: सही
1: यह
0: बात
1: वजह
0: है।
1: थे अब जाली लगा दी जाए,
0: तो फिर वहां में जैसे कि पानी फिर बदलते कब होंगे, कह देना
1: पानी
0: पिछले।
1: बदलवे की जरूरत ना पड़े, वो कम होता रहे और वहां हम ताजी पानी चलाते रहें।
0: अच्छा, जैसे जैसे जमीन सूखती रहे
1: जमीन कम सोख है, लेकिन
0: हाँ
1: भाप बन के ऊपर उड़ रहा है
0: हाँ
1: पानी।

0: धूप दे उड़ जाए।
1: हाँ थोड़ा बहुत सूख है हुए
0: चलो जी,
1: तो
0: तो रही बात
1: मार्केट
0: पानी की कि भाई कितना पानी राख हो जाए। अब या कुछ चारे की क्या व्यवस्था करी है आपने?
1: चारे की व्यवस्था ये है कि अब तो फैक्ट्री में डाल रहो, फैक्ट्री में बने भाव है
0: हाँ
1: और वो 40 रुपया किलो तो लेके 60-70 रुपया किलो तक के रेट में आम है,
0: हाँ
1: 25 रुपया किलो तो स्टार्ट हुए। लेकिन हम तो ज़्यादातर घरेलू अपने
0: अच्छा,
1: खाने ये प्रयोग करें,
0: हाँ घरेलू में जैसे,
1: जैसे हम धान करें अपने चावल लेकर करवाए के लाए तो चावल की जो पॉलिश निकले वो
0: अच्छा
1: चावल की पॉलिश,
0: किनकी,
1: किनकी
0: हाँ
1: और सरसों की खली
0: अच्छा,
1: और सब आपके गेहूं को दानों,
0: हाँ
1: जौ को दानों,
0: अच्छा,
1: चुनी चोकर इन सब ने मिला के
0: हाँ
1: 2 दिन करा दो और फिर वह लड्डू बना बना के
0: अच्छा,
1: एक सही टाइम पे,
0: हाँ
1: जैसे हमने टाइम फिक्स कर लियो सुबह को या शाम को
0: हाँ
1: या दोनों टाइम देनो है, तो
0: अच्छा,
1: कोशिश करी जाए कि एक ही टाइम पे दियो जाए, सही टाइम पे
0: हाँ
1: मछली ने पतौरे का भोजन हमारा
0: भोजन आयु बार
1: आवे
0: हो,
1: बार हो,
0: बिल्कुल सही बात है।
1: और निश्चित जगह पे दियो जाए तो वो मछली सब वहाँ इकट्ठी पहले ही अपने समय पे आ जाए।
0: तो यहाँ जैसे प्रजाति को अगर किसान जो देखे कि भैया हमें कौन सी प्रजाति ऐसी डालनी
1: हाँ ये
0: जाके,
1: बहुत मुख्य बात है इसमें,
0: हाँ
1: क्योंकि प्रजाति मछली की विशेषता है कि एक खास प्रजाति एक ही जगह पे भोजन लेगी,
0: अच्छा,
1: जैसे रोहू कतला और मृगला ये 3 प्रजाति हैं, जो कतला है ये बिल्कुल ऊपर की सतह पे थे भोजन खावे,
0: अच्छा,
1: नीचे अगर पड़े रहोगे तो पड़े रहो खावेगी ना,
0: बिल्कुल सही है।
1: तो कतला ले ली हमने 30% या 40% और रोहू वो बीच में खावेगी,
0: अच्छा, जो बीच में
1: जैसे
0: दानो तैर रहो
1: बीच
0: हो।
1: में तानो जो होगो दानो वह बीच में ते खावेगी,
0: अच्छा,
1: और मृगला तली में जो बैठ जाए वह खावे,
0: तली
1: वो
0: में तो
1: ऊपर
0: जाए,
1: आवेगी ना खावे के लिए।
0: हाँ
1: तो ये वेरायटी आपस में चयन करना बहुत जरूरी है, और इनको
0: अच्छा,
1: रेशियो ये है कि कतला 40% ले लो और 30-30% रोहू और मृगला ले लो, तो
0: अच्छा,
1: इनको संतुलन बढ़िया रहे वहाँ पे।
0: बिल्कुल सही है। तो अब जैसे कि मान लो चारों, फिर दिन में एक ही बार देना है,
1: दिन में एक बार या ज़्यादा चाहो तो 2 बार,
0: दो बार,
1: और संतुलित देनो, ज़्यादा खानो देनो मुश्किल है, अगर
0: हाँ
1: आपने ज़्यादा खानो दे दियो तो मछली ज़्यादा खा के मर जाएंगी,
0: नुकसान कर जाए वो।
1: तो इन्हें उतना ही देनो है
0: तो
1: ये।
0: जैसे कि आपने बताई ढाई ढाई बीघा के दो तालाब हमने कर ले, तो फिर एक तालाब में आप जो है कितनों चारों डालते हैं समय पे?
1: जैसे छोटा बच्चा हो, हमने जीरा बच्चा डाले हो तो
0: हाँ
1: वो लेगा अपना जो मान लो हमने 1 कुंटल मछली डाली हम,
0: अच्छा
1: तो 1 कुंटल में हमें 4 किलो खानो देना है,
0: अच्छा अच्छा 1 कुंटल पे 4 किलो,
1: 4 किलो, और
0: अच्छा
1: जब मछली बड़ी है जाएगी
0: हाँ
1: तो फिर 1 कुंटल पे 2 किलो देना है,
0: अच्छा, ये
1: ज्यों ज्यों
0: तो,
1: बड़ी है जाएगी फिर परसेंट बॉडी जिनके शरीर को जो वजन है
0: हाँ
1: 1.5% के लेके और 4% तक भोजन कराए,
0: तो भोजन कम है वो बड़ी है कि?
1: बड़ी है कि वजन बढ़ेगो, मछली है कि मान लो 1 किलो की तो
0: अच्छा
1: 150 ग्राम भोजन खावेगी,
0: हाँ
1: और जो बच्चा 20 ग्राम को है वो अपनों 4% के कितना खावे हो।
0: हाँ सही है। तो फिर ऐसे बताइए कि जैसे कि मछली के छोटे बच्चे ने बड़ी मछली खा जाए तो ऐसा हो जाएगा?
1: ये जो है सब शाकाहारी मछली है,
0: अच्छा,
1: ये नकाऊ बच्चा है अपने खामे नकाऊ और के खामे, ये केवल
0: ये
1: आप
0: बात
1: जो खानो डालोगे शाकाहारी वो शाकाहारी,
0: वही है खाम है,
1: वो दूसरी मछली है
0: हाँ
1: जो मांसाहारी है।
0: तो फिर जगह आपने जो है कितने दिनों में ये बेच बिला कर लें जैके बिक जाए हमारी बाजार में?
1: इन्हें 8 से 10 महीना और 1 साल तक लगे,
0: अच्छा, जब तक आपको पालन करना
1: हाँ
0: है,
1: एक से एक से 1.5 किलो तक की है जहाँ, और
0: हाँ
1: वो रेट सबसे बढ़िया रेट में लेवा टाइम पे।
0: अच्छा, 1.5 किलो की को, तो इनको फिर वहां में तालाब में थे, कब निकलवा में इन्हें, कौन से मौसम में निकलवा में?
1: इन्हें मान लियो आपने फरवरी में डाल दें तो दिसंबर जनवरी में निकाल दें।
0: अच्छा, दिसंबर जनवरी निकलवा के बाजार को भेज दें।
1: अच्छा हम तो अपने ने ताजी पानी, असल में क्या हुआ अगर ज़्यादा ठंड में मछली मर भी डर रहे, हमारे तालाब में जो ना मरा कि हम ताजी पानी छोड़ते रहे हम,
0: अच्छा
1: तो जब सीजन में सब लोग अपने तालाब में खाली करें तो मछली को रेट डाउन है जाए बाजार में,
0: अच्छा
1: वह पीरियड के बाद में अगर आप जनवरी फरवरी में खाली करोगे तो रेट हाई है जाए वो, क्योंकि
0: हाँ
1: मछली रहना है
0: मछली रहना है,
1: और आपने अपनी बचा ली
0: हाँ
1: ताजी पानी डाल डाल के,
0: बिल्कुल
1: तो रेट आप सही मिले वो।
0: जी। तो साल में जैसे कि जब देखो जाए अपने खर्चा काट के सब तरह थे, कितने रुपया की बचत, कितने रुपया मुनाफा है जाए एक साल में जो 1 एकड़ जो मछली
1: सही
0: पे?
1: बात तो ये है कि या मैं जितनी मेहनत कर लोगे उतने पैसा कमा लो,
0: अच्छा
1: या मैं 1 एकड़ में 1 लाख से लेकर 10 लाख तक कमा सको आप।
0: अच्छा जी, हाँ
1: अच्छा हमने कम मेहनत कर पा मैं तो 2.5-3

0: लाख रुपये हमें बचा लें अपने, अगर
1: अच्छा
0: यहाँ में पानी की एरिएशन की सुविधा है जाए, नेक और काम बढ़ा लूँ, घर के दो एक आदमी अपने हों, तो एरिएशन को मतलब है कि हम पानी में ऑक्सीजन बाहर की हवा लेके पानी में दे जाए,
1: अच्छा
0: तो ऑक्सीजन की कमी ना रहे पानी, फिर
1: हाँ
0: वो आर्टिफिशियल हम कृत्रिम ऑक्सीजन दें,
1: अच्छा
0: वास्ते ज़्यादा संख्या में डाली जा सके, जैसे हमने अब तो डाली 5,000, तो वो हम 20,000 उड़ा सकें मछली,
1: अच्छा अच्छा
0: तो
1: अच्छा
0: प्रॉफिट बढ़ जाएगा उतना। तो
1: हाँ वास्तव में जो बीज डालने का है वो जितना ज्यादा बच जाए वो उतना ही ज्यादा पैदावार है
0: जितना
1: जाएगी।
0: बच्चा बड़ा लेंगे उतने ज़्यादा बचेंगे। अब अगर आप जीरो बच्चा डालोगे तो लाखन में लाना पड़ेगा,
1: हाँ
0: 1 लाख डालोगे हम तो 10,000 बचेंगे,
1: जब बचेंगे 10,000।
0: और अगर बच्चा बड़ा होगा तो आपने 5,000 डारे है सके कि 4,500 बच्चे।
1: हाँ हाँ कम नुकसान हुए।
0: हाँ, तो अगर कोई व्यवस्था कर सके तो पहले एक छोटा तालाब बना के वहाँ में बच्चा डालें, और जब बच्चा वहाँ में 2 महीना कह जाए, उन्हें उठा के फिर बड़े तालाब में डाले जाए, तो ये ज़्यादा बढ़िया है।
1: अच्छा अब जैसे कि कोई किसान भैया करना चाहे अपने तालाब बनवाना चाहे मछली पालन करना चाहे तो आगे का जे सरकार की कोई सब्सिडी या कोई सहायता राशि मिलेगा बाबू?
0: सबसे बड़ी सहायता राशि तो यह है कि खेत तालाब योजना आज वो चालू है,
1: अच्छा
0: तो कृषि विभाग में जाके संपर्क करो, भूमि संरक्षण विभाग है एक, वहाँ से खेत तालाब योजना में तालाब ले आओ,
1: अच्छा
0: खुदाई के दाम तो वहाँ से मिल जाएंगे।
1: हाँ
0: फिर मछली विभाग अब कुछ अनुदान दे रहे हैं,
1: अच्छा
0: मछली विभाग में जाके वहाँ चले जाओ राजीव भवन में, वहाँ विभाग में जाओगे तो पूरी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी,
1: हाँ कुछ अनुदान मिल जाए वो
0: अनुदान मिल जाएगा, और
1: कुछ
0: वो प्रशिक्षण देंगे,
1: थोड़ी वो तो
0: वो
1: अपने
0: सिखाई
1: पैसा।
0: देंगे कि आपे कैसे करना है।
1: हाँ प्रशिक्षण दे देंगे जाते के आप आसानी से कर सको और कोई नुकसान हो तो वास्तव में डॉक्टर ने को व्यवस्था वो करवा देंगे।
0: या मैं सबसे बड़ी जो सावधानी की बात है, एक तो तालाब ऐसी जगह बनाओ कि वहां में पानी निकल के बाहर न जाए बरसात में,
1: अच्छा
0: अगर बरसात ज्यादा है गई और तालाब को पानी बाहर चलेगा तो हम तो मछली और बच्चा निकल के भाग
1: सब
0: जाएंगे
1: निकल
0: सब,
1: जाएंगे। हाँ
0: और नदी को पानी ना आ जाए वहां में, नहीं तो
1: अच्छा
0: वहां तो मांसाहारी मछली आ जाएंगी और सब
1: हाँ
0: अन्य खा जाएंगी।
1: ये बात
0: तो तालाब ऐसी जगह बनाना चाहिए कि जहाँ नदी की बाढ़ ना आवे, ओवरफ्लो है कि पानी बाहर न निकल जाए, और रेतीली जमीन में मत बनाओ, रेतीली जमीन में बनाना पड़ जाए मजबूरी हो तो वहाँ नीचे पॉलीथिन बिछा के फिर वहाँ पे 1-1 फुट मिट्टी डाल दो,
1: अच्छा
0: जाते पॉलीथिन सुरक्षित रहेगी और
1: हाँ
0: मछली ने मिट्टी में खाना जो है ज़्यादा आसानी से मिल जाए,
1: अच्छा
0: वहाँ में प्राकृतिक भोजन बन जाए उनके लिए तैयार हो जाए, जो हम खाना ऊपर डाल रहे हो नीचे बैठ जाए तो नीचे मृगला खा लेगी, बीच में आपकी रोहू खा लेगी, और सबसे ऊपर के तरी पे कतला लेती रहेगी।
1: अच्छा तेजपाल जी जैसे कि जो हमारे भट्टा वाले जो लोग हैं जैसे भट्टा के पास जो जमीन हमारी मट्टी उठ जाए वामते वो गहरी है जाए जमीन खूब गड्ढे है जाए वाम तो ऐसी जमीन कामयाब ना है का मछली पालन के काजे?
0: बहुत
1: अच्छा
0: जोर से कामयाब है, बशर्ते कि वहां में कंकर न होनी चाहिए
1: हाँ कंकर नहीं हुए।
0: और पानी रुकना चाहिए,
1: हाँ
0: अगर नीचे तली में रेती निकल आई और पानी नीचे चलेगा तो पानी का नुकसान होगा।
1: ना चिकनी मिट्टी होगी तो रुक जाए
0: चिकनी
1: वो।
0: चिकनी मिट्टी हो, और
1: हाँ
0: चिकनी मिट्टी ना हो तो पॉलीथिन बिछा के वहाँ में, बड़े बड़े
1: हाँ
0: पॉलीथिन आम है अब तो,
1: हाँ
0: उनके ऊपर 6-6, 7-7 इंच मिट्टी डाल के उन्हें ढक दो, और
1: हाँ
0: तालाब में ये तो बहुत अच्छी बात है कि फ्री में तो तुमने गड्ढे मिल गए खुदे खुदाए,
1: हाँ
0: केवल बाउंड्री कराओ
1: हाँ
0: मजबूत
1: बिल्कुल
0: और मछली पालन
1: चूंकि
0: करो।
1: ऐसा हो कि जब भट्टा के काज मट्टी उठ जाए तो वो जमीन ना उपजाऊ रहे बिल्कुल तो वो मछली पालन के काज काम आ जाए तो किसान भैया चुनवा जमीन को सदुपयोग कर ले
0: बिल्कुल
1: मछली पालन
0: करना
1: के।
0: चाहिए, और मैंने तो अपने यहाँ लोगों ने कही है और कुछ उन्हें करिए, लेकिन ज़्यादातर लोग या जो देखेंगे अपने आप है जाएंगे, ये तो लेकिन देख रेख के कोई काम ना हो सफल।
1: हाँ तो आपके फिर इनायत करते जो है या को मछली को जो है अगर बेचनी हो बाजार करना हो तो फिर कैसे आप ले जाओ या ले में आ जाए
0: सही
1: लोग?
0: बात तो यह है कि अगर आपके पास में माल तैयार है, कुछ भी हो, मछली से ना है,
1: हाँ
0: गेहूं जौ चना मछली भैंस
1: साग
0: बकरी
1: तरकारी
0: साग सब्जी कुछ हो तो खरीददार तो खुद आ जाए,
1: अच्छा
0: जब फिर अगर आप लग रही है तो अपने पास अलीगढ़ में मंडी है,
1: अच्छा
0: मथुरा में है, और बहुत बड़ी मंडी गाजियाबाद में है,
1: अच्छा
0: दिल्ली में तो है ही घर पूरे हिंदुस्तान की मंडी,
1: हाँ तो फिर आप तो संपर्क रखते होंगे वो गाड़ी लेके यहीं आ जाते
0: यहीं आ
1: होंगे
0: जाएं, वो जाल लेके आवे अपने आप पकड़ के और खुद ले जाएं तोल के,
1: तो आपको ठेको है यहाँ तो भैया मेरे
0: नहीं
1: में
0: तोल के हिसाब से जाए,
1: तोलते जाएगी।
0: जो मार्केट में उस समय जो रेट होगा
1: हाँ
0: वह रेट के हिसाब से 80 रुपया किलो तो लेके 150 से 250 रुपया किलो तक तो बेचिए
1: अच्छा तो लेबर फिर आपकी रहे या वही लेके आवे
0: ना, वो तो
1: अपने?
0: उनसे तय कर लिया कि अपने आप पकड़ोगे, अपने आप ले जाओगे, अपने आप तोलोगे, हम बस

0: दे देंगे, नोट
1: हाँ
0: करते देंगे,
1: अच्छा, बुई तोलेंगे, बुई ले जाएंगे, बुई निकालेंगे।
0: हमें कहीं हाथ लगाने की जरूरत ना, कलम और कापी लेके बैठे रहो, तोल लिखते रहो।
1: जी, तो सावरी वातन की बाद फिर एक बात और चलते चलते पूछेंगे कि जैसे हमारे किसान भैया परंपरागत खेती कर रहे हैं, तीन फसल ले रहे हैं, गेहूं, धान, मक्का, या फिर बीच में बहुत से भैया मूंग की फसल ले लें, तो इनते कछु मछली पालन करवे पे कछु लाभ ज्यादा आए, या आपने जो सोच के जो मछली पालन करो तो वाकई अपेक्षा जो है मछली पालन में कहाँ ज्यादा फायदा है?
0: देखो, जिन पे छोटी जमीन है उन्हें तो ये करने की जरूरत है नहीं,
1: अच्छा।
0: वो तो अपनी साग सब्जी उगाओ, धान गेहूं में तो गुजर होगी नहीं, धान गेहूं की फसल में तो कोई बचत होनी ना है।
1: हाँ।
0: लेकिन छोटी अगर खेती है तो उसे करने की जरूरत नहीं है। जिनके पास में बीघे, 2 बीघे, 3 बीघे, 5 बीघे जमीन ऐसी है कि हम पे फालतू है, या गड्ढे नवा जमीन है, या हमारे काम में ना आ रही, ऐसी जमीन में तालाब विकसित करके अच्छी कमाई करी जा सके थोड़ी सी देख रेख पे।
1: तो तेजपाल जी, आपने ये मछली पालन के संबंध में जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर।
0: राम राम साहब, राम राम।
2: अभी भैया सुन रहे थे जा भेंट वार्ता कुंजा में जानकारी दे रहे तेजपाल सिंह और इनते बातचीत कर रहे वीरेंद्र सिंह, प्रगतिशील कृषक से मछली पालन के अनुभव के बारे में। भैया, अपनी खेत की माटी की जांच आपने कराई होगी, जांच कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड बना होगा, और वाकई आधार पर ही अपनी खेती में खाद को प्रयोग करें तो अच्छा रहेगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार खाद को प्रयोग करवे ते माटी की उपजाऊ शक्ति बनी रहे, फसल की पैदावार अच्छी होवे और हमारी लागत में हूँ कमी आवे है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड में माटी की जांच के आधार पर पोषक तत्वों की कमी और जरूरी उर्वरक की सही मात्रा की पूरी सलाह दी जावे। और अब चलते चलते आपको सुना दें डोरीलाल गोला के स्वर से सजायो जी एक लोकगीत, चली चली गुरुदेव की रेल बैठी गई सब दुनिया।

चली चली गुरुदेव की रेल बैठ गई सब दुनिया, जा लोकगीत को अपने स्वर ते सजाए डोरी लाल गोला ने। और भैया बात चलवे की है तो अब हमारी जो स्टूडियो में घड़ी लगी भई है वो भी चल रही है और चल चल के हमको इशारो कर रही है कि भैया अब तुमों जा कार्यक्रम को समाप्त करके अपने घर को चलो। तो भैया करें कार्यक्रम को समाप्त और सब भैयान को करें राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

अभी किसान भाई अपना कार्यक्रम सुन रहे थे, किसान वाणी। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत किया रूप किशोर शर्मा ने। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है संध्या वंदन।

संत ज्ञानेश्वर में आपने सुना अनुराधा पौडवाल को। कार्यक्रम का आखिरी भजन हम आपको सुन पा रहे हैं रविशंकर और साथियों की आवाज़ में। फिल्म का नाम है आस्था।

0: फिल्म आस्था के इस भजन के साथ ही संध्या वंदन कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज साहित्यिक। आज श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत आज आप सुनेंगे ब्रह्म मोह लीला का प्रसंग। कथाकार हैं शिवजीत शर्मा।
1: अर्पणमस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्म

आप सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, श्री बचपन बिहारी भगवान की जय। आज बड़े परम सौभाग्य से ये एक सुंदर श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद की कथा मन में आई, और अंतर मन के भाव से ऐसो भाव भयो कि आप समस्त श्रोतान को श्रीमद् भागवत को दसम स्कंद जो ब्रह्म मोह लीला को जो भाव है बाकू सुनायो जाए। या कथा को सुनवे से अंतर मन में भगवान के प्रति बड़ी अच्छी जागृति हो और परमात्मा के प्रति हमारा विश्वास बड़ो मजबूत है जाए, ऐसो हमारे सब संत जन कहें और ब्रजन याकू बड़े भाव से गावें, और ऐसी अत्यंत आनंदमयी लीला को और सास्वादन जब भयो जा समय भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बछड़ान को लेकर के और पधारे हैं बचपन की धाम मई लीला में, बचपन धाम में। और बचपन धाम में पधारने के बाद में श्री ठाकुर जी को बड़ी जोर से भूख लगी है, और जब भूख लगी तो अपने समस्त सखान के मध्य में जो सबसे नितांत विपन्न परिवार से हमारे श्री मधुमंगल जी जो भगवान के बड़े प्रिय सखा हैं उनको इशारो कियो है और अपने पास में बुलायो। श्री ठाकुर जी कहें, अरे मधुमंगल, आज बड़ी जोर से भूख लग रही है,

और हम चाहें कि आपके घर की जो प्रसादी है वो हमें मिले। मधुमंगल को या बात को सुनकर के बड़ो आनंद भयो और मधुमंगल सीधे अपने घर को अपनी माँ के पास में मैया के पास गए। मैया, आज लाल जी ने मेरो बड़ो मान बढ़ायो है। मैया, अपने सभी सखान के मध्य में और बैठ करके मेरो ऐसो सम्मान बढ़ायो और मेरे घर को ही प्रसादी मांगो है। मैया, कछु हो तो बाके खाइबे के ताई दे दे। मैया बोली, बेटा घर में तो कछु है ना है, कन्हैया के ताई कहा दऊं। तो मैया ने विचार कियो, कढ़ी रखी है कई दिन की बनी, भई लाला तू भाई ले जा और देख, या कढ़ी को कन्हैया को खवैयो। तो मधुमंगल ने देखो कढ़ी को, जैसे देखो हो तो मन भी खट्टो है गयो। अब मन में विचार करते मधुमंगल जा रहे हैं और मधुमंगल को ये भाव है हो कि मैं या कढ़ी को ठाकुर जी को कैसे खिलाऊंगो, और बड़ो आनंदमयी भाव यहाँ प्रकट कियो है। और ऐसो आनंदमयी भाव प्रकट कियो है, या भाव में बड़ो सुंदर भाव प्रकट कियो, एक बड़ो सुंदर भाव दियो है अंतर मन में भगवान को ध्यान करते भाई मधुमंगल जा रहे हैं। और जैसे ही पहुंचे हैं, पहुंच करके मधुमंगल ने दूर से देखो, इतनी खट्टी कढ़ी में ठाकुर जी को कैसे खिलाऊंगो, मैं बिल्कुल नहीं खिला सकतो, ये तो मेरो मन खट्टो कर रही है, तो मेरे लाल जी को मन तो और भी खट्टो है जाएगो, मेरे कन्हैया को मन और खट्टो है जाएगो। अब मैं ऐसो चाहूं कि यार मैं ही पी लूं, अगर मैं इस याकू फेंकूं तो भी कन्हैया देख लेगो। और मधुमंगल जल्दी जल्दी में बाकड़ी को पीमन लगे हैं, और जैसे ही पीमन लगे, आचार्य जन बड़ो सुंदर वर्णन करें, उधर भगवान श्री कन्हैया ने बाकू देख लियो और मधुमंगल को आवाज लगाई, अरे मधुमंगल ये काहे रहे हो है। और भगवान ने जैसे ही दौड़ लगाई, मधुमंगल जल्दी जल्दी बाकड़ी को पान कर रहे हैं, और उधर श्री ठाकुर जी जैसे दौड़े और जल्दी जल्दी में कढ़ी मुंह से निकलने लगी है, और भगवान ने आयकर के दोनों हाथ ऐसे लगाए दिए हैं और मुंह से निकलने वाली बा कढ़ी को श्री ठाकुर जी पान कर रहे हैं। या लीला को ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक से आयकर के निहारे हैं और ब्रह्मा जी को या लीला को देख करके मोह भयो है। हमारे आचार्य जन कहें, ऐसो मोह भयो है कि भगवान के ग्वाल और बछड़ा जब दूर निकल गए चरते भये, श्री ठाकुर जी ने देखो मेरे ग्वाल बछड़ा सब कहाँ चले गए। एक एक ग्वाल बछड़ान को जब देखवे जा रहे हैं तो जो जावे वो लौट के ही ना आयो, और सबरे ग्वाल बछड़ा जब ब्रह्मा ने ब्रह्म लोक में ले जाए के सुलाई दिए हैं, चुराए लिए हैं, तो ठाकुर जी ने मन में बड़ा भाव प्रकट कियो। और या समय श्री ठाकुर जी विचार करें कि ये मेरे ग्वाल बछड़ान को कौन ले गयो, और विचार बतायो कि ऐसे समय में श्री ठाकुर जी ने अपने अंतर मन से वही ग्वाल वही बछड़ा सब प्रकट किए, और एक वर्ष तक ब्रज में वही ग्वाल और बछड़ान के रूप में श्री ठाकुर जी विचरण किए। समस्त ब्रजवासी ब्रजांगनाएं ब्रज गोप और गैयान को आनंदित करियो आह्लादित कियो है, और सबको आज बड़ो आनंद आ रहे है कि आज सब अपने बछड़ान के प्रति गैया जो है बड़ो प्रेम करवे लगी हैं, और ब्रज माताएं तो अत्यंत प्रेम करें। या लीला को ब्रह्मा जी बार बार निहारें कि यही ग्वाल बछड़ा ब्रह्म लोक में है और यही ग्वाल बछड़ा यहाँ है। अब इस बात को निहार बे के ताई ब्रह्मा जी जब ब्रह्म लोक से गौलोक धाम में पधारे हैं, तो श्री ठाकुर जी इस लीला को एक वर्ष तक किए और विचार कियो, याने मेरे समस्त ग्वाल बछड़ान को मुंह से दूर कर दियो, याने अपराध कियो है। ऐसो भाव लेकर के ब्रह्मा जी को रूप धारण कर श्री ठाकुर जी और ब्रह्म लोक में पधारे। ब्रह्मा के जो सेवक जन हैं उनको कही है कि भैया आजकल बहरूपिया तो बहुत आए रहे हैं, कोई मेरे रूप में भी बहरूपिया आवे तो बाकू मना कर दियो। ऐसो भाव प्रकट कर स्वयं ब्रह्मा को रूप धारण कर ठाकुर जी विराजे हैं, और जैसे ही ब्रह्मा जी बचवन धाम से गौलोक धाम से लौटे हैं, द्वारपालन ने बाकू रोक दियो है। ब्रह्मा ने जब अत्यंत भाव विनम्र से पूछी कही, तो वहां मालूम पड़ी है कि वो टेढ़ी टांग वालों ब्रह्मा के रूप में बैठो भयो है। अपनी अत्यंत मई प्रार्थना को कियो है और प्रार्थना के भाव से भगवान से क्षमा याचना कर ब्रज आगमन में और ठाकुर जी की शरणागति मांगी है। श्री ठाकुर जी की शरणागति में ठाकुर जी ने उनको क्षमा तो ना कियो, ब्रह्मा जी ने परिक्रमा लगाई है और तकरीबन 40 श्लोकन में बड़ी प्रार्थना करी है। अत्यंत विनम्र भाव से श्री ठाकुर जी के प्रति प्रार्थना को भाव दियो है, और यहाँ बड़ी सुंदर स्तुति को भाव आयो है कि नौ में डये ते अभ्रव पुषे तटिताम्बराय गुजंतावतन संक परिपी न मनोहराय काक पक्ष धराय कपिशांक काय रंगत कटाय नटाय नमो नमस्ते जन्माद्यस्य तोन्वया तितर

0: तत्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। लगभग 40 श्लोकन में प्रार्थना करी है, और हमारे ब्रज भाव में कहें कि ब्रह्मा जी को फिर भी माफ नहीं कियो, ऐसो भाव बतायो है कि श्री ठाकुर जी विचार करें कि भैया तूने मेरे ब्रजजनन को मुँह से दूर कर दियो, पर तेरे दूर करवे में हमारे ब्रजवासियों को लाभ ऐसो भयो कि समस्त जो ब्रज की जो गाय हैं उनको भी कृष्ण के प्रति जो अनुराग पैदा भयो वो ठाकुर जी को देख निहारी। एक दिन श्री ठाकुर जी बछड़ा के भाव में घुटमन पर के गौ माता को दुग्ध पान कियो, तो जो श्यामा गैया को दुग्ध पान करते माँ यशोदा के साथ खरक में देखो अन्य गाय अपनो अंतर्भाव प्रकट की कि ये ठाकुर जी हमारो दुग्ध पान कब करेंगे, यही लीला के समय श्री ठाकुर जी उनको अपनो दुग्ध पान कराए रही हैं। तो ये सब ब्रजवासी और ब्रजमाताएं जब ठाकुर जी को देखो है, जब देखे बिन काना मन नहीं माना, इन आंखों से आज ब्रह्म पहचाना है, इन गोपियों का उल्हाना तो एक बहाना है, कृष्ण पद कमल चरणों में मन को लगाना है, ऐसो अत्यंत भावन ब्रज गोपीन के मन में भयो कि यही लाल जी हमारे आंगन में खेले, तो उनके आंगन में भी ब्रज बालक बन के खेले हैं, और वाई दिन सो हमारे ब्रज में ग्वारिया को पूजन होए, हमारे ब्रज में आज भी ग्वाल और बछरान को पूजन, ग्वारिया को भगवान के रूप में पूजो जाए। हमारे ब्रज में कहावत है कि काऊ की गैया अगर दूध देवे में कछु कोर कसर करे तो 5 ग्वारिया जमाए देव, ऐसो भाव प्रकट कियो है। तो अत्यंत भाव से ऐसी ब्रह्म मोह लीला आज भी ब्रज में सेही बचवन के नामक एक बड़ा दिव्य सुंदर स्थल है, बड़ी पौराणिक स्थल है, जहाँ चतुर्भुज रूप में भगवान ने जो है ब्रह्मा जी को बड़ो अद्भुत दर्शन करायो, और बड़ो अद्भुत दर्शन आज भी वो दिव्य आलौकिक स्वरूप विराज रहो है, अत्यंत सुंदर और दिव्य ऐसा स्वरूप है जो देश विदेशन से सब लोग आमे और बात दर्श को पाए करके अंतर मन की इच्छा पूरी करें और श्री ठाकुर जी के प्रति अनुरक्ति भाव बने, और अत्यंत अनुरक्तिमय भाव में बड़ो आनंद प्राप्त करें। हमारे ब्रजन कहें कि या स्थान पर आए करके ब्रह्मा जैसे को ज्ञान मिलो है तो निश्चित रूप से भक्ति में हम सबको भी अत्यंत आनंद प्राप्त होएगो और खूब आनंद आवेगो। समस्त भक्तजन जाए करके ऐसे स्थान पर एक दिन को निवास करें, और हमारे जो है वैष्णवाचार्य जन तो यात्रा पड़ाव आदि के भाव से वहाँ निवास करें, और वह रात्रि में भगवान को ध्यान करें और ब्रह्म मोह लीला को जब स्मरण करें तो ठाकुर जी के प्रति और भी विश्वास मजबूत है जाए, क्योंकि भक्ति में विश्वास संबंध और समर्पण तीनों ही वहां प्राप्त है जाए। यमुना को पावन पुलिन है, यमुना को पावन उत्तम स्थान, और यहाँ पे बड़ो आनंदमयी स्थान है श्री बचवन पीठ, और यहाँ सुंदर श्री बचवन बिहारी विराजे जाकू छाक मनोरथ को भाव दियो है, जहाँ सब ब्रजजन ब्रज ग्वाल छाक मनोरथ लीला को रस स्वादन करें, और ब्रजवासी सब मिलजुल करके एक दूसरे को खिलावें और एक दूसरे के साथ खावें। हमारे ब्रजजन कहें भैया खाएबे और खिलाएबे को जो आनंद है वो छाकमयी लीला को भगवान ने यहाँ ब्रजवासियों को आनंद प्रदान करायो है, ऐसी बचपन की आनंदमयी लीला बड़ी रसमयी लीला को भाव प्रकट कियो। श्री बचपन बिहारी के बड़े दिव्य दर्शन हैं, यमुना के पुलन में बैठ करके श्री ठाकुर जी ने या वन की शोभा को बढ़ायो है, और नटवर रूप में विराजे हैं, और ब्रह्मा जी ने परिक्रमा आदि कर भगवान से क्षमा मांगी है, और बड़ो आनंदमयी ये भाव प्रकट कियो है। बोलिए बचपन बिहारी भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, आप सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे।
1: अभी आपने सुना ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम। आज आपने आनंद लिया श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत ब्रह्म मोह लीला के प्रसंग का। कथाकार थे शिवजीत शर्मा। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। श्रोताओं, एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुन लीजिए। वनितालोक कार्यक्रम के अंतर्गत हेलो सहेली कार्यक्रम में इस सोमवार 27 जुलाई 2026 को अपराह्न 1:15 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है मस्तिष्क एवं नसों के रोग का कारण एवं निवारण। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर नीलेश गुप्ता। आप हमारे टेलीफोन नंबर 25 30 135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 94 122 25 500

75 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में मस्तिष्क एवं नसों के रोग कारण एवं निवारण से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है मस्तिष्क एवं नसों के रोग कारण एवं निवारण। सूचना समाप्त हुई। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, जिसे हम लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे समेत अन्य मांगे माने जाने के बाद सीजेपी ने प्रदर्शन समाप्त करने का किया ऐलान। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नहीं की जाएगी कोई कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जालौन में 1274 करोड़ रुपए लागत की 374 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। फतेहपुर को दी 489 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। और यूनेस्को ने सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को विश्व धरोहर सूची में किया शामिल। मुख्यमंत्री ने कहा, हर भारतीय के लिए ये गर्व का क्षण। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के बीच आज तीसरे दौर की वार्ता में सीजेपी ने दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में जारी प्रदर्शन को समाप्त करने का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह और सीजेपी प्रतिनिधि मंडल के साथ तीसरे दौर की चर्चा में परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से संबंधित मांगों पर ध्यान केंद्रित किया गया। बाद में नई दिल्ली में सीजेपी प्रतिनिधि मंडल के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री नड्डा ने कहा कि बैठक के दौरान सरकार ने सीजेपी की इस मांग को मान लिया कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने यह भी स्वीकार किया है कि यदि कोई एफआईआर दर्ज की गई है तो उसे वापस ले लिया जाएगा और एफआईआर की प्रतियां भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
1: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन एफआईआर न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: आत्महत्या करने वालों के परिजनों को मुआवजा देने के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार को पूरी सहानुभूति है और सरकार नियमों के अनुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी। इससे पहले सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा भेजने के बाद कहा कि पिछले 10 दिनों से विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं और ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा

0: का विषय नहीं है। श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें और किसी भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जालौन में 1274 करोड़ रुपए लागत की 374 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार में आज जालौन विकास के नए प्रतिमान स्थापित करते हुए अपनी गौरवशाली और नई पहचान को सुदृढ़ कर रहा है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में सोलर एक्सप्रेस वे बन रहा है।
1: बुंदेलखंड में कभी सूखे की मार झेलनी पड़ती थी, ये क्षेत्र बीहड़ था, अंधेरा होते ही पूरे क्षेत्र में आवागमन ठप हो जाता था, लेकिन अब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीहड़ के अंधेरे को एक ओर करते हुए आज इसको विकास की रोशनी में हमारा बुंदेलखंड जगमगा रहा है और जालौन उसका प्रवेश द्वार बनकर के तैयार हो गया है। अब उसको एक नई पहचान बन गई है, देश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बन रहा है हमारा बुंदेलखंड में।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने जनपद फतेहपुर में 489 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 125 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले 12 वर्षों में छात्रों और युवाओं के हित में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
1: आभार व्यक्त करता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आपने छात्रों के लिए, आपने युवाओं के लिए पिछले 12 वर्ष में अनेक कदम उठाए हैं। आपने डिजिटल इंडिया के नाम पर, आपने प्रधानमंत्री स्टार्टअप स्कीम के अधीन आपने भारत के नौजवानों के लिए एक नई आशा की किरण दी। आपने देश के अंदर युवाओं के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति देकर के भारत का नौजवान अब भारत ही नहीं वैश्विक जगत में अपनी दाग को का लोहा मना सकता है, यह व्यवस्था दी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2 दिवसीय दौरे पर आगरा पहुंचे। उन्होंने यहां 342 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 53 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार आगरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। आगरा पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समस्त नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर यह कार्यक्रम सीधे प्रसारित होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करेगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। यूनेस्को ने सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। धरोहर सूची में शामिल किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी व्यक्त करते हुए इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सारनाथ का भगवान बुद्ध से गहरा संबंध है, जिनके ज्ञान, करुणा और सद्भाव के शाश्वत संदेश से विश्व प्रेरित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मान्यता देश की समृद्ध सभ्यतागत और आध्यात्मिक विरासत का सम्मान करती है। श्री मोदी ने कहा कि इससे दुनिया भर के लोग सारनाथ आने और भगवान बुद्ध के आदर्शों से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने पर वाराणसी के निवासी प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि ये काशीवासियों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है।
2: सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाना हम सभी काशीवासियों के लिए अत्यंत हर्ष और गर्व का विषय है। भगवान बुद्ध की प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन स्थली को मिली यह वैश्विक पहचान भारत की समृद्ध संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत का सम्मान है। हम इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री का विशेष आभार व्यक्त करते हैं।
0: केंद्रीय वाणिज्य

0: राज्य एवं उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद कल पीलीभीत के पूरनपुर में ऐशबाग कासगंज एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा बदायूं में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री वर्मा ने आज एक प्रेस वार्ता में बताया कि इस सेवा के शुरू होने से बदायूं और उझानी क्षेत्र के यात्रियों को राजधानी लखनऊ के लिए सीधी रेल सेवा उपलब्ध होगी।
1: उस ट्रेन की हरी झंडी दिखाने का सौभाग्य मिलेगा। हरी झंडी में अपने जो गृह नगर है, होम टाउन है उझानी, उस रेलवे स्टेशन, वो रेलवे स्टेशन उझानी अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना में सबसे पहली योजना में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया था।
0: प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर वर्षा जारी है। कई इलाकों में पिछले 24 घंटों में 25 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई है। वर्षा और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश में कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। बदायूं में गंगा, लखीमपुर खीरी में शारदा और बाराबंकी और अयोध्या में घाघरा नदी खतरे के निशान के पास बह रही है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 27 जुलाई से 31 जुलाई के बीच प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश का अनुमान है।
2: मानसूनी प्रवाह बढ़ने के दृष्टिगत 27 जुलाई से पुनः प्रदेश में मानसूनी सक्रियता बढ़ने से प्रदेश में व्यापक वर्षा के साथ भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे समेत अन्य मांगे माने जाने के बाद सीजेपी ने प्रदर्शन समाप्त करने का किया ऐलान। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नहीं की जाएगी कोई कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जालौन में 1274 करोड़ रुपए लागत की 374 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। फतेहपुर को दी 489 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। और यूनेस्को ने सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को विश्व धरोहर सूची में किया शामिल। प्रधानमंत्री ने कहा, हर भारतीय के लिए ये गर्व का क्षण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार नहीं जा सकते।
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी।

कभी फुर्सत में लिखूंगा तो तमाम खूबसूरत पल जो मैंने सोचे जरूर थे पर जी नहीं पाया। हर एक ख्वाब को जिम्मेदारियों में दबाया, हंसने के बहाने थे बहुत पर हंस न पाया। वक्त की तेज रफ्तार में सब पीछे छूटता गया, जो पास था वही सबसे पहले संभाल नहीं पाया। इन्हीं कुछ पंक्तियों के साथ आज मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो मित्र खुशबू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम में। श्रोताओं, आपकी फरमाइशें हम तक पहुंच रही हैं और सबसे पहली हमने जो फरमाइश ली है किशनगंज बिहार से ली है। इनका नाम है रविंद्र सिंह, रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव, भानु, कीर्ति, वर्षा, सुमन। अगला जो मैसेज हमें मिला है आप सभी का, इंदिरा विहार दिल्ली से डॉक्टर डब्लू अंसारी और डॉक्टर बेबी अंसारी। छत्तीसगढ़ से राम दुलारी प्रजा

प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश चंद्रकांता और शशिकांता प्रजापति का संदेश हमें मिला है। उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवारकर, सरिता प्रणिता सिद्धांत, प्रिंस एकांश, लाडला टुकटुक गवारकर, ये संदेश हम तक आया है। चाईबासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल, शिवांशु, संगीता लिपि और दीपाली गोप का, मोहम्मद बुहारुद्दीन, फजान लल्ला, फरहान लल्ला, समीरा आजमीन गुड़िया, इन सभी का संदेश हमें मिला है। तेलंगाना से दूल्हा उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, काजल, मानवी, लक्ष्य, मोहिनी और बलवीर सिंह हमसे जुड़े हैं। कबीर नगर लोनी से नसीमुल इल्लास गुनौरी और दानिश गुनौरी हमसे जुड़े हैं और ये संदेश हम तक आया है। वर्गल से मोहम्मद खाजा रिजावुद्दीन, मोहम्मद खजा फिसोयुद्दीन, आयशा तबस्सुम और जुबेरिया, हनुमंत शिंदे, संगीता शिंदे, ऋषिकेश और वसुंधरा हमसे जुड़े हैं। सांगली से किसी भी गीति फरमाइश करते हुए पथरिया से मीनू मरावी, लता, अनुराग और अभिनव मरावी हमसे जुड़े हैं। अगला मैसेज गुजरात से हम तक आया है और जी के परमार का ज्योत्सना दीपल और इनके साथ हैं हर्ष, शबनम बानो, अजमा नाज अंसारी, वलीउल्लाह डुमराव बिहार से इनका मैसेज हमें मिला है। बक्सर शहर से राज एसडी अंसारी, बेबी अंसारी, दानिश अंसारी, किसी भी गीत की इन्होंने हमें फरमाइश लिख भेजी है। हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार हमसे जुड़े हैं। ये संदेश हमें मिला है संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राशि और शीतल राजेश का। सुन लेते हैं आप सबकी फरमाइश का ये गीत।

लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में आपने सुना राम तेरी गंगा मैली फिल्म का ये गीत। और अब ले लेते हैं आप सभी के संदेश। इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी गांव गोपी की नगरिया से मिठनलाल सारस्वत, नेहा, नीरज, निकिता और इनके मम्मी पापा। गांव नगलापोला से विजय सिंह, भानु प्रताप, रामानुज, राधिका, पवन, करण, नमन, भोला, डुग्गू और इनके सभी परिवारीजन। गांव नौधरा से कोमल मास्टर, जसुदा, सूरज और इनके मम्मी पापा। हाउसिंग बोर्ड भरतपुर से अजीत, अमित, शिवांश, शिवांगी, चुन्ना और इनके मम्मी पापा। अगली फरमाइश हम तक आई है राशि राजेश की। शीतल राजेश, राजदीप और राजेश साबले पाटिल, संभाजी नगर से इन्होंने हमें मैसेज लिखा है। और ये संदेश हमें मिला है महाराष्ट्र से सुधाकर गायकवाड़, विकास, प्रीति, आशा, दीपांजलि, दीक्षा और शशांक बाघमारे का। अंबाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के सभी सदस्य हमसे जुड़े हैं। ये संदेश हमें मिला है विलासपुर छत्तीसगढ़ से छुन्नूलाल श्रीवास, अनीता पुष्पा, अंजू योगिता, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास बाधवानी का। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता और रिमझिम गुप्ता का ये संदेश हमें अभी प्राप्त हुआ है। दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा का संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ से। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमल अनेजा का संदेश हमें प्राप्त हो चुका है। नरविल महाराष्ट्र से पीएस नवारकर, निर्मला विशाल नवारकर का संदेश हमें मिला है। मलकापुर से आप हैं नारायण इंगले, सोपान और आशीष मुहर्रेकर। ये संदेश हम तक आया है वर्ली मुंबई से नवाब खान, इशरत जहां, मास्टर और मुस्तकीम खान हमसे जुड़े हैं। अगला संदेश हमने लिया है सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम और सभी परिवार के सदस्य। कुमहर हेड़ा सहारनपुर से इन सभी का संदेश हमें प्राप्त हुआ है। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र, नौखीलाल वर्मा का किसी भी गीत के लिए फरमाइश इन्होंने हमें लिख भेजी है।

ये संदेश रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा करुणा वर्मा का आया है। नवाब खान इशरत जहां, मास्टर अजहर खान शोहरत जहां, आजम खान और मुस्तकीम खान हमसे जुड़े हैं और ये संदेश मनाली हिमाचल से आया है। हर्ष विनय विनीत रोजस भाई चंडीगढ़ से, शेफाली शेफी डेविस बिमला और सतीश अनेजा का संदेश हमें प्राप्त हो चुका है। वहीं गुजरात से गांधीनगर गुजरात से आया है ये संदेश। सुरेश राठौर मंजुला विशाल निशा हमसे जुड़ चुके हैं। मलकापुर से संजय पाटिल उषा प्रथमेश निवृत्ति संजय चौहान का संदेश हमें प्राप्त हो चुका है। गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी मोहम्मद अयान अंसारी मोहम्मद उस्मान अंसारी यासीन हाशमी शमसुल कमर राही जहीरा बेगम उत्तम कुमार भगत किसु तासु अर्णव सत्यम आनंद श्वेता भगत हमसे जुड़े हैं झारखंड से। किसी भी गीत के लिए फरमाइश देकर के अगला संदेश हम तक आया है। चकुनंटी बुलंदशहर से सईद अब्बासी निघत परवीन अब्बासी शाहनवाज सरफराज फरदेन सुहान अजान अब्बान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य हमसे जुड़े हैं। प्रवीण सोनी पूजा पायल जगदीश जोहरी गुजरात गांधी ग्राम से इन सभी का मैसेज हमें पुनः प्राप्त हो रहा है। बलकरण वर्मा अंजनी ज्योति प्रहलाद राजेंद्र उमेश प्रमिला वंछोर छत्तीसगढ़ से इन्होंने संदेश हमें लिखा है। मुकेश शर्मा गौरव गरिमा शर्मा हमसे जुड़े हैं भिलाई छत्तीसगढ़ से। ये संदेश हम तक आया है। नबी हसन अब्बासी शहनाज नवेद हसन सुहेल हसन अनम यसव रसीद वारसी सिद्धपुरा टाउन से जुबेर अली खान सबीहा अंजुमन खान हमसे जुड़े हैं। किसी भी गीत की फरमाइश करते हुए एक बार पुनः इन्होंने हमें मैसेज भेजा है। आपका मैसेज हमने पढ़ लिया है। ये मैसेज हमें मिला है कलानौर से नरेंद्र शर्मा किरण नितिन और मयंक शर्मा का। ओम कुमार आरती कुमारी विद्या आराध्या कुमकुम विजय सुरलकर महाराष्ट्र से इन सभी का मैसेज हमें मिला है। नबी हसन अब्बासी इन सभी का फिर से हमें मैसेज मिला है तो कृपया करके दोबारा मैसेज ना करें। अमरावती से सिद्धार्थ गोड़ा ने अर्चना ताई हीरा मणि और प्रणय सिद्धिकी प्रतिभा गोड़ा ने हमसे जुड़े हैं। लक्ष्मण राव लोखंडे कल्पनाताई शैलेश प्रतीक्षा स्वप्निल रक्षिता रियांश और पूरा लोखंडे परिवार हमसे जुड़ा है। यवतमाल महाराष्ट्र से संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव ज्योति यादव और इनके साथ हैं ओजस्वी यादव। फनीश कुमार चंदन छत्तीसगढ़ से हमसे जुड़े हैं। सावित्री देवी मोहित देविका गजेंद्र हेयांश कुमार खतीजा बेगम मोहम्मद इसहाक छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से हमसे जुड़े हैं। मोहम्मद अशफाक आफरीन कौसर मोहम्मद अल्ताफ और निलोफर फातिमा किसी भी गीत की फरमाइश करते हुए महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर विजयालक्ष्मी राजेश राकेश रिशिता रामलाल चंद्रवंशी कृष्णा चंद्रवंशी आकली दीवान मध्य प्रदेश से इन्होंने हमें ये संदेश लिखा है। आरसी कामड़े करुणा मीना अश्विनी और विपुल कामड़े हमसे जुड़े हैं जवाहर नगर दुर्ग से। धन्यवाद आप सभी का। लक्ष्मी देवी योगेश कुमार संध्या मुरलीधर साहू कीर्ति कुमार और डीकेश इन सभी का मैसेज रसीड़ा से हमें प्राप्त हुआ है। गुलाम साबिर राही मेहरहा जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह ज्योति सिंह रोहतास बिहार से सोनम सिंह और अनामिका हमसे जुड़े हैं। सुन लेते हैं आप सबकी फरमाइश का अगला गीत। फिल्म का नाम है हंसते जख्म और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने।

अगली पसंद करता है उत्तम कुमार बघेल, रुकमणी बघेल, साहिल भारती। इनका संदेश हमें मिला है पंडरिया छत्तीसगढ़ से। ये मैसेज हमें मिला है आप सभी का। सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से इन्होंने लिखा है। हर्षिता रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी कान्हा, मनोहर बाई बागरी, प्रभुलाल बागरी, सत्यनारायण कपिल, शोभा फुनदी बाई बागरी का संदेश हमें मिला है। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गुगनेजा, पूनम गंगा नेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमिता ऊजा का संदेश हमें मिला है। अगला संदेश हमें मिला है आप सभी का। आप हैं महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से। सुन लेते हैं आप सबकी फरमाइश का ये गीत।

हंसते जख्म, अभी आपने सुना इस फिल्म का गीत। और अब ले लेते हैं आप सभी के संदेश। ये मैसेज हमें मिला है शाहदरा दिल्ली से। तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष, चैतन्य मेघा मस्कीन, पंचकूला चंडीगढ़ से राहुल खुराना रचिता और केशु रिधान खुराना का संदेश हमें मिला है। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर और आरती कुमारी हमसे जुड़े हैं। अगला मैसेज हमने लिया है पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण, मुनीश और राहुल शर्मा का।

इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी कल्याण मुंबई से किशोर हिवराले, सुजाता प्रतीक हिवराले ने। दरियापुर भावली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप अशोक, शेरी बड़ने।

0: अभी आपने सुना जुर्म फिल्म का गीत, और इसी के साथ शाम सुहानी कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। FM 2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी, FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम इस सप्ताह संसद में। इस कार्यक्रम का अनुप्रसारण हम करेंगे दिल्ली केंद्र से।
1: इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के मॉनसून सत्र का ये पहला सप्ताह था और इस दौरान दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए भारी हंगामा किया। इस वजह से पूरे सप्ताह दोनों सदनों में गतिरोध बना रहा और कोई अहम विधायी कामकाज नहीं हो सका। हंगामे की वजह से दोनों सदनों में शून्यकाल और प्रश्नकाल भी नहीं चल सके। सत्र के पहले दिन यानी सोमवार को लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तथा राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर प्रश्नकाल में हंगामा किया, जिसके कारण कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू कराया, विपक्षी सदस्य हाथ में तख्तियां लेकर आसन के पास आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही ओम बिरला ने सदस्यों से कहा कि लोकसभा सर्वोच्च संस्था है और यहां चुनकर भेजे गए सांसदों से लोगों की अपेक्षाएं हैं, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। सदन में हंगामा नहीं थमते देख उन्होंने कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर भी हंगामा जारी रहा और कार्यवाही दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 1 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के बाद 2:30 बजे जैसे ही शुरू हुई, विपक्षी सदस्य नारेबाजी करने लगे। हंगामा देखते हुए सदन की कार्यवाही पहले 3 बजे तक और फिर दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। विपक्षी सदस्यों ने परीक्षाओं में कथित अनियमितता, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण राज्यसभा की बैठक 5 बार के स्थगन के बाद दोपहर करीब 2:30 बजे पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सत्र के प्रारंभ में अपनी संक्षिप्त टिप्पणी में सदस्यों से उच्च सदन की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने का आह्वान करते हुए आग्रह किया कि वे कामकाज के समय से निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान से देश और लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी होती है। किंतु उनकी इस अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और सदन में हंगामा जारी रहा। इससे पहले पूर्वाह्न 11 बजे सत्र के पहले दिन राष्ट्रगान के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। सभापति ने नवनिर्वाचित 9 सदस्यों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। इसके बाद सदन में 4 दिवंगत पूर्व सदस्यों बलबीर पुंज, स्वप्न साधन बोस, रंगासाई रामकृष्ण और एच हनुमंथप्पा के साथ ही कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को श्रद्धांजलि दी गई। सदन में आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखे जाने के बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट यूजी 2026 प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे को उठाने की कोशिश की। खड़गे जब अपनी बात रख रहे थे तभी विपक्षी सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारे लगाने लगे। हंगामे के बीच सभापति राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। 1 बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सदन में वही नजारा था। सभापति ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा रुकते न देख सभापति ने बैठक 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12:30 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्षी सदस्य जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन और उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी करने लगे। वे अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर भी नारे लगा रहे थे। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के

बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12:50 तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक के दोपहर 12:50 पर फिर शुरू होने पर सदन में वही नजारा देखने को मिला। हंगामे के कारण सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 2 बजे बैठक शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि संसद चर्चा करने के लिए है और यहां चर्चा एवं संवाद होना चाहिए। अपनी बात का असर न होते देख उन्होंने बैठक को 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सदन की कार्यवाही जब दोपहर 2:30 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्षी दलों के सदस्यों ने फिर से हंगामा शुरू कर दिया और बैठक 1 मिनट के भीतर ही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। मंगलवार को भी नीट पेपर लीक तथा अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्वान्न 11 बजे अध्यक्ष बिरला ने जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की, विपक्षी दलों के सदस्य नीट पेपर लीक और अन्य मुद्दों को लेकर नारेबाजी करने लगे। बिरला ने हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। 12 बजे बैठक फिर शुरू हुई तो विपक्षी सदस्य तख्तियां और बैनर लेकर आसन के पास आ गए और नारेबाजी की। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने हंगामे के बीच आवश्यक विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और सदस्यों से शून्यकाल चलने देने की अपील की। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अपराह्न 2 बजे भी सदन में वही नजारा दिखा और कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज का मुद्दा छाया रहा। इसे लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण उच्च सदन की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्वाह्न 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन पर उन्हें सदन की ओर से शुभकामनाएं दी। इसके कुछ देर बाद ही सदन में हंगामा शुरू हो गया। सदन में हंगामे को देखते हुए सभापति राधाकृष्णन ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे बैठक शुरू होने पर भी शोरगुल जारी रहा और उन्होंने कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इसके बाद 2 बजे भी हंगामा नहीं थमा और उपसभापति हरिवंश ने 1 ही मिनट के भीतर बैठक को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया। बुधवार को भी संसद में हंगामा जारी रहा। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि देश के युवाओं के लिए सार्थक चर्चा हो इसके लिए सरकार तैयार है। हंगामे के कारण कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे दोबारा शुरू होते ही विपक्षी दल फिर हंगामा करने लगे और कुछ सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। कई विपक्षी सदस्य तख्तियां लिए हुए थे। कांग्रेस सदस्य विरोध स्वरूप काले कपड़े पहने थे। सदन में हंगामा देखते हुए कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। 2 बार के स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद तेन्नेटी ने हंगामे के बीच जरूरी कागजात सदन के पटल पर रखवाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी के खिलाफ महिला सांसदों के बारे में अभद्र टिप्पणी किए जाने की लिखित शिकायत मिली है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रस्ताव किया कि महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के आरोप में कल्याण बनर्जी को सत्र की शेष अवधि से निलंबित किया जाए, जिसे सदन ने ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया। तेन्नेटी ने प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद कल्याण बनर्जी को सदन से बाहर जाने का आग्रह किया और सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में बुधवार को भी नीट प्रश्न पत्र लीक मामले और छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गतिरोध जारी रहा। हंगामे के बीच सरकार ने कहा कि वो नीट प्रश्न पत्र लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। वहीं विपक्ष इस चर्चा को नियम 267 के तहत कराने की मांग पर अड़ा रहा। विपक्ष ने यह भी कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही इस विषय पर चर्चा हो सकती है। इस मुद्दे पर हंगामे के बीच उच्च सदन की कार्यवाही 3 बार बाधित होने के बाद अपराह्न 3 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्वान्न 11 बजे जब सदन की बैठक शुरू हुई तो सदस्यों ने सिक्किम में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना की सुरंग में हुए हादसे में मारे गए 20 लोगों के सम्मान में कुछ क्षण का मौन रखा। बाद में विपक्षी सदस्यों ने अपने अपने मुद्दे उठाने चाहे। विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उनकी बात शुरू होते ही सत्ता पक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। इसके जवाब में विपक्षी सदस्यों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस के अधिकतर सांसद काली शर्ट और काला कुर्ता पहनकर सदन पहुंचे। खड़गे की बाह में काले रंग की पट्टी बंधी थी। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बार के स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने कार्रवाई को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे को लेकर हंगामा करने लगे।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक सहित हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले तो चर्चा की मांग करती है और फिर नारेबाजी करके सदन को बाधित करती है, जो ठीक नहीं है। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्षी सदस्यों के आचरण की निंदा करते हुए कहा कि ये जो इंडी गठबंधन है, इसका व्यवहार प्रजातंत्र विरोधी है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चर्चा तब तक संभव नहीं है जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते। इस दौरान सदन में हंगामा तेज हो गया और हरिवंश ने बैठक अपराह्न 3 बजे के लिए स्थगित कर दी। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3 बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और उपसभापति ने सदन में व्यवस्था न बनते देख बैठक को पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। बृहस्पतिवार को भी संसद में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष ने नीट मुद्दे पर हंगामा किया। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस तरह शोरगुल करने से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। सरकार पेपर लीक पर सदन में चर्चा कराने को तैयार है। शोरगुल थमता न देख उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बार के स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू हुई तब भी विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। हंगामे के बीच ही संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक करने वालों और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ त्वरित अदालतों के जरिए सख्त कार्रवाई करने की पहले ही घोषणा कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष हंगामा कर चर्चा से भागना चाहता है। राज्यसभा में भी मानसून सत्र के 4th दिन गतिरोध कायम रहा। उच्च सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि जून और जुलाई के दौरान देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, भूस्खलन जैसी आपदाओं में कई लोगों की जान चली गई। सदस्यों ने इन प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में अपने स्थानों पर खड़े होकर कुछ क्षण मौन रखा। इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने प्रश्न पत्र लीक होने के मुद्दे पर हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार आज ही नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को बहस के लिए कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज ही कहा है कि पेपर लीक मामले के दोषियों को शीघ्र दंड दिलाने के लिए त्वरित अदालतों की स्थापना की जाए। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन ने कहा कि इस विषय पर चर्चा शुरू होने से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, तभी चर्चा शुरू हो सकेगी। सत्ता पक्ष ने इस पर कड़ा विरोध जताया। दोनों पक्षों की नारेबाजी जारी रहने पर सभापति राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बार के स्थगन के बाद शाम करीब 3 बजे सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। शुक्रवार को भी संसद में गतिरोध बना रहा। लोकसभा की बैठक शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को करगिल दिवस के बारे में सूचित करते हुए कहा कि करगिल विजय दिवस हम 26 जुलाई को मनाते हैं, लेकिन उस दिन अवकाश होने की वजह से इस संबंध में सदन को आज ही अवगत करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह दिन हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, अप्रतिम शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। इसके बाद उन्होंने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। अध्यक्ष के बार बार आग्रह के बाद भी हंगामा नहीं थमा, तब कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही 1 बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे जैसे ही दोबारा शुरू हुई, विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच ही पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो विपक्षी दलों को चर्चा के लिए तैयार हो जाना चाहिए, लेकिन सदन में हंगामा जारी रहा और सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण गतिरोध बना रहा। पूर्वाह्न 11 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने 26 जुलाई को मनाए जाने वाले करगिल विजय दिवस का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर यह सदन उन वीर शहीदों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सभापति ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा। इस बीच विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 1 बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आसन की अनुमति से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। उपसभापति ने विधेयक पर चर्चा शुरू कराने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अभी आप संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

0: This is आकाश
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है संवेद स्वरों में देश गान।

अभी आप सुन रहे थे कुछ देशभक्त परक रचनाएं FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज हम आपको सुनवा रहे हैं राज फिल्म के कुछ गीत।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। श्री रिजिजू ने देश के शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने और लाखों युवा विद्यार्थियों को हर निर्णय के केंद्र में रखने के लिए श्री प्रधान के ईमानदार प्रयासों की सराहना की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहलों के माध्यम से भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
2: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
1: श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग स्वीकार कर ली है।
3: सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी

0: एक्शन एफआईआर ना हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
1: नीट यूजी पेपर लीक के बाद

0: नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमों तथा विनियमों के अनुरूप अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
1: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: परीक्षा सुधारों पर सीजेपी के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यह बात कही।
2: कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि सोमवार को संसद के वर्तमान सत्र का दूसरा सप्ताह प्रारंभ होगा, आप इस समस्या पर और आपके द्वारा जो भी विषय रखे गए जब सरकार संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है तो आप सोमवार से संसद की चर्चा में भाग लेंगे अथवा पुनः चर्चा से भागेंगे।
0: श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार से देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। नई दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छात्रों की जीत बताया। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी विजेंद्र कुमार गुप्ता और उसके सहयोगी इंद्रजीत विनय कुमार सिंह को भिवंडी की एक अदालत ने 30 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दोनों को बिहार के समस्तीपुर से गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि पेपर लीक माफिया इन्हीं पार्टियों की देन है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कानून ला रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। यात्रा के अंतिम चरण में उन्होंने रोमानिया के राष्ट्रपति निकुशो डान के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से व्यापक चर्चा की। बुखारेस्ट में उन्होंने भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया।
3: भारतीय प्रवासी समुदाय एकजुट होकर रोमानिया में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए। भारतीय आईटी इंजीनियरिंग स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तथा विद्यार्थियों की नई पीढ़ी अब रोमानिया को अपना घर बना रहे हैं। रोमानिया की अर्थव्यवस्था और समाज में अपना योगदान तथा यहाँ भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रसार के लिए आपके प्रयास आपको भारत का सच्चा प्रतिनिधि बनाते हैं।
0: विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में सिंगापुर के कानून मंत्री एडविन टोंग एससी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मेघवाल ने दोनों देशों के बीच कानूनी सहयोग मजबूत करने, वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और संस्थागत तथा न्यायिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सरकार नियमित संवाद और रचनात्मक परामर्श के माध्यम से कर्मचारी संगठनों के साथ जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध भारतीय डाक कर्मचारी संघ के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही। डॉक्टर सिंह ने बताया कि लगभग 3 दशकों से लंबित कई पुरानी सेवा संबंधी शिकायतों का समाधान पारदर्शी और कर्मचारी केंद्रित संचालन के माध्यम से किया गया है। रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने आज नई दिल्ली में लघु उद्योग भारती फार्मा कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन किया। श्री नड्डा ने कहा कि भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर राष्ट्र निर्माण का एक प्रमुख स्तंभ है जो नवाचार को बढ़ावा देता है, रोजगार सृजित करता है और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सारनाथ भारत की शाश्वत आध्यात्मिक और दार्शनिक विरासत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे दुनिया भर के लोग सारनाथ आने और भगवान बुद्ध के आदर्शों से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सारनाथ मानवता के लिए भारतीय सभ्यता के गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक योगदान को दर्शाता है। ओडिशा के पवित्र नगर पुरी में ग्रैंड रोड पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा देश विदेश से आए श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पुरी में ग्रैंड रोड पर अपने शानदार रथों पर विराजमान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा आज पवित्र सोना वेश, स्वर्ण वेश में बेहद भव्य लग रहे हैं। उन्होंने बेहद खूबसूरती से बने मुकुट, हार, बाजूबंद, झुमके और अन्य पारंपरिक आभूषण पहने हैं। सालाना रथ यात्रा की सबसे भव्य रस्मों में से एक इस पवित्र स्वर्ण वेश के दर्शन के लिए आम लोगों को आधी रात तक का समय मिलने का उम्मीद है, जिससे लाखों भक्त इन तीनों पवित्र देव रूपियों की दिव्य भव्यता के दर्शन कर सकेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: लद्दाख में 27वें करगिल विजय दिवस समारोह का पहला दिन आज शाम द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक पर आयोजित शौर्य संध्या समारोह के साथ संपन्न हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्रास पहुंचे और समारोह में शामिल हुए। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री ने करगिल शहीदों के परिजनों को श्रद्धांजलि अर्पित कर ऑपरेशन विजय के वीर योद्धाओं के सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। आकाशवाणी कल करगिल विजय दिवस के अवसर पर पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत करगिल युद्ध के वयोवृद्ध और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह से बातचीत प्रसारित करेगा। कार्यक्रम का प्रसारण कल दोपहर 12:30 बजे 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर होगा। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी ने 1200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की है। इससे 3000 लीटर से अधिक डीजल की खपत कम हुई है। इस रेलगाड़ी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई को जींद और सोनीपत के बीच रवाना किया था। ये परियोजना भारतीय रेलवे के नेतृत्व में एक स्वदेशी पहल है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने सोने की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 27 किलो से अधिक विदेशी सोना जब्त किया है और 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस सप्ताह देश भर में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए गए। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में कल अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में भी अगले दो दिन के दौरान तेज बारिश की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कल तेज वर्षा होने की आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में सोमवार तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम में बाढ़ से हुई जानमाल की हानि और तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने इस आपदा से प्रभावित सभी लोगों की सुरक्षा और बचाव, राहत और पुनर्वास कार्यों में लगे सभी कर्मियों के कुशल मंगल की कामना की। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरा देश असम के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। और अब बात खेलों की। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर सिमट गई। ईशान किशन ने शानदार 81 रन की पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत ने 2-0 की बढ़त बना ली है। अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में उनका सामना आज रात मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

प्यार, इश्क और मोहब्बत, अभी आपने सुना इस फिल्म का गीत, स्वर दिया था शान ने। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, आशिकी फिल्म से हमने ये गीत लिया है। स्वर दिया है कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल ने।

संपन्न होता है। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती। इस कार्यक्रम का अनुप्रसारण हम करेंगे दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: दोस्तों विज्ञान भारती के आज के अंक में मैं संकल्प मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। विज्ञान जगत की बात करें तो ये महीना भारत के लिए उपलब्धियों से भरा रहा है। इन्हीं उपलब्धियों को कार्यक्रम में पिरोते हुए आज की पहली भेंटवार्ता में हम प्रोफेसर विनीत विश्नोई से जानेंगे हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में। आज ही के कार्यक्रम में रेयर अर्थ मटेरियल के रहस्य को सुलझाएंगे डॉक्टर नवनीत कुमार कर्ण। दोस्तों 25 जुलाई को विश्व IVF दिवस मनाए जाने के अवसर पर IVF विशेषज्ञ डॉक्टर आकृति गुप्ता बताएंगी क्या होती है IVF तकनीक। इसी कार्यक्रम में आगे बाघों के संरक्षण के महत्व और नवीन तकनीकों की जानकारी देंगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक डॉक्टर साकेत बड़ोला। कार्यक्रम के आखिरी छोर पर जानेंगे उत्तराखंड की नई विज्ञान तकनीक और नवाचार नीति के बारे में यूकॉस्ट के निदेशक डॉक्टर दुर्गेश पंत से। और फिर अंत में जुलाई माह से जुड़े प्रमुख वैज्ञानिक और वैज्ञानिक घटनाओं की जानकारी देंगी रितिका बिंजोला। कार्यक्रम में ये सब कुछ होगा, लेकिन आइए पहले सुनते हैं रितिका बिंजोला से ताज़ा विज्ञान समाचार।
1: जुलाई 2026 को भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। हैदराबाद स्थित निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने अपने आधुनिक विक्रम 1 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया। मिशन आगमन के तहत श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 12 बजे उड़ान भरने वाले इस रॉकेट ने पेलोड्रस को सफलतापूर्वक 450 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित कर दिया है। इस ऐतिहासिक लॉन्च के साथ भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जिसके पास ऑर्बिटल क्षमता वाले रॉकेट लॉन्च करने वाली अपनी खुद की निजी कंपनी मौजूद है। 17 जुलाई 2026 को भारत ने पर्यावरण अनुकूल परिवहन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन नमो ग्रीन रेल की शुरुआत की। हरियाणा के जींद से सोनीपत रूट पर रवाना की गई ये स्वदेशी ट्रेन पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त है, क्योंकि ये पारंपरिक डीजल के बजाय हाइड्रोजन से चलती है और इसके इंजन से धुएं की जगह केवल जल वाष्प यानी वाटर वेपर निकलता है। हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज मिशन के तहत शुरू की गई इस तकनीक से भारत अब जर्मनी और चीन जैसे चुनिंदा देशों के विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया है, जो देश के नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को हासिल करने में मददगार साबित होगा। अब चलते हैं चीन की ओर। 17 जुलाई से शंघाई में आयोजित वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2026 में ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने सभी को हैरान कर दिया। यहां 400 से अधिक ह्यूमनॉइड यानी इंसानों जैसे रोबोट एक साथ प्रदर्शित किए गए। कोई लोगों का स्वागत कर रहा था, कोई सामान उठा रहा था, तो कोई बातचीत कर रहा था। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में ऐसे रोबोट अस्पतालों, कारखानों, घरों और बुजुर्गों की देखभाल जैसे कई क्षेत्रों में हमारी मदद कर सकते हैं। 14 जुलाई 2026 को भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर अनिल मेनन कजाकिस्तान से बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से रूसी सोयुज M29 अंतरिक्ष यान के जरिए सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए रवाना हुए। पेशे से आपातकालीन चिकित्सक डॉक्टर मेनन का ये पहला अंतरिक्ष मिशन है, जिसके तहत वे करीब 8 महीनों तक ISS पर रहकर अंतरिक्ष में मानव स्वास्थ्य सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में चिकित्सा तकनीकों और वैज्ञानिक प्रयोगों पर शोध करेंगे। उनकी ये ऐतिहासिक उपलब्धि दुनिया भर के उन करोड़ों युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है जो विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। 15 जुलाई 2026 को भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र में एक बड़ी तकनीकी क्रांति हुई, जहां घरेलू स्टार्टअप वेमेग लैब्स ने देश की पहली वर्चुअल मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर का सफल अनावरण किया। इस अत्याधुनिक मोटर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बिना किसी महंगे रेयर अर्थ मैग्नेट दुर्लभ पृथ्वी चुंबकीय तत्वों के काम करती है, जिससे विदेशों पर निर्भरता खत्म होती है। इसके बजाय ये स्वदेशी तकनीकी जैसे तांबे की कुंडलियां, कॉपर कॉइल जिसे हम कहते हैं, और एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है जो चुंबकीय प्रभाव को पैदा करता है, जिससे EV उत्पादन लागत में भारी कमी आएगी। चलिए अब सीधे रुख करते हैं गहरे और अनसुलझे ब्रह्मांड की ओर। 21 जुलाई 2026 को खगोलविदों ने एक ऐसी खोज की है जिससे पता चला है कि अंतरिक्ष में एक विशाल जुपिटर यानी बृहस्पति के द्रव्यमान जितने बड़े ऑब्जेक्ट की

0: खोज हुई है, जिसे एक एग्जोसैटेलाइट या अनोखा चांद कहा जा रहा है। ये खोज ब्रह्मांड में ग्रहों, चंद्रमाओं और हमारी पुरानी परिभाषाओं को चुनौती दे रही है। 21 जुलाई 2026 को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक अभूतपूर्व खोज करते हुए एक मामूली सिलिकॉन चिप को डीएनए राइटिंग मशीन में बदल दिया। ये आधुनिक चिप पानी और बिजली की मदद से एक साथ कई जटिल डीएनए सीक्वेंस लिख सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तकनीक से भविष्य में डेटा स्टोरेज की दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी, जहां कंप्यूटर का डेटा किसी पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क के बजाय सुरक्षित जैविक डीएनए में स्टोर किया जा सकेगा। वहीं 22 जुलाई 2026 को सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के डॉक्टर रॉबर्ट नोबल और उनकी टीम ने कैंसर के इलाज में क्रांतिकारी बदलाव लाते हुए इवोल्यूशनरी थ्योरी और मैथमेटिकल मॉडलिंग पर आधारित एक नई रणनीति विकसित की है, जिसमें एडिटिव थेरेपी का उपयोग कर ट्यूमर को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। ये नई पद्धति पारंपरिक उपचार के विपरीत कैंसर कोशिकाओं में दवा प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस विकसित होने से पहले ही दवाओं को तेजी से बदलकर ट्यूमर को लाचार बना देती है, जिससे प्रोस्टेट और ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती ट्रायल में ही बेहद सकारात्मक परिणाम इनके सामने आए हैं। डॉक्टर नोबल की टीम ने यह साबित किया है कि अगर ट्यूमर को संभालने का मौका दिए बिना सही समय पर यानी थेरेपी के खिलाफ रेजिस्टेंस विकसित होने से पहले ही दवाओं को तेजी से बदल दिया जाए तो कैंसर कोशिकाएं पूरी तरह लाचार हो जाती हैं और हमेशा के लिए खत्म हो सकती हैं।
1: 18 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इस उद्घोष के साथ भारत ने आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाई है।
2: आज ही हरियाणा के जिंद से सोनीपत के लिए देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन भी शुरू हुई है। क्लीन फ्यूल पर चलने वाली ये ट्रेन एक बहुत बड़ी शुरुआत है।
1: भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली ये ट्रेन न सिर्फ ईंधन आयात की मुक्ति के सपने की ओर एक कदम है, बल्कि विज्ञान जगत में भारत की ओर से एक नए कीर्तिमान का भी प्रतीक है। आइए जानते हैं डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून में रसायन विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर विनीत विश्नोई से आसान भाषा में, आखिर ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल है क्या।
3: हाइड्रोजन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने हाइड्रोजन फ्यूल सेल में, वो एक बेसिक केमिकल रिएक्शन पर आधारित है, जिसमें कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाकर पानी बनता है। तो ये रिएक्शन एक सामान्य रासायनिक क्रिया है जिसका उपयोग हम करते हैं विद्युत ऊर्जा को बनाने में। अब यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल के अंदर में दो इलेक्ट्रोड्स हैं, या कह लीजिए आप दो सिरे हैं। एक सिरे पे हम हाइड्रोजन देते हैं और दूसरे सिरे पे हम वातावरण से ऑक्सीजन लाकर देते हैं। दोनों का जब रिएक्शन होगा तो पानी बनेगा। कार्य करने का तरीका इसमें ऐसा है कि हाइड्रोजन को पहले जो है जिस इलेक्ट्रोड पर वो पहुंचती है वहां पे एक कैटलिस्ट दिया हुआ है प्लेटिनम, और जब प्लेटिनम के संपर्क में वो हाइड्रोजन गैस आती है तो उसका विखंडन होता है, वो मॉलिक्यूलर रूप से आयनिक रूप में प्रवेश करती है, और इस प्रक्रिया में उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद प्रोटॉन बन जाती है वो गैस, और प्रोटॉन जो है वो दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर चलना शुरू कर देती है। यहां बीच में एक झिल्ली होती है जो विशेष रूप से इस क्रिया के लिए बनाई गई है, जिससे पार होकर प्रोटॉन जा सकते हैं, मतलब इट इज सेलेक्टिवली फॉर द प्रोटॉन ट्रांसफर। तो प्रोटॉन इधर से निकलकर दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाते हैं और वहां पर जाकर वो ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं। वो जो इलेक्ट्रॉन छोड़कर प्रोटॉन निकल के गया था, वो इलेक्ट्रॉन बाहरी तार से, जो दो इलेक्ट्रोड को जोड़ने के लिए हमने बाहर तार लगा रखा है, जो हम सर्किट कहते हैं, उसमें हम कोई भी उपकरण लगा सकते हैं, उस तार में वो इलेक्ट्रॉन बहने लगते हैं और ये विद्युत का स्वरूप है, और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। तो एक प्रकार से कह लीजिए एक छोटा सा एक इलेक्ट्रिक जनरेटर है जिसमें हम हाइड्रोजन का उपयोग करके बिजली पैदा कर रहे हैं।
1: इस ट्रेन को ग्रीन हाइड्रोजन से चलाया जा रहा है। कैसे बनता है ये ग्रीन हाइड्रोजन, इस पर प्रोफेसर विनीत कहते हैं,
3: जब हम किसी भी चीज को बनाते हैं तो उसमें हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ऊर्जा को पाने के लिए हम कोयला भी जला सकते हैं, ऊर्जा को पाने के लिए हम जैसा कि कच्चा तेल जलाते थे वो भी जला सकते हैं, किंतु अगर हम प्राकृतिक स्रोतों का इस्तेमाल करने लगे, जो ऊर्जा हमको सीधे मिल रही है उसका इस्तेमाल करने लगे और उससे डायनेमो चलाने लगे, बिजली उत्पन्न करने लगे, दैट इज कॉल्ड ग्रीन एनर्जी। यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि सोलर एनर्जी को टैप कर रहे हैं, विंड एनर्जी को टैप कर रहे हैं, और उस एनर्जी का उपयोग करके जैसे कि जिंद में जब ये ट्रेन चली सोनीपत के लिए, तो वहां पर हमारे हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स जो हैं ट्रेन में लगे हैं, पर रिचार्जिंग स्टेशन भी तो चाहिए। उसके लिए जिंद में ही साइड में ही रेलवे स्टेशन के बगल में ही वहां पे स्टोरेज कंटेनर डेवलप किया गया है, टैंक्स डेवलप किए गए हैं हाइड्रोजन के लिए, 3000 kg उसकी क्षमता है, और वहां पे हाइड्रोजन को हाई प्रेशर में टैंक्स में भरकर रखा गया है, और उस हाइड्रोजन को बनाने के लिए हमने क्या किया है, पानी का उपयोग किया है, और पानी को इलेक्ट्रोलाइज करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, उसमें से हाइड्रोजन अलग करने के लिए हमने जिस बिजली का इस्तेमाल किया है वो सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा के माध्यम से हमने पानी को तोड़ा और पानी में से हाइड्रोजन को निकाला और उसको हाइड्रोजन टैंक्स में एकत्रित कर लिया, वो हमारा हो गया सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। इसमें कहीं पर भी जो है हमने उत्सर्जन नहीं किया, और

0: प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत इस्तेमाल किया है जो कि सोलर एनर्जी है, सौर ऊर्जा है, और फिर इस हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स एंड ट्रेन में उनको रिफ्यूल करने में इस्तेमाल किया। और जब इसका उपयोग आगे चला तो इसमें एमिशंस भी जो है 100% कार्बन फ्री है, कहीं पॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, और वापस वो जो पानी विखंडित करके आपने हाइड्रोजन तैयार किया और यहां पर उपयोग कर लिया इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, विद्युत बनाने में, तो बाद में वही हाइड्रोजन वापस प्रोटॉन के रूप में जब आ गए थे वो ऑक्सीजन से मिलकर वापस वो पानी बना गए, यानी पानी से आप शुरू हुए और पानी ही उत्सर्जित कर दिया। और जो ऊर्जा का उपयोग किया आपने उस हाइड्रोजन को उत्पन्न करने में वो है सौर ऊर्जा। एमिशंस कहीं इसके अलावा और कुछ हुए नहीं, ना कार्बन डाइऑक्साइड निकली, ना ग्लोबल वार्मिंग का खतरा, हम अपने वातावरण को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस स्वरूप में अगर देखा जाए तो इट इज 100% एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल और ये ग्रीन ईंधन के रूप में आप समझ सकते हैं।
1: दोस्तों, भारत में हाल फिलहाल में ही वर्चुअल मैग्नेट मोटर्स का आविष्कार हुआ है और इस आविष्कार ने एक बार फिर से रेयर अर्थ मटेरियल्स को चर्चा में ला दिया है। आईआईटी कानपुर में इसी क्षेत्र में पोस्ट डॉक कर रहे डॉक्टर नवनीत कुमार कर्ण समझाते हैं कि रेयर अर्थ मटेरियल्स आखिर है क्या और ये इतने खास क्यों हैं।
2: रेयर अर्थ मतलब दुर्लभ धातु है जो कि हम धरती पे बहुत कम पाए जाते हैं। कम इस सेंस में है कि ये हैं धरती में बहुत सारे बट इनको एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। 15 से 20 धातु ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं और ये स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि इनके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। ये मैग्नेटिक होते हैं जनरली और इनका परमानेंट मैग्नेट के तौर पे बहुत इस्तेमाल होता है। तो आजकल जितने भी ड्रोन्स देखते हैं या रोबोट्स देखते हैं उसमें मोटर्स का बहुत फंडामेंटल यूज है। जहां भी मूवमेंट है तो मोटर से कंट्रोल होता है। तो मोटर जो चलता है वो बस मैग्नेट के बेसिस पे चलता है। तो आपका जितना अच्छा मैग्नेट होगा उतना बढ़िया एनर्जी कन्वर्जन होगा। तो उच्च क्वालिटी के जो मैग्नेट होते हैं वो इन रेयर अर्थ मटेरियल से बनता है।
1: आजकल मोटरों में इस्तेमाल होने वाली चुंबक यानी मैग्नेट्स का रेयर अर्थ खनिजों से क्या संबंध है, इस बारे में डॉक्टर नवनीत कहते हैं।
2: परमानेंट मैग्नेट जनरली फेरोमैग्नेटिक होते हैं। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में उस मैग्नेटिक मटेरियल को डालेंगे जो परमानेंट मैग्नेट है तो उनका एक हिस्टेरेसिस लूप बनता है। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को पॉजिटिव, जीरो से पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर नेगेटिव से वापस जीरो लाएंगे तो एक हिस्टेरेसिस लूप बनता है उनके मैग्नेटाइजेशन का कि उनमें कितना मैग्नेटिक इंड्यूस हो रहा है। तो उसके अंदर एक एरिया बनता है तो वो एरिया जो है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो वो एरिया जितना बड़ा होगा, जितना ब्रॉड होगा, तो वो एनर्जी उतना एफिशिएंटली कन्वर्ट करने का, यूज करने का मैग्नेट बनता है। परमानेंट मैग्नेट्स अकेले परमानेंट रेयर अर्थ एलिमेंट से नहीं बनते हैं। उनके रेयर अर्थ एलिमेंट्स और कुछ एक जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं उन्हें, उनके मिश्रण के साथ बनाए जाते हैं। जैसे एनडी एफईबी बोरोन करके एक परमानेंट मैग्नेट है, बहुत फेमस कॉमन मैग्नेट है। तो एनडी जो है इसमें वो रेयर अर्थ एलिमेंट है। तो इस तरह से जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो एनडी की वजह से काफी ज्यादा होती है। परमानेंट मैग्नेट आप आयरन से भी बना सकते हैं लेकिन उसकी एफिशिएंसी उतनी ज्यादा अधिक नहीं होगी बजाय कि ये जब हम एनडी और एफई को मिला के बना। तो इस तरह से हमारे पास जो रेयर अर्थ वाले हैं वो एनर्जी एफिशिएंटली काम करते हैं। इनका एक और एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, जो हमारे हवाई जहाज के वो होते हैं ना मटेरियल जिनसे बनाया जाता है, तो उनके एलॉय में भी ये रेयर अर्थ वाले यूज होते हैं। स्कैंडियम और ये ट्रियम करके दो हैं रेयर अर्थ, उनके यूजेस होते हैं। तो वो एल्युमिनियम के साथ एक ऐसा एलॉय बनाते हैं जो काफी मजबूत होते हैं।
1: डॉक्टर नवनीत बताते हैं कि आखिर रेयर अर्थ मटेरियल्स इतने रेयर क्यों होते हैं।
2: रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स हैं वो जनरली मतलब रिएक्टिव होते हैं काफी। कुछ एक हैं बहुत कम रिएक्टिव होते हैं और मोस्टली जो है वो काफी रिएक्टिव होते हैं। तो वो किसी न किसी फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब किसी न किसी कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो जैसे आयरन आपको मिल जाता है और उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सिंपली, जितना आसानी से उतनी आसानी से आप रेयर अर्थ को निकाल सकते हैं, क्योंकि वो उन कंपाउंड में फॉर्म होते हैं तो उनको एक्सट्रैक्ट करना केमिकली थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो वो प्रोसेस अपने आप में एक बड़ा प्रोसेस है उनको एक्सट्रैक्ट करना। तो इस तरह से वो थोड़े डिफिकल्ट है और साथ में उनकी अबंडेंस है लेकिन वो बहुत स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे मतलब एक होता ना कि आपके पास एक कोई खनिज है तो एक जगह काफी इकट्ठे हैं तो वहां से आप कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वहां से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसमें आपको कॉस्ट भी कम पड़ेगा। अमाउंट है उनका ठीक ठाक लेकिन स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उनको फिर एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपके पास ज्यादा बड़ा अमाउंट है उसमें से आपको थोड़ा कम अमाउंट का पदार्थ निकालना है तो इस वजह से भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो इंडिया में ऐसा है, एक मोनाजाइट करके खनिज है जो कि आप केरल का बीच है, वो कोंकण वाला बीच जो है उसके अराउंड पाया जाता है, बहुत सारे खनिज है उसमें। फिर इंडिया में देखें तो गुजरात के साइड भी है।
1: भारत में हालिया वर्चुअल मैग्नेट मोटर्स के आविष्कार से बदले हुए समीकरणों पर डॉक्टर नवनीत कहते हैं,
2: तो भविष्य में ये है कि इंडिया ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया। अगर हम टेक्नोलॉजिकली देखें तो जो मोटर डिस्कवर हुआ है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है और ये एक तरीके से सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंस सा दे रहा है, क्योंकि जो आज दुनिया में पूरे ग्लोबल लेवल पे रेयर अर्थ का जो सप्लाई है वो चाइना के पास है तो वो इन चीजों को बहुत अच्छे से ग्लोबली कंट्रोल करता है। तो अगर हम इस संदर्भ में देखें इंडिया की डिस्कवरी तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि आप एक सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट मोटर बना रहे हैं जहां पे इस मटेरियल की बहुत मिनिमम रिक्वायरमेंट है तो आप इससे इंडिपेंडेंस ले रहे हैं।
1: दोस्तों, स्टेम सेल और IVF तकनीक का विकास मानव इतिहास के सबसे बड़े अध्यायों में से तो एक माना ही जाता है, लेकिन इस तकनीक ने धरती पर मानवों को सबसे शक्तिशाली जीव के रूप में

0: भी स्थापित किया है। 25 जुलाई को विश्व आईवीएफ दिवस के अवसर पर आइए जानते हैं आईवीएफ विशेषज्ञ डॉक्टर आकृति गुप्ता से सरल नजरिए से आईवीएफ तकनीक क्या है।
1: तो बेसिकली जो आईवीएफ है उसका साइंटिफिक ये है कि कोई महिला बचपन से जूझ रही होती है तो उसमें रीजंस ढूंढे जाते हैं पहले तो कि क्या रीजन है जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो रहा। तो ओव्यूलेशन फैक्टर होता है, ट्यूबल फैक्टर होता है, फिर उसके बाद ये दो मेजर फैक्टर्स होते हैं जो 60% का एक चंक बनाते हैं फीमेल्स में। उसी तरह मेल्स में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जैसे कि क्वांटिटी, उनकी मोटिलिटी स्पर्म की, उसकी शक्ल अपीयरेंस। तो कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें कि देखा गया कि वो हेल्प नहीं हो पा रही है विद मेडिसिन या इंजेक्टेबल्स कि कंसीव नहीं कर पा रहे हैं कपल्स नेचुरली या विद स्मॉल प्रोसीजर्स लाइक IUI इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन जो कि एक हेल्प होती है नेचुरल प्रोसेस में। उसके लिए फिर IVF का एक माध्यम डेवलप हुआ और इंडिया में वेस्ट बंगाल में फर्स्ट टाइम जो डेवलप हुआ था एंड ही वॉज अ साइंटिस्ट बेसिकली। तो जब उन्होंने दुर्गा के लिए मतलब जो फर्स्ट बॉर्न बेबी इंडिया की है वो दुर्गा है तो उनको लैब में ही उन्होंने क्यूरेट किया था। उस टाइम पे इसे अनएथिकल कहा गया तो उस टाइम का कॉन्सेप्ट उनका विजन कोई समझ नहीं पाया। फिर प्रॉपरली जाके डॉक्टर हिंदुजा के बॉम्बे में एक ICMR की स्टडी हुई, रिक्रूट हुए पेशेंट्स एंड देन आफ्टर अ फ्यू इयर्स ऐसे करके प्लान हुआ। तो जो चीज उस टाइम पे अनएथिकल थी, अननेचुरल मानी जा रही थी, आज आप देखिए कितनी आम हो रही है और इसे एक बून माना जा रहा है उन लोगों के लिए जो कि बच्चा नहीं कर पा रहे नॉर्मल तरीके से। तो इसलिए ये एक टेक्निक थी जो लैब में डेवलप हुई थी हेल्प करने के लिए जिसमें कि एग और स्पर्म यानी कि गेमीट, एक फीमेल और मेल गेमीट को हम फर्टिलाइज करते हैं, नीडल्स होती हैं, सुइयां होती हैं जो डॉक्टर्स मैनिपुलेट करते हैं, उन्हें एम्ब्रियोलॉजिस्ट कहते हैं, वो उसको आपस में जोड़ते हैं। एक डिश है, डिश के अंदर हमने स्पर्म छोड़ दिए तो उस प्रोसेस को IVF कहते हैं। लेकिन अगर हम नीडल द्वारा स्पर्म को इंजेक्ट कर रहे हैं एग के अंदर तो उसे हम ICSI कहते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो ये एक उसका एडवांस्ड प्रोसेस है। तो ये दो मेन टेक्निक्स हैं जो यूज होती हैं कॉमनली। तो ये साइंटिफिक इसका है कि अल्टीमेटली जब वो फर्टिलाइज होता है फिर उसके बाद डे वन पे जाके 24 आवर्स के बाद हम फर्टिलाइजेशन चेक करते हैं, फिर उसके बाद 2 दिन बाद डे 2 एम्ब्रियो चेक करते हैं, फिर डे 3 होता है, फिर डे 4 होता है, फिर डे 5 होता है जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो ये साइंटिफिकली जैसे हम पढ़ते हैं कि बच्चा जब बनता है फेलोपियन ट्यूब में तब 0 डे है और फिर स्लोली स्लोली 5वें दिन तक एंडोमेट्रियम यानी जो आपकी बच्चेदानी होती है उधर पहुंचता है और फिर चिपकता है जिसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो हम जो बच्चा डालते हैं यानी कि ट्रांसफर करते हैं 5वें दिन पे करते हैं मोस्टली, तो वो ब्लास्टोसिस्ट बच्चे के चिपकने का चांस बढ़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा है उसे ही हम यूज कर रहे हैं।
0: दोस्तों IVF तकनीक को आए अब सालों हो चुके हैं, ऐसे में इस तकनीक के सुधारों पर और भविष्य की संभावनाओं पर डॉक्टर आकृति कहती हैं।
1: तो बहुत सी चीजें डेवलप हो चुकी हैं। आप देखिए टाइम लैप्स इमेजिंग डेवलप हो गई है जहां कि पहले हम एम्ब्रियोस को देखते थे 5 दिन में 2 बार, अभी एक मशीन आ गई है जो मशीन के अंदर हम उन्हें डालते हैं डिश के अंदर ही, सेम एनवायरनमेंट है बट वो कैमरा लगे हैं छोटे छोटे, वो फोटोज लेते हैं उसकी, तो फोटोज खींचते रहते हैं उनकी डेवलपमेंट्स की एट कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स एंड वो इमेजेस फिर स्टडी की जाती है। देखा जाता है कि ऐसी कौन सी डेवलपमेंट है क्योंकि सब बच्चे चिपक नहीं पाते ना, सब एम्ब्रियोज अच्छी सक्सेस नहीं दे पाते। तो ये देखने के लिए कि ऐसी क्या चीजें हैं जो हम देख सकें इस माध्यम से और हम ये पता लगा सकें कि अच्छा अगर ये चीज दिख रही है तो इसका चांस ज्यादा है चिपकने का बच्चे का, तो यही डालते हैं रादर देन जिसमें वो चीज एब्सेंट है तो फिर वो निगेट हो जाता है, नेगेटिवली आउट हो जाता है, एग्जिट हो जाता है बच्चा। तो इस सेंस में जो चांसेस हैं अटेम्प्ट्स हैं IVF के वो कम हो जाएंगे, पैसा का खर्चा कम हो जाएगा एंड सक्सेस का चांस बढ़ जाएगा। देन AI सिस्टम ऑफ विटनेसिंग आ गया, तो मतलब आजकल लैब्स में AI विटनेसिंग हो गई है, ये याद करने की जरूरत नहीं अगर 4 मरीज हैं आज तो भाई ये इसका सैंपल है, वो AI के माध्यम से ही है कि ये इसका सैंपल इस नंबर वाले उसमें पड़ा है ये निकालिए, ताकि मिक्सिंग ना हो, कंफ्यूजन ना हो, पेशेंट सेफ रहे, डॉक्टर सेफ रहे।
0: दोस्तों 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है और भारत की बात करें तो बाघों के संरक्षण और उनकी बढ़ती संख्या में भारत सबसे अग्रणी देश है। लेकिन बाघों का संरक्षण इतना महत्वपूर्ण है क्यों और विश्व बाघ दिवस की कहानी क्या है, आइए जानते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला से।
2: बाघ एक ग्लोबल स्पीसीज है, इनफैक्ट इसको सबसे ज्यादा आइकॉनिक वाइल्ड लाइफ स्पीसीज के रूप में भी सामने आया है। जिस एरिया में बाघ पाए जाते थे उसमें बहुत कमी आई, इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक ग्लोबल टाइगर समिट सेंट पीटर्सबर्ग वहां पर आयोजित की गई 2010 में। जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था उसमें वो ये लिया गया कि हमको अगले 12 सालों में बाघों की संख्या को डबल करने और साथ में एक और चीज डिसाइड की गई कि 29 जुलाई को हर साल ग्लोबल टाइगर डे के रूप में मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य ये था कि इस दिन हम जो इसके बारे में अवेयरनेस जो जनरल पब्लिक है उनको बताया जाए। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो उसमें भारत का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, जहां तक कि बाघों के संरक्षण की बात, यानी ऐसे टाइगर जो कि जंगलों में पाए जाते हैं उनकी अगर संख्या देखें तो उसका करीब 70% भाग जो है वो भारत में पाया जाता। तो भारत उन गिने चुने देशों में से एक है, उसने अपने जो टाइगर नंबर थे जो कि हमारे 2006 में 1411 हो गए थे उनको डबल

कर लिया। आज हमारे पास करीब 3,500 से 4,000 तक बाघ विचरित करते हुए पाए जाते हैं। इसमें से भी जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है वो अपने आप में सिरमौर है बाघ संरक्षण। इस साल हम इसके 90 साल पूरे हो रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान के, और 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई जिसमें 9 टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया, आज 58 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं पूरे देश में जो कि इस परियोजना के अंतर्गत आते हैं। इसका शुरुआत थी वो भी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से।

0: की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी क्षेत्र में जो हमारी गश्त सुनिश्चित करना। इसके लिए हमने, भारत सरकार ने और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है और जो NTCA है जो कि पूरे देश में बाघ संरक्षण को देखता है, उन्होंने एक M-Stripe ऐप बनाया है। अगर हमारे कर्मचारियों ने कहीं पे उनको कोई भी घटना दिखती है वो M-Stripe ऐप में एंटर कर सकते। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो इसका रोल है, हम स्पेशल कैमरा ट्रैप लगाते हैं जिनमें की फोटोग्राफ ऑटोमेटिकली जब बाघ उनके सामने से गुजरता है उसकी फोटोग्राफ कैप्चर कर ली जाती है। और हमें पता है कि जो बाघों की जो धारियां होती हैं जिनको हम स्ट्राइप पैटर्न कहते हैं, वो हमारे फिंगरप्रिंट्स की तरह होती है। यानी हर बाघ की जो धारी का जो पैटर्न है वो बिल्कुल अलग होगा, यूनिक होगा। जब हमारे पास पूरे क्षेत्र से स्वचालित जो कैमरा ट्रैप है उनसे फोटोग्राफ प्राप्त हो जाते हैं, तो उसके बाद हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा टेक्नोलॉजी का प्रयोग आता है मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए, कि जैसे हमने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की ऐसी बाउंड्री जहां पर गांव से लगती है, आबादी वाले क्षेत्र से लगती है, वहां पर हमने बहुत पावरफुल कैमराज लगाए हुए या वहां पर ऐसे हमारे सेंसर्स लगे हैं जो कि जब जानवर बाहर जाता है तो उसकी जानकारी हमको मिल जाती है। साथ में अगर मैं पूरे क्षेत्र पे निगाह रखने की बात करूं तो हमको ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है उसका भी भरपूर प्रयोग किया जा रहा है पूरे क्षेत्र में जानकारी प्राप्त कर।
1: दोस्तों, जुलाई 2026 में उत्तराखंड सरकार के अंतर्गत उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी यूकॉस ने राज्य की विज्ञान तकनीक और नवाचार नीति जारी की है। क्या है इस नीति का आधार, आइए जानते हैं यूकॉस के निदेशक डॉक्टर दुर्गेश पंत से।
2: देखिए, जब हम साइंस की बात करते हैं तो कई हमारे दिमाग में एक चित्र आता है कि ये कहीं संस्थान है, ये कोई लैब है जहां कुछ लोग काम में लगे हुए हैं जिसके बारे में हमको नहीं मालूम होता क्या है। हम भी सोचते हैं क्या कर रहे हैं, वो भी सोचते हैं कि उसको आगे कैसे ले जाए। ऐसी टेक्नोलॉजी तो जानने लगे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी चाहे मोबाइल की हो चाहे कुछ भी, जो भी हम करते हैं वो सब टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन पार्ट है। नवाचार इसलिए जरूरी है क्योंकि नवाचार हैं, फ्रुगल नवाचार हैं, इसीलिए दुनिया में सारी की सारी चीजें चलती हैं। अब ये समझिए कि एक पॉलिसी के तहत ये साइंस टेक्नोलॉजी और इसको लैब से लैंड को ले जाने की यात्रा और उसमें नवाचार जोड़ना, एंटरप्रेन्योरशिप जोड़ना, आमजन से जोड़ना, जनता से जोड़ना, काश्तकार से जोड़ना, महिला से जोड़ना, गांव से जोड़ना, ये STI है। क्योंकि ये से पूछ के कि वो क्या चाहते हैं, वो पानी की बात हो, कृषि की बात हो, हॉर्टिकल्चर की बात हो, मैन एनिमल कंफ्लिक्ट की बात हो, टूरिज्म की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, वो सब में शोध होना चाहिए या शोध आधारित समाधान अगर हो तो स्थायी समाधान होते हैं, एडहॉक नहीं होते हैं। इसलिए STI इम्पोर्टेंट है और विभिन्न विभागों के सहयोग से बनाइए कि आप इसको विकसित करिए। और एक साइंस टेक्नोलॉजी का विभाग अगर बनाएगा तो इसकी महत्ता भी होगी, समझ में भी आएगा। इसलिए इसको करीब 3 वर्ष की इसमें समय लगा बनाने में और अब ये बाहर आई है, इसलिए महत्वपूर्ण है।
1: लैब टू लैंड और साइंस फॉर सोसाइटी पर आधारित विज्ञान नीति क्यों जरूरी है, इस बारे में डॉक्टर पंत कहते हैं।
2: आप ये देखिए ना, अगर जो काश्तकार है या जो हमारे एग्रीकल्चर से जुड़ा है, अगर वो मिट्टी से ही नहीं जुड़ा, उसने मिट्टी से ही नहीं खेला, देखा, बात की, तो उस एग्रीकल्चर साइंस का क्या लाभ होगा जो लैब में हो रही है। इसी तरह से जो प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाएंगे तो गलतियां भी होंगी, फेल्योर्स होंगे, उससे सीखेगा व्यक्ति, वो थ्योरेटिकली नहीं होगी। तो बहुत सी चीजें ऐसी होती है, विज्ञान लगातार कर करके सीखने का नाम होता है कि हम कई चीजें करते हैं उसके बाद चीज निकल के आती है, तब वो एविडेंस बनती है। ये हमारे वहाँ का एक बेसिक गैप है जो हमारी विज्ञान की शिक्षा रही है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम कह रहे हैं कि इसको स्किल बेस्ड, इसलिए हमने STEM की बात करी है इस पॉलिसी में, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में थोड़ी साइंटिफिक एटीट्यूड टेम्पर की बात कर रहे हैं कि इससे लोग जुड़ें, बात करें, समझें, देखें, विचारें, सूंघें, ये महत्वपूर्ण है, तब इससे समझा जा सकता है। इसलिए जो आप कह रही है बिल्कुल स्किल बेस्ड होना चाहिए, वही देश को बदलेगा। मेरी बात आप समझ, तभी देश में बदलाव आएगा जब वो काम करेगा हाथ से। जिसने बल्ब नहीं बदला है, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी की बात करे कैसे होगा, जिसने कभी इस पूरे के पूरे जो हमारे पास कैमरा है उसी पे काम नहीं करा, वो कैसे बदलेगा। सोलर की जिसने लाइट नहीं बदली वो सोलर के, तो इस समय आवश्यकता है देश में फिटर का, ट्रेनर का, इनका, ये तमाम सारी चीजों की आवश्यकता है जिसकी हमने इसमें बात करी है कि विज्ञान ऐसा हो जिसको हाथ से किया हुआ, जिसको देखा हुआ हो, जिसको समझ के कर रहे हैं, ये हमारी जनरेशन को बदलेगा, देश को बदलेगा, हम और आपको बदलेगा।
1: दोस्तों, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आप रीतिका बिंजोला से सुनते हैं जुलाई माह के प्रमुख वैज्ञानिक और वैज्ञानिक घटनाओं के बारे में।
3: जुलाई का ये महीना सिर्फ मॉनसून की फुहारे लेके नहीं आता, बल्कि ये महीना गवाह है इतिहास के उन महान वैज्ञानिकों के जन्म का जिन्होंने अपनी सोच से पूरी दुनिया की तकदीर बदल दी। शुरुआत करते हैं एक ऐसे इंसान से जिसने अंधेरी दुनिया को रोशनी से भर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 10 जुलाई 1856 को जन्मे महान आविष्कारक निकोला टेस्ला। आज हमारे घरों, स्कूलों, अस्पतालों और कारखानों तक जो बिजली पहुँचती है वो मुख्य रूप से इसी प्रणाली के कारण संभव हो पाती।

सकती है। अगर केवल पुरानी डीसी प्रणाली होती तो बिजली को इतनी दूर तक पहुंचना बहुत कठिन पड़ता और महंगा होता। टेस्ला ने इंडक्शन मोटर भी बनाई जो आज पंखों, वॉशिंग मशीन, पानी की मोटर और उद्योगों की कई मशीनों में इस्तेमाल होती है। वायरलेस संचार और रेडियो से जुड़े उनके विचार भी अपने समय से बहुत आगे थे। अब बात करते हैं ग्रिगोर मेंडल की, जिनका जन्म 20 जुलाई 1822 को हुआ था। उन्होंने मटर के पौधों पर लगभग 8 वर्षों तक प्रयोग किए। इन प्रयोगों से उन्होंने बताया कि माता पिता के गुण बच्चों तक कैसे पहुंचते हैं। आज इसे हम अनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। मेंडल की खोज की बदौलत आज वैज्ञानिक नई और अधिक उपज देने वाली फसलें विकसित कर रहे हैं, कई अनुवांशिक बीमारियों का अध्ययन कर रहे हैं और आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी लगातार आगे बढ़ रही है। इसीलिए उन्हें अनुवांशिकी का जनक यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। अब बात करते हैं 25 जुलाई 1920 को लंदन में जन्मी रोजलिन फ्रैंकलिन के बारे में, जिन्होंने महज 15 साल की उम्र में वैज्ञानिक बनने का फैसला कर लिया था। उनके द्वारा खींची गई ऐतिहासिक डीएनए की तस्वीर फोटो 51 और उनके रिसर्च डेटा की मदद से ही आगे चलकर जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए का मशहूर डबल हेलिकल यानी घुमावदार सीडी जैसा मॉडल तैयार किया था। डीएनए के अलावा रोजलिन ने कोयले और कार्बन की आंतरिक संरचना को समझने का काम भी किया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बेहतर गैस मास्क बने। और आज जो हम वाटर फिल्टर या हवा साफ करने वाले एयर प्योरीफायर इस्तेमाल करते हैं, उनमें एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर होता है। इसकी शुरुआत रोजलिन की रिसर्च से ही शुरू हुई थी। तंबाकू व पोलियो जैसे वायरस के सटीक आकार को खोजने में भी रोजलिन ने क्रांतिकारी योगदान दिया, जिससे आगे चलकर वैक्सीन और दवाइयां बनाने में मदद मिली।

श्रोताओं, इसी के साथ विज्ञान भारती के आज के अंक को मुझे यानी संकल्प मिश्रा को संपन्न करने की अब दीजिए अनुमति। अगले अंक में विज्ञान जगत की नई हलचल के साथ एक बार फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।

0: भारतीय कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं आकाशवाणी की एक ग्रेड गायिका श्रीमती अदिति बैनर्जी का सुमधुर उपशास्त्रीय गायन।
1: दिस इज आकाशवाणी, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल अवर लिसनर्स ऑफ नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। इन टूडेज ब्रॉडकास्ट वी ब्रिंग टू यू अ डिलाइटफुल सेमी क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय आकाशवाणी से ए ग्रेड आर्टिस्ट श्रीमती अदिति बैनर्जी।
0: श्रीमती अदिति बैनर्जी ने अपनी प्रारंभिक संगीत शिक्षा स्वर्गीय श्री नील माधव सिन्हा जी से प्राप्त की। तत्पश्चात ग्वालियर घराने के प्रख्यात गायक पंडित लक्ष्मण कृष्णराव पंडित जी से उन्होंने ख्याल और टप्पा गायकी का गहन अभ्यास किया। उन्होंने पद्मभूषण श्रीमती शोभा गुरटू जी के सान्निध्य में लगभग 14 वर्ष तक ठुमरी, दादरा, होरी और कजरी की पूरब अंग गायकी का विशुद्ध प्रशिक्षण प्राप्त किया और उनके साथ अनेक मंचों पर प्रस्तुतियां भी दी। दिल्ली विश्वविद्यालय से संगीत में एमए एवं एमफिल में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के साथ साथ श्रीमती अदिति बैनर्जी को पद्म विभूषण गिरिजा देवी जी द्वारा पूरब अंग गायकी उत्सव में विशेष रूप से सम्मानित किया गया है।
1: श्रीमती अदिति बैनर्जी रिसीव्ड हर इनिशियल ट्रेनिंग इन म्यूजिक फ्रॉम लेट श्री नील माधव सिन्हा। सब्सिक्वेंटली शी अंडरवेंट रिगरस ट्रेनिंग इन खयाल एंड टप्पा सिंगिंग अंडर द एमिनेंट एक्सपोनेंट ऑफ द ग्वालियर घराना पंडित लक्ष्मण कृष्णराव पंडित अंडर द गाइडेंस ऑफ पद्मभूषण श्रीमती शोभा गुरटू। फॉर नियरली 14 ईयर्स शी मास्टर्ड द ऑथेंटिक पूरब अंग गायकी परफॉर्मिंग ठुमरी, दादरा, होरी एंड कजरी एंड ऑल्सो एकम्पनीड हर गुरु ऑन न्यूमरस प्रेस्टीजियस ओकेजन्स। इन एडिशन टू टॉपिंग हर एमए एंड एमफिल डिग्रीज इन म्यूजिक फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी विथ गोल्ड मेडल्स, श्रीमती अदिति बैनर्जी वॉज स्पेशली ऑनर्ड बाय पद्म विभूषण गिरिजा देवी ड्यूरिंग द पूरबंग गायकी उत्सव।
0: आइए सुनते हैं श्रीमती अदिति बैनर्जी के स्वर में उपशास्त्रीय संगीत की यह विशेष प्रस्तुति। उन्हें तबले पर संगत कर रहे हैं श्री भरत कामत और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं श्री सौमित्र क्षीरसागर। कार्यक्रम के प्रारंभ में आइए सुनते हैं राग मिश्र तिलक कामोद में निबद्ध ठुमरी जो दीपचंदी ताल में बद्ध है। इसके बोल हैं बैरन रतिया कैसे आऊ।
1: लेट्स लिसन टू दिस रिसाइटल ऑफ सेमी क्लासिकल म्यूजिक बाय श्रीमती अदिति बैनर्जी। She's accompanied on tabla by Shri Bharat Kamat and on harmonium by Shri Saumitra Kshirsagar. She begins her recital with Thumri composed in Rag Mishra Tilak Kamud, set to Deep Chandi Tal. Bairan Ratiya Kaise Aaun?

0: अभी आपने सुनी मिश्र तिलक कामो ठुमरी। अब श्रीमती अदिति बैनर्जी प्रस्तुत कर रही है राग मिश्र शिवरंजनी में बद्ध कजरी, जो कहरवा ताल में निबद्ध है। इसके बोल हैं छाई घटा घनगोर।
1: दैट वॉज ठुमरी इन मिश्र तिलक कामोद। नाउ श्रीमती अदिति बैनर्जी प्रेजेंट्स कजरी इन राग मिश्र शिवरंजनी सेट टू कहरवा ताल। छाई घटा घनगोर।

0: अभी आपने सुनी राग मिश्र शिवरंजनी में बद्ध कजरी। अब अगली प्रस्तुति के रूप में श्रीमती अदिति बैनर्जी प्रस्तुत करने जा रही है राग मिश्र गारा में निबद्ध कजरी, जो दादरा ताल में निबद्ध है। इसके बोल है तरसत जियरा हमार।
1: दैट वॉज कजरी कंपोज्ड इन राग मिश्र शिवरंजनी। श्रीमती अदिति बैनर्जी नाउ प्रेजेंट्स कजरी इन राग मिश्र गारा सेट टू दादरा ताल। लिरिक्स आर तरसत जियरा हमार।

0: अभी आपने सुनी राग मिश्र गारा में निबद्ध कजरी। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं राग मिश्र भैरवी में बद्ध दादरा, जो कहरवा ताल में निबद्ध है। इसके बोल हैं परदेसी सैया हारे।
1: दैट वॉज कजरी इन राग मिश्र गारा बाय श्रीमती अदिति बैनर्जी। शी कंक्लूड्स द रिसाइटल विथ दादरा सेट इन राग मिश्र भैरवी रेंडर्ड इन कहरवा ताल। परदेसी सैया हारे।

0: अभी आपने सुना मिश्र भैरवी में बद्ध दादरा।
1: दैट वॉज दादरा सेट इन मिश्र भैरवी।
0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपने सुनी श्रीमती अदिति बैनर्जी के स्वर में उपशास्त्रीय संगीत की यह विशेष प्रस्तुति। उन्हें तबला संगत कर रहे थे श्री भरत कामत और हारमोनियम पर संगत कर रहे थे श्री सौमित्र क्षीरसागर। इसी के साथ आकाशवाणी का आज का यह संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यही संपन्न होता है। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आकाशवाणी पुणे द्वारा की गई तथा इसका प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया गया।
1: इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक यू वर लिसनिंग टू रिसाइटल ऑफ सेमी क्लासिकल वोकल म्यूजिक बाय श्रीमती अदिति बैनर्जी। शी वॉज अकम्पनीड ऑन तबला बाय श्री भरत कामत एंड ऑन हारमोनियम बाय श्री सौमित्र क्षीरसागर। दिस प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड अर्लियर एट द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी पुणे एंड ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम आकाशवाणी दिल्ली। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही क्षण बाद यानी ठीक 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार सेवा के साथ मैं अपर्णा सिंह। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं।

0: उन्होंने कहा कि उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठा सकें, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को त्याग पत्र सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी और सरकार ने जाँच सीबीआई को सौंप दी। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से मंजूर कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त भार सौंपा गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहल के द्वारा भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रामका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
1: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने की मांग स्वीकार कर ली है। नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमों अनुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
2: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: परीक्षा सुधारों पर सीजेपी के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। सरकार सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सदन के सोमवार के कामकाज सूची में शामिल है। इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ये विधेयक पेश करेंगे। प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए ऐतिहासिक पल बताया है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने से देश का सांस्कृतिक गौरव और बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। जीत के लिए 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।